आज मतुन मुबारक है। शिक्स मत 1948 के ज्येष्ठ महीने की 15 तारीख मुताबिक 5 जून सन 2026 ईस्वी सुबह के 6:33 और 26 सेकंड हुए हैं। हमारी नशरियात का बाकायदा तौर पर आगाज होता है।

0: आकाशवाणी श्रीनगर समय मोहतरम 6:53 सपेद पेश खिदमत जो प्रोग्राम सुबुगाही।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। प्रोग्राम सुबुगाही है चीज तुहंदिस खिदमत अंदर हाजिर। सामिन मोहतरम, कुरान करीम अंदर अल्लाह ताला सुंद इरशाद जील तो ही ब्रोह कनी कुरान करीम च तिलावत ही करन तुह रुजो खामोश वली बोजो कान दिथ ताकि अस पेट सब्दे अल्लाह ताला सुंद रहम।

ألف لام

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी का एक जनसभा का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज ही दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योगासन चैंपियनशिप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से अपने अपने देशों में आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के वैश्विक राजदूत बनने का आह्वान किया है। अहमदाबाद में चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में श्री मोदी ने कहा कि योग से जुड़े रहने और समुदायों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय ने योग 365 अभियान की शुरुआत की है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि योग शारीरिक फिटनेस से कहीं अधिक स्वस्थ रहने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है।
1: योग भोग से भी मुक्ति देता है और रोग से भी मुक्ति देता है, और सबसे अहम बात कि मिनिमम बजट में हेल्दी लाइफस्टाइल का ये सबसे उत्तम उपाय है। इसलिए आपको ये मंत्र याद रखना है, हर रोज योग भगाएगा सारे रोग।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ब्रिटेन की विदेश सचिव येवेट कूपर ने कल नई दिल्ली में भारत ब्रिटेन विजन 2035 की समीक्षा के लिए पहली वार्षिक बैठक की। दोनों नेताओं ने इसके विकास, प्रौद्योगिकी और नवाचार, रक्षा और सुरक्षा, जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा तथा शिक्षा के अंतर्गत हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों पक्षों ने व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के अवसरों का स्वागत किया और इसके शीघ्र लागू होने की आशा व्यक्त की। दोनों नेताओं ने पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों तथा राष्ट्रमंडल सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग के विषयों पर भी चर्चा की। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा आज द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। एसबीआई शोध रिपोर्ट के अनुसार बढ़ती मुद्रास्फीति और कच्चे तेल की कीमतों, रुपए के अवमूल्यन और संभावित कमजोर मॉनसून जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए रेपो दर में वृद्धि सही नहीं होगी। रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि रिजर्व बैंक बाजार में संकट को दूर करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अल्पकालिक ब्याज दर और तरलता उपाय अपना सकता है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल एक वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने बताया कि श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खनाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। इसमें व्यापार, निवेश, आपसी संपर्क और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 19

1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्री कश्यप के निधन पर शोक व्यक्त किया है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और इसके संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी। जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुकरण ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में कल भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: In sports, India will take on arch rivals Pakistan in the semi-final of the Men's Under-18 Asia Cup Hockey Tournament at Kakamigahara Hockey Stadium in Japan today. In the Women's Under-18 Asia Cup, India progressed to the semi-finals after remaining unbeaten in the group stage and will face China today at 9:30 a.m. Indian Standard Time. The Indian Meteorological Department, IMD, has issued an orange alert for thunder squall conditions today over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Jammu and Kashmir, Ladakh, Madhya Pradesh, Odisha, Rajasthan and Uttar Pradesh. Heavy to very heavy rainfall is expected during the day in places over coastal Karnataka, Kerala and Mahe, north interior Karnataka and Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal. Parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Sikkim, Andaman and Nicobar Islands, Tripura and Andhra Pradesh are also likely to experience rainfall today. And that is the end of this news bulletin.
1: अब आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समीन सुबह के 7:10 हुए हैं। एक वक्फे के बाद आप समाप्त करेंगे हमारा मॉर्निंग शो पयाम सुबह।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे?
4: अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
3: ओह
4: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
3: भाई ऑफर तो ठीक है लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
4: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
3: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर। क्वालिटी परखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
6: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
7: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
6: नहीं माँ अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
7: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
6: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
7: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
6: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
7: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
6: हाँ माँ आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
7: शुक्र है अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
6: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
5: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
8: 10 लाख की लॉटरी मुझे,
9: फर्जी ऑफर से सावधान।
10: RBI कहता है
9: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: ዘሚን በመስኡድ ኪነሽ አጣብሱ ነኝ አካሽ ማን እስሪ ነገር ሲሚዲየም ይዶ ሶር ሰረሽ ያ አቴክ ሜጀር አር እስከዳማ ኤፍኤም እስከሻ ያ ባች በጋርስ በር ዘሚን አብ ኪነሽ ያ ደግሞ ሞባይል በሪሱን ሰክተህ
1: ዘሚን በመስኡድ ኪነሽ ያ ጃሪ ሄ አር አፒ ነሽያት ሚዲየም ይዶ ሶር ሰረሽ ያ አቴክ ሜጀር ኪላማ FM 103.5 MHz और इसके अलावा ये नशियात आप अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आप आकाशवाणी की लाइव मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारी नशियात सुन सकते हैं। समरी आज की नशियात को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ कंट्रोल रूम से ताउन कर रहे हैं मंजूर अहमद नजार और जावेद अहमद लोन, और इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में हमारी मामनत कर रहे हैं सरफराज अहमद। मैं हूं आपका मेजबान फुरकान मजीद, और आज की नशियात में मेरी साथी हैं नाजिमा रशीद। नाजिमा जी, हम बात कर रहे थे इखलाकियात पर।
2: बिल्कुल।
1: और जैसे कि हमने पहले भी ये बात अपने सामीन को बता दी कि ये एक ऐसा वसी मौजू है, जब हम अखलाकियात पर बात करते हैं तो इसका स्कोप जो है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है, यानी इसका जो दायरा है वो वसी हो जाता है। अब देखिए, आज 5 जून है और 5 जून एक अहम दिन है, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब थीम की बात करते हैं, हम हर साल इस पर एक थीम जोड़ा जाता है इस दिन के हवाले से। और अगर हम तारीखी तौर पर बात करें तो 1972 में स्टॉकहोम में, यानी कि स्वीडन में, एक कॉन्फ्रेंस मुनक़द होती है इंसानी माहौलियात पर। ये पहली बैन अक्वामी कॉन्फ्रेंस थी और इसी दौरान यह ऐलान हुआ कि अब 5 जून से जो है आलमी सतह पर माहौलियात का दिन मनाया जाएगा। और ये दिन पहली बार 1974 में सिर्फ एक जमीन के मौजू पर जो है मुनक़द हुआ, और आज तब से लेकर आज तक ये दिन जो है हर साल मनाया जा रहा है और हर साल एक नया थीम इसके साथ जोड़ा जाता है। और देखते हैं हम ये कि जो 2026 का जो थीम है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं इंस्पायर्ड बाय नेचर
2: For climate, for our future. बिल्कुल सही, हमने इस हवाले से पहले भी बात की, फिर से वही दोहराना चाहेंगे कि अस वुच तो वारिया के और सानियो बड़े चु वुचमुत अम खत ज्यादा तुम चा अस वनान कि फलन जाय उस यत कन खुदा ने खास त तिस नौबत गस न यिन के किस अस पे पन्ने यो सन नो पुई छ तेमिस पे अस वानन कि येतन उस एक वक्त दरियाए जहलम आसा येतन उस जीले डाल आसा। तो वो चीजें हमें खुद देखनी है कि हम कहां पे दुरुस्त कर सकते हैं और कहां पे दुरुस्त रही है। और आपने बिल्कुल वजह फरमाया फरकान साहब कुछ वक्त पहले कि कहीं पे कोई खराबी हुई है जिसके नतीजे आज हमारे सामने है। ये 3:55 बजे से फरमा

0: 21 जून को वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जाएगा। उस दिन दुनिया के अलग अलग देशों में योग से जुड़े आयोजन होंगे और इसका प्रमुख कार्यक्रम भारत के एक और ऐतिहासिक शहर कोलकाता में होगा। वर्ल्ड योगा डे से पहले वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप अपने आप में हेल्थ और वेलनेस की डबल डोज लेकर आ गई है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा आज सुबह 10 बजे मुंबई में मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। 6 सदस्यीय समिति ने बुधवार को 3 दिवसीय विचार विमर्श शुरू किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अप्रैल में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया था।
4: खुदरा मुद्रास्फीति पर आधारित महंगाई सूचकांक 4% तक सीमित रखने का लक्ष्य भारत सरकार ने रिजर्व बैंक को दिया है। असाधारण परिस्थितियों में यह सूचकांक 2-6% के दायरे में रखने की भी छूट है। सोने एवं चांदी के आभूषण तथा खानपान सामानों की कीमतें बढ़ने के कारण अप्रैल में यह सूचकांक 3.48 पर था, जो कि दिए गए दायरे के अंदर है। इसी कारण विश्लेषकों का मानना है कि रिजर्व बैंक इस बार भी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट का महंगाई तथा आर्थिक वृद्धि पर होने वाला परिणाम देखते हुए रिजर्व बैंक सतर्क दृष्टिकोण अपनाएगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। कुछ दिन पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सीएस सेट्टी ने भी कहा था कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बदलाव नहीं करता है तो आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार।
3: मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में 1987 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी तरुण कपूर का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। श्री कपूर का विस्तारित कार्यकाल 10 जून से 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी की सराहना की है। उन्होंने कहा कि भारत को रूस के साथ सहयोग कम करने के लिए मजबूर करने के पश्चिमी देशों के प्रयास व्यर्थ और वैश्विक स्थिरता के लिए हानिकारक हैं। प्रमुख वैश्विक समाचार एजेंसियों के प्रमुखों के साथ बातचीत में श्री पुतिन ने कहा कि अमरीका के साथ भारत की राजनयिक भागीदारी दोनों देशों के चिरस्थायी संबंधों पर कोई प्रभाव नहीं डालती। उन्होंने कहा कि रूस भारत को एक विश्वसनीय साझेदार मानता है। श्री पुतिन ने भारत के साथ रूस के रक्षा और सैन्य संबंधों की भी चर्चा की और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के सह विकास और सह उत्पादन के बारे में भी बताया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस ने भारत को 5वीं पीढ़ी के SU-57 लड़ाकू विमान के निर्माण में संयुक्त रूप से काम करने का प्रस्ताव दिया है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खानाल आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे। श्री खानाल नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों देश आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। व्यापार समझौते पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत का अपना 4 दिन का दौरा पूरा किया है। एक रिपोर्ट।
5: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान वस्तुओं के व्यापार, गैर टैरिफ उपायों, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, आर्थिक सुरक्षा संरक्षण और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों सहित कई मुद्दों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा की गई। मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने वाले पारस्परिक

0: रूप से लाभकारी समझौते को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। भारत और अमेरिका ने 7 फरवरी को जारी एक संयुक्त वक्तव्य में व्यापार से संबंधित एक अंतरिम समझौते पर सहमति व्यक्त की। यह भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 5 जून 1973 को हुई थी।
2: विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य प्रकृति और पृथ्वी की रक्षा के लिए लोगों को जागरूक करना और सकारात्मक कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह राष्ट्रीय राजधानी में मैदानगढ़ी स्थित नमो ऑक्सीजन पार्क में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्री अपने अपने राज्यों में विश्व पर्यावरण दिवस से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यह दिवस पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने, लोगों को कार्यवाही के लिए प्रेरित करने और सतत विकास को बढ़ावा देने का अवसर है। विभिन्न अभियानों, कार्यक्रमों और पहलों के माध्यम से लोगों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए आगे आने तथा बेहतर और टिकाऊ भविष्य के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने देशवासियों से जलवायु और भविष्य के लिए प्रकृति से प्रेरणा लेते रहने का संकल्प दोहराने का आग्रह किया है। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 97 वर्ष के थे। उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकों के लेखन का काम पूरा किया। वे 1983 से 1990 तक लोकसभा के महासचिव रहे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के दूसरे स्तर संघ चालक माधव सदाशिवराम गोलवलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि श्री गोलवलकर ने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को एक मजबूत वैचारिक आधार दिया। पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच जापान के काकामिगहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार आज शाम 3:30 बजे से खेला जाएगा। महिला अंडर 18 एशिया कप में भारत ने ग्रुप चरण में बिना कोई मैच हारे सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता सिंह।
3: धन्यवाद जागृति। प्रधानमंत्री मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति की मुलाकात को आज प्रकाशित अखबारों ने प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला से बढ़ेगी कच्चे तेल की खरीद, ऊर्जा साझेदारी पर भी चर्चा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का सेंट पीटर्सबर्ग में मीडिया को दिया बयान, अमर उजाला ने प्रथम पृष्ठ पर दिया है। भारत पर दबाव की कोशिश में अमरीका, लेकिन सभी जानते हैं मोदी पर दबाव बनाना नामुमकिन। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर दैनिक जागरण की खबर है, धुएं ने छीन ली सांसें पर आखिरी पल तक नहीं छोड़ा साथ। पंजाब केसरी की खबर है, मौत की इमारतों पर होगा एक्शन, उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम को दिए कार्रवाई के निर्देश। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ में हादसों की जवाबदेही का विश्लेषण दिया है, किसी भी हादसे का सबसे जरूरी सबक ये होना चाहिए कि भविष्य में ऐसे इंतजाम किए जाएं ताकि वैसी घटना दोबारा ना हो। दैनिक भास्कर ने बड़ा कदम शीर्षक से इको फ्रेंडली खबर दी है, सिर्फ एथेनॉल से चलने वाली देश की पहली कार लॉन्च, 5,000 पंप खुलेंगे, इससे प्रदूषण घटेगा और किसानों की आय भी बढ़ेगी। राजस्थान पत्रिका ने मॉनसून की दस्तक को मंगल प्रवेश बताते हुए लिखा है, बूंदों की बारात लेकर मॉनसून केरलम पहुंचा, 20 को राजस्थान में आगवानी। अब उत्तर भारत में तपिश के गिने चुने दिन, पत्र ने विश्व पर्यावरण दिवस पर लिखा है, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, धरती संकेत दे रही है, क्या हम सुन रहे हैं, पहले मौसम बदलता था अब बिगड़ता है, प्रकृति से सिर्फ लिया कभी कुछ जमा नहीं किया, अब धरती दे रही चेतावनी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। लगभग 21,800 करोड़ रुपए की कई

0: विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री ने विश्व योगासन चैंपियनशिप के प्रतिभागियों से आयुष मंत्रालय के योग 365 अभियान के राजदूत बनने का आह्वान किया। रिजर्व बैंक आज अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। लोकसभा के पूर्व महासचिव और संविधान विशेषज्ञ सुभाष सी कश्यप का कल नई दिल्ली में निधन। और पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़। ये छा आकाशवाणी श्रीनगर समय निमित्तम 8:15 सप्त पेश खदमत चु स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आयुष सेहत एग्जामिन।
2: डायरेक्टरेट ऑफ आयुष जे एंड के बवासात जिला ऑफिसर आयुष पुलवामा छु नेशनल आयुष मिशन किस IEC कंपोनेंट तहत प्रोग्राम पेश करन आयुष सेहत जमीन।
3: प्रोग्राम आयुष सेहत जमीन है चीज तुम इस खदमत में हाजिर बुस्तुन मेजबान रशीद निजामी सान तरफ कई तो माय बरूद तुलो बरूद अस्सलाम वालेकुम कबूल प्रोग्रामस मन मुख्तलिफ डॉक्टर साहबान सत कान मुख्तलिफ बेमार नस्बत तो डॉक्टर साहब पत तमिक इलाज वनान आज यद बेमार पे कथ करो तहकीक ये रिसर्च वनान जे सान यशिर मा पत्मो पांचो वरियो पे अमुक रेशो वारिया हाई गोमुत अगर इस विंग दह नफर वो दोन ये शिकायत जरूर आसान सो गो फैटी लिवर। फैटी लिवर गो क्या अत क्या इलाज परहेज क्या तो यह कह ठीक गुडियोस मह दावत दिमित डॉक्टर अलताफ हुसैन शाह मेडिकल ऑफिसर आयुष यूनिट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुलवामा। डॉक्टर साहब खैर मकदम वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब गोडनेथ यह जान क्रहनमाज अंदर अम कर बॉडी मज तो फैटी क्या अत
4: एक्चुअली यह फैटी लिवर यह क्रहनमाजस पे कर क्रहनमाज जिसम को कहो तानों मज मान पन अच्छा खासा हरारत टेम्परेचर क्याज के पे कर मेटाबॉलिज्म इस्तेहाल जिसमस मज तथ मे एड कर इंसानी जिसमस मगर अगर अत मज सर्दी गज पैद कुन हिसाब सहो चीजों सहो वजह सेल फैट खसान अत फैट डिपोजिशन गाज कि अहज फंक्शन सफर तो तथ पे पे इंसानस थोड़ा गाइडेंस कर ब्रो ठीक हेकान ग
3: फैटी लिवर गो अमस कित नानी मे फैटी लिवर।
4: फैटी लिवर अलामतों बगैर अख बेमार तो यह अल्ट्रासाउंड जरिए तथा पता मगर क्या लक्ष लक्ष अलामत अत म मिलान यानी कि मामूली हे इंसानस दशन साइड कान बोन कम मामूली दग या गोबर हमें रोजित या हमें गैस परेशानी ग्यादा या हिस थोड़ा बद हजम त्यादा गामूली हेकन पुड़स पेशाबस इतमान सान नबर तीरत कह मगर अक्सर यह अल्ट्रासोनोग्राफी तर पाई कड़ना अमुक कि अमस फैटी लिवर और दोम वन बी कि पर्टिकुलर पे वारे कश्मीर यथ मन यह मर्ज वारिया ज्यादा यह बूझतो जन वबा वस फैटी लिवर
3: क्या है कि वजह वजूहत क्या है
4: अत क्या वजूहत सारे को बोर्ड वजूहत अत खन चन फाल्टी आदत सारे को गुक चीज गो तील तीलुक इस्तेमाल वारे ज्यादा करुन तील सो इस्तेमाल करुन यथ मन पर्टिकुलर तील मज क्या मिलावट पाम ऑयल वगैरह अत इस्तेमाल गर्गमन ऑयल मिलावट फैट डिपोजिशन लिवरस मज बढ़ा वारे ज्यादा सह लिवरस पे अमिच प्रत बेहान इस हिपेटोसेल्युलर डैमेज पैद गुक चीज दोम चीज अत कार्बोहाइड्रेट इस क्वांटिटी ज्यादा खेमो जैसे वाइट राइस या सफेद तुमलुक बत खेवान ज्यादा यह वजह बनान त्रोम वजह अत रेड मीट इस वजुल माज पर्टिकुलरली इस बड़ माज तो बे कट माज अत फैट क्वांटिटी ज्यादा यह वजह बनान चूरम चीज खंड मुदुर चीज चाहे मधुर चीज बतौर खंड चीनी वनान इस्तेमाल करो शुगर यहां वन इस्तेमाल करो या अगर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इस्तेमाल या मिठाई हूं ज्यादा इस्तेमाल क्या वजूहत डायरेक्ट वास्त फैटी लिवर
3: सही कत फरमु अक्सर वुछान ये अथ लबन लूकन मे रिफाइंड ऑयल्स इस्तेमाल कर वन बे वक् डॉक्टर साहब वन ना इस फल तील इस्तेमाल कर सह बेहतर कमी करो इस्तेमाल मगर फल तील ये वन मस्टर्ड ऑयल
4: اس مسٹرڈ آئل کچی گانی کا تیل یت وان ٹھیک تو کمپیریٹولی مگر کوانٹٹی مجھ ضروری کم کھین مگر ریفائنڈ تیل وان یہ اخ رواج بنے برو وو تھوڑا تھوڑا کم ہی مزہ موضی آ

0: राजधानी में मैदान घड़ी के मकाम पर नमो ऑक्सीजन पार्क में दरख्त लगाने के लिए एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ रियासतों में कई मरकजी वजीर, वज़राए आला, अरकान पार्लियामेंट और अरकान असम्बली माहौलियात के आलमी दिन की तकरीबात में शामिल होंगे। मुख्तलिफ मुहिम, तकरीबात और इकदामात के जरिए ये दिन लोगों और मुख्तलिफ तबकों को इस बात की तरगीब देता है कि वो पायदार मुस्तकबिल की खातिर माहौलियाती चैलेंजों से निमटने के लिए तब्दीलियां करें। दिल्ली से अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने सभी की इस बात के लिए हौसला अफजाई की कि वो ज्यादा साफ, ज्यादा सरसब्ज, शादाब और ज्यादा पायदार मुस्तकबिल के लिए काम करें। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने सभी लोगों पर जोर दिया है कि वो आबोहवा और मुस्तकबिल की खातिर फितरत से तहरीक हासिल करते रहने के अहद का इयादा करें। जम्मू कश्मीर के भदरवा में कल मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह दो रोजा लेवेंडर फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे, जिसका मौजू लेवेंडर गोज ग्लोबल है। चौथा लेवेंडर फेस्टिवल 6 और 7 जून को डोडा जिले के भदरवा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में मुनक्किद किया जा रहा है। CSIR IIIM की जानिब से मुनक्किदा इस फेस्टिवल का मकसद जम्मू कश्मीर में पर्पल इनकलाब और लेवेंडर पर मबनी देही कारोबार की मुसलसल कामयाबी का जश्न मनाना है। समुद्री अशिया की बरामदात पर दो रोजा कौमी वर्कशॉप आज से विशाखापट्टनम में शुरू हो रही है, जिसका मकसद भारत की समुद्री अशिया की बरामदात में इजाफा करना और मुल्क भर में इस शोबे को मुस्तहकम करना है। इस वर्कशॉप में बेहतर बुनियादी ढांचे, कदर में इजाफे और पॉलिसी मदद के जरिए समुद्री अशिया की बरामदात में बेहतरी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साहेली कर्नाटक, केरलम, माहे, शिमाली अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और क्राइकल के हिस्सों में दिन के दौरान शदीद से बहुत शदीद बारिश का भी इम्कान है। मुल्क के शिमाल मशरकी हिस्से, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम, अंडमान और निकोबार जजायर, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश में भी आज बारिश हो सकती है। मौसमियात के महकमे के मुताबिक आज अरुणाचल प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान आज साहली आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में गर्मी और हब्स वाला मौसम रहेगा। आज जापान के ककामी गहारा स्टेडियम में 18 साल तक की उम्र के मर्दों के एशिया कप के हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। पूल ए में 9 पॉइंट के साथ दूसरी पोजीशन हासिल करने के बाद भारत सेमीफाइनल में पहुंचा है। भारतीय टीम का ग्रुप मरहले का आखिरी मैच चीनी ताइपे के साथ था, जिसे उसने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए 13-1 से जीता था। भारतीय टीम को सिर्फ जापान के हाथों शिकस्त का सामना हुआ था। सेमीफाइनल में जीतने वाली टीम फाइनल में या तो जापान या पूल बी की सबसे ऊपर रहने वाली टीम का मुकाबला करेगी। खवातीन के अंडर 18 एशिया कप में भारतीय टीम ग्रुप मरहले में कोई भी मैच न हारने के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है और आज भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 9:30 बजे उसका चीन से मुकाबला होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
2: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है वेनेजुएला की कारगुजार सदर की वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात। वजीर आजम आज गुजरात दादर नगर हवेली में करोड़ों रुपए के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपने सफाए अव्वल पर जगह दी है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी का यह बयान भी नुमाया अहमियत के साथ शाये हुआ है कि खुद की फालत के लिए मुतबादिल तवानाई जरूरी है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF के तावुन से बने डिजिटल पोर्टल का ऐलान। मगरबी बंगाल की कानूनसाज असेंबली ने कौमी ई विधान एप्लीकेशन के निफाज के लिए मुफाहमत पर दस्तखत किए। कुछ बैन अलावामी खबरें इस तरह से हैं, अमरीकी कांग्रेस ने ट्रंप की आमरीत को रोका, तुर्की और सऊदी अरब की आबनाए हरमुस के मुतबादल के तौर पर रेल रूट पर गुफ्तगू।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात और दमन जा रहे हैं, जहां वो तकरीबन 21,800 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। वजीर आजम ने आलमी योग आसन चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले एथलीट्स पर जोर दिया है कि वो आयुष

0: वजारत की योगा 365 मुहिम के सफीर बने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आज अपनी दोमाही माली पॉलिसी का ऐलान करेगा। लोकसभा के साबिक सेक्रेटरी जनरल और आईनी माहिर सुभाष सी कश्यप का नई दिल्ली में इंतकाल हो गया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अमरीका के दबाव से भारत रूस ताल्लुकात मुतासर नहीं होंगे। और जापान में आज 18 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये छे आकाशवाणी श्रीनगर समय मोहतरम 8:05 समेत पेश खदमत 65 प्रोग्राम हम सफर
2: समीन पेश खदमत से प्रोग्राम हम सफर ये प्रोग्राम चु तहता वातनावान हम सफर मैरिज काउंसलिंग सेल वाका दारुल उलूम रोड बागे सुंदरबाला छत्सबल श्रीनगर ब्रांच ऑफिस शेखुल आलम रोड करनगर श्रीनगर।

0: आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। समीन सुबह के 9 बज रहे हैं।
1: पेश की जा रही हैं आज की सुर्खियां।
2: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, इशर, निसान और टीवीएस कंपनियों के बा इख्तियार डीलर।

0: लास्टिंग लेगेसी ऑफ नॉलेज ह्यूमिलिटी एंड सर्विस।
1: समीर सुर्खियां अभी और भी हैं, पहले ये वक्फा।
2: भूजो
3: 6-7-8 June दुर्गा नाग डलगेट कश्मीर मोटर्स पे पियाजो इलेक्ट्रिक ऑटोन हूँ फ्री चेकअप कैंप मुनकद।
4: यदि पियाजो इलेक्ट्रिक पैसेंजर ऑटोन 100% फ्री चेकअप सब्जी माहिर तजुर्बियात टेक्नीशियन हिंदे जरिए
3: कंप्लीट व्हीकल चेकअप बैटरी हेल्थ चेक इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंस्पेक्शन ब्रेक तो सेफ्टी चेक सब्जी।
4: याद थो 6-7-8 June कश्मीर मोटर्स दुर्गा नाग डलगेट श्रीनगर।
3: मजीद तफसीलात बुकिंग खतर करियो रबते 0194-2500-596।
5: आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
6: जमींदार भाई बागस कर
7: छिड़का। जमींदार भाई बापत खुशखबर, कहीं पुरान दवा मोटर अनु तो एक्सचेंज स्कीम तहत नियु नो होंडा दवा मोटर। रब्त करू जे के स्टेशनर्स मौलाना आजाद रोड श्रीनगर, यम होंडा कंपनी हिंद बा इख्तियार डीलर।
6: जमींदार भाई बागस कर छिड़का।
1: समीन आज की सुर्खियां आप आकाशवाणी श्रीनगर से बराह रास्त समाप्त कर रहे हैं। अब नजर डालते हैं अखबारात में शाया दीगर अहम खबरों पर। एक अखबार की सुर्खी है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने मिशन युवा के तहत 6 मुस्तदफीन को 1.12 करोड़ रुपए की डिस्बर्सल लेटर्स दिए। नौजवानों को रोजगार तलाश करने वाले नहीं बल्कि रोजगार पैदा करने वाले बनने पर जोर।
0: इलीगल यू टर्न्स रॉन्ग साइड ड्राइविंग क्रिपलिंग श्रीनगर ट्रैफिक, एमवीटी रिपोर्ट। पार्किंग एनक्रोचमेंट्स नो बस बेस, पेडेस्ट्रियन कियोस्क सीसीटीवी मीडियंस रिकमेंडेड।
1: चीफ सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर सोलराइजेशन की पेशरफ्त का जायजा लिया। रुकावटों को दूर करने और काबिल तजदीद तवानाई के मंसूबों को तेज करने पर जोर दिया।
0: एनआईटी श्रीनगर टू होस्ट इंस्ट्रक्शनल स्कूल फॉर टीचर्स ऑन पीडीईज फ्लोर डायनामिक्स फ्रॉम जून 29।
1: यौम शहादत खलीफा इसूम सईदना हजरत उस्मान रदिल्लाहु ताला अन्हु दरगाह हजरत बल और आसार शरीफ शहरी कलाशपुरा में खसूसी तकारीब।
0: Beyond Gulmarg, Jammu and Kashmir eyes 7 new ski destinations. Project seeks to boost winter sports infrastructure. Focus on snowfall terrain and accessibility.
1: Hukumat ne mehkamon ke mali ikhtiyarat mein izafa kar diya. Technical manzoori ki had 2 crore se badha kar 5 crore rupaye mukarrar. Lieutenant Governor ki manzoori ke baad mahkama khazana ka notification jari.
0: World Environment Day. Kashmir's vanishing springs signal a growing water crisis. Climate change, shrinking snowfall and urbanization threaten centuries old water sources.
1: रहने वाली श्रीनगर में 2 करोड़ रुपए मालियात की 3 मंजिला इमारत मिसमार अनंतनाग और सोपोर में मनुष्यात केसों के मुलजमान की रिहायशी जायदाद जब्त।
0: पीडीडी विंस नेशनल रिकॉग्निशन फॉर सोलर स्कीम।
1: कूड़ा करकट से सब्जियां उठाकर फरोख्त करने का इल्जाम गलत, फूड सेफ्टी। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो को गुमराहकुन करार दिया।
0: रुपीज 220 करोड़ रिलीज्ड फॉर जम्मू एंड कश्मीर पंचायत, ओवर 7.4 लाख पंचायत स्टेक होल्डर्स ट्रेंड।
1: सकीन ऐतू की सदारत में श्रीनगर में अवामी राबता प्रोग्राम, जवाबदेही अवामी एतमाद के लिए नागुजर। हर शिकायत का संजीदगी से देखने की जरूरत, मवसर अजारे पर भी जोर दिया।
0: जी लिखते हैं, वजीर आला उमर अब्दुल्ला की अवामी नुमाइंदों और अफसरान से मुलाकात, रिहायशी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और राबता मंसूबों पर तबादले ख्याल।
1: मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है जिसकी खबर है, भारत तेजी से तरक्की करती मईशत, सरमायाकारों के लिए काबिल एतमाद मकाम, पीयूष गोयल।
0: महकमे दस्तकारी व हैंडलूम में कारपेट स्केल अप ग्रेडेशन की मुहिम का किया आगाज। 180 खवातीन ट्रेनर्स एमओटी के जेर एहतमाम स्मार्ट प्रोग्राम से मुस्तफीद होंगी।
1: सड़क हादसा पर काबू पाने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट जम्मू कश्मीर की रजाकाराना मुहिम, 8 जून से 30 जून तक शरका की रजिस्ट्रेशन। नौजवान रोड सेफ्टी बेदारी मुहिम में शामिल हों, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शेष पाल महाजन।
0: फौज के माली इख्तियारात में तारीखी इजाफा, फील्ड कमांडरों को दोगुना माली इख्तियारात, दिफाई खरीदारी और मंसूबों पर अमल, दरामद में आई गई।

आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बसारत गुल। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर एक जिंदा उजावेद किरतास है जिस पर सदियों से फहमुदानिश इख्तिरा फनकारी और दस्तकारी नक्श की गई है। श्रीनगर में एक हफ्ते तक जारी रहने वाले रंग

0: या लैंडलेस जो लेबरर होते हैं या शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब हो गए
1: स्पेशली
0: स्पेशल एबल्ड लोग जो है वो, तो ये सारे अब एक्सक्लूजन कौन कौन एलिजिबल नहीं है इसमें, जिसके पास भी कोई व्हीकल है मोटराइज्ड टू व्हीलर थ्री व्हीलर या फोर वो एलिजिबल नहीं है। मैकेनाइज्ड फार्मिंग इक्विपमेंट किसी के पास होगा वो भी एलिजिबल नहीं है। गांव में केसीसी होता है जिसके पास भी केसीसी है वो एलिजिबल नहीं है। इसी तरीके से जो भी तरीके का कोई एम्प्लॉयड गवर्नमेंट में होगा ही इज नॉट एलिजिबल। दोज हु वर्क इन गवर्नमेंट मैनेज नॉन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस उसमें भी नहीं। किसी की भी इनकम अगर 10,000 रुपए महाना है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। दोज ओनिंग, या इसमें अलग इंडिकेटर्स भी है जैसे किसी के पास घर में वो इंडिकेटर जैसे लैंडलाइन या रेफ्रिजरेटर है, हालांकि वो सब चीजें मेटिकुलसली देखी नहीं जाती है, बहुत सारे गोल्डन कार्ड्स इशू किए जाते हैं, सरकार उसमें थोड़ी लिबरल है, लेकिन स्कीम की जो डिटेल्स है उसमें क्लियरली लिखा है अगर किसी के पास पक्का मकान है इज नॉट एलिजिबल, या 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है फार्मिंग जमीन है तो वो एलिजिबल नहीं है। बाकी सारे लोगों का जो मैंने जिक्र किया तो वो वल्नरेबल सेक्शंस में आते हैं जिनको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसिस की वजह से पॉवर्टी में चले जाते हैं या अगर पैसे नहीं है तो वो हेल्थ केयर नहीं कर पाते एज अ रिजल्ट उनकी फैमिली को दिक्कतें होती है।
1: डॉक्टर साहब जैसे आपने एलिजिबिलिटी की बात की, क्या आपको लग रहा है कि इसमें कई ऐसे सेक्शंस ऑफ पीपल है सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है ऑन द बेस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन ऑन द बेस ऑफ योर रिसर्च स्टडी, क्या आप बता सकते हैं कि कुछ और लोग इसमें होने चाहिए या बराबर सारे लोग इसमें आए हैं?
0: मेरे ख्याल में जो ऑब्जेक्टिव है स्कीम का और जो गवर्नमेंट के पास एक हेडरूम होता है बजट का, क्योंकि ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव स्कीम है क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है
1: जी।
0: और ये हम यहाँ पे एडवांस नेशन नहीं है, बहुत सारे लोग गरीबी की सतह से नीचे हैं, अराउंड 20% पीपल अगर पुराना वाला सेंसस ले
1: जी।
0: तो उनके लिए बहुत ज्यादा बजटिंग का जो है वो लिमिटेशन रहती है। अदरवाइज जैसे कि आपने बिल्कुल सही बात कही, अगर हम कश्मीर की बात कहें यहाँ पे हम ऑफन देखते हैं कि क्रिटिकल इलनेस लाइक कैंसर ट्यूमर या बाकी सारी ड्रेडेड डिजीज बहुत ज्यादा फैल चुकी है और वो डिजीजे जो है ये गोल्डन कार्ड में वो चीजें नहीं आती हैं और उन्हीं जो बीमारियां हों उन पे सबसे ज्यादा खर्चा होता है। फिर हमने देखा बहुत सारी सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा अकाउंट नंबर दिए होते हैं फिर कंट्रीब्यूट करते हैं, एक सोशल सिक्योरिटी नेट है, बट सरकार अगर
1: क्राउड फंडिंग
0: अब अगर सरकार उसमें भी पैसा लगाए लेकिन उसमें पैसे की जो है मैंने जैसे ही कहा एक लिमिटेशन है सरकार के पास आमदनी की और उसमें कितना खर्चा आएगा, तो इन्होंने एक स्टार्ट दिया है मेरे ख्याल में, स्कीम को कभी 8वां साल चल रहा है तो इसमें रिफॉर्म्स आएंगे ऑफ कोर्स और जो वो खतरनाक वाली बीमारियां में भी उसकी भी राइडर रखेंगे कि सोशली वल्नरेबल जो है उनको अगर ये बीमारियां होती है तो किस तरीके से सरकार उनको हेल्प कर सकते
1: हैं। क्लियर बेनिफिट्स क्या है स्कीम?
0: क्लियर बेनिफिट सिंपल सी चीज है, मैं एक यूनिट इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, एक हाउस होल्ड है जिसकी हैंड टू माउथ है जो कि हमने देखा कि लगभग 50 करोड़ इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं लोग और 10 करोड़ हाउस होल्ड्स है, अगर खुदा ना खास्ता कोई भी मेंबर इसमें से अगर अर्निंग मेंबर तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, नॉन अर्निंग मेंबर भी, तो जो स्पेंडिंग पैटर्न है घर का एक तो हो गया किचन या ग्रोसरी एक्सपेंसेस, उसके अलावा बच्चों की पढ़ाई वगैरह उस पर असर पड़ जाता है, तो आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो रही है अगर घर पे कोई ज्यादा बीमार पड़ गया तो बीमारी एक प्रायोरिटी में पढ़ाई के ऊपर आती है, तो पहले बीमार शख्स को इलाज के लिए पैसे लगाने
1: पड़ते हैं।
0: करेक्ट एक्सपेंडिचर, तो ये आएगा कहां से? ऑब्वियसली किचन से तो नहीं आएगा, तो लोगों की पढ़ाई से या बाकी जरूरियात से कम हो जाता है, तो इससे क्या होता है आप एक ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं जहां पे एक इंसान को जिंदा रहने के लिए या सेहतमंद रहने के लिए उसको सैक्रिफाइस ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, क्या मुझे बच्चों को कंटिन्यूअसली पढ़ाना है या मुझे बच्चों को पढ़ाई से उठा के उनको काम पे लगाना है
1: जी,
0: या कोई अर्निंग हैंड ही खुद बीमार हो जाता है, तो ये ट्रेड ऑफ की वजह से आप 10 साल के बाद देखेंगे एक सोसाइटी बहुत ही आपकी वो कैपिटल ह्यूमन डेवलपमेंट हुई नहीं होगी। जैसे कि हम नेबरिंग कंट्रीज में देखें, चाइना ने बहुत इन्वेस्ट किया ह्यूमन डेवलपमेंट पे, तब जाके उनका आउटपुट इतना ज्यादा। हिंदुस्तान की भी यही कोशिश है जो पॉलिसी मेकर्स है नेशनल हेल्थ पॉलिसी की भी या इकोनॉमिक पॉलिसी की भी, कि हम लोगों के जो सोशली वल्नरेबल है इनकी जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस है जिसकी वजह से इनको एग्जिस्टिंग बजट जो कि ऑलरेडी बहुत टाइट है उस पर असर ना पड़े, हम इनको एक फाइनेंशियल सपोर्ट दें। वो सपोर्ट जैसे कि मैंने कहा 17,500 करोड़ की सूरत में इस बजट में है और ये दिन ब दिन इंप्रूव हो रहा है और हॉस्पिटल्स इसमें भी ऑनबोर्ड हो रहे हैं और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो भी रिलैक्स हो रही है, लिबरल है सरकार जैसे कि मैंने कहा जो एलिजिबिलिटी हमने देखी, लेकिन जिन लोगों के पास हम सोसाइटी में गोल्डन कार्ड देखते हैं बहुत सारे लोगों के पास नहीं होना चाहिए था लेकिन गोल्डन कार्ड है
1: बिकॉज ऑफ यू नो लिबरल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक रियलिटीज ऑन ग्राउंड जो रिक्वायरमेंट है।
0: ये इसमें रेवेन्यू लीकेज का भी एक चैलेंज आ जाता है सरकार के पास, जैसे कि बहुत सारी सरकारी स्कीमों है रेवेन्यू लीक होता है लेकिन अब उसको कंटेन करने के लिए सरकार के पास इवेंचुअली फिर आहिस्ता आहिस्ता डेटा ज्यादा जमा होना चाहिए, जैसे आधार ने बहुत अच्छी चीज की कि आधार बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड है, जो भी कोई बेनिफिट है वो आइडेंटिफाइड है एंड यूजर वो डायरेक्टली उसके
1: डायरेक्टली उसमें ट्रांसफर हो,
0: मिडिलमैन जो कि इसमें एक्सप्लॉइट करते थे उस चीज को लेके काफी जो है सुधार आया।

0: तो मेरे ख्याल में ये रेवेन्यू लीकेजेस भी कंटेन हो जाएंगी। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये स्कीम यहाँ पे 2020 दिसंबर से लागू हुई, रेस्ट ऑफ द कंट्री में सितंबर 2018 से लागू हुई
1: जी। अगर तो किस तरह का सिनेरियो आपको लग रहा है आफ्टर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, 2020 से यह बात कर रहे हैं, तो किस तरह का आपको दिख रहा है? जैसे आपने बात की कि ये सेक्शन या ये लोग इसमें दे हैव बीन कवर्ड, सो आफ्टर कवरेज हाउ डू यू सी कि जो इसका बेनिफिट है ग्राउंड पे, किस तरह से हम ह्यूमन, जैसे आपने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की, तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हमारा जो लोग हैं काम करने वाले डिफरेंट अलग अलग सेक्शंस में काम कर रहे हैं, अलग अलग यू नो एरियाज में काम कर रहे हैं, उससे कितना आपको लग रहा है जम्मू कश्मीर और पर्टिकुलरली कश्मीर रीजन में, किस तरह से आप उसको देखते हैं?
0: मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल लूंगा, आजकल हार्ट अटैक्स या कार्डियक अरेस्ट बहुत आम सी चीज हो चुकी है, उसमें जो स्टेंट आता है, जो स्टेंट डालते हैं हार्ट में, वो भी गोल्डन कार्ड में कवर होता है। पेसमेकर वो भी गोल्डन कार्ड में कवर होता है। आपकी आंखों की कैटरेक्ट की सर्जरी जो बहुत आम है एल्डरली लोगों में,
1: वो भी
0: इसमें कवर होती है। पहले ये चीजें फ्री नहीं थी, इसमें पार्ट ऑफ इट वॉज सपोज टू बी पेड बाई द पेशेंट। हालांकि आई एम वेरी इस चीज को लेके कि जम्मू कश्मीर का अगर हम बात करें कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया, यहाँ पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ले ले या लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले ले, बाकी चीजें स्पीड जो ग्रोथ की थी वो बहुत ज्यादा थी कंपेयर टू रेस्ट ऑफ इंडिया। पॉवर्टी भी देखें, 80% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है एज पर प्रीवियस सेंसस, कंपेयर टू मेनलैंड इंडिया 22% थे। तो यहाँ पे हेल्थ केयर ओवरऑल जो अवेलेबिलिटी थी वो फ्री थी, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का भी अच्छा खासा नेटवर्क था, सेकेंडरी का भी और टर्शरी का भी। लेकिन कुछ बीमारियां जो अब आई, जैसे मैंने स्टंट डालते हैं हार्ट में या कैटरेक्ट की सर्जरी, या मैंने आपको अभी बोला पेसमेकर, ये पहले जरूरत नहीं पड़ती थी ज्यादा
1: जी,
0: अभी ये चीजें जरूरत है। अभी वाले सिस्टम में अगर पुराना जेएनके का सिनेरियो होता तो ये चीजें लोगों को आउट ऑफ पॉकेट देनी पड़ती, अभी ये चीजें आउट ऑफ पॉकेट नहीं देनी पड़ती। हूसोएवर हैज द गोल्डन कार्ड एंड लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द गोल्डन कार्ड, वो लोगों को इससे बहुत आसाइश होती है। और रही बात छोटी छोटी एक्सीडेंटल वगैरह बाकी सब चीजें, वो सारी कवर होती है, और हमारे मेजर हॉस्पिटल सारे कवर्ड है इसमें, और इवन प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल जहां पे ऑफ लेट इन्वेस्टमेंट काफी हुई है प्राइवेट हेल्थ केयर में, वहां पे भी गोल्डन कार्ड्स को एक्सेप्टेंस अच्छी खासी लेवल पे हो, और सरकार की भी इम्प्लीमेंटेशन डीसी ऑफिसेज की लेवल पे हो या हेल्थ केयर ऑफिशियल्स की लेवल पे हो, दे आर इंश्योरिंग कि ये चीज जो है जो
1: ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे हर जगह एक्सेप्टेबल,
0: करेक्ट, इवन प्राइवेट में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी विद द गवर्नमेंट। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखिए वहां पे भी एक्सेप्टेंस लेवल इनकी बहुत अच्छी है।
1: तो डॉक्टर साहब, जैसे अपने सामने अपने लिसनर्स के लिए मैं एक्सप्लेन कराना चाहता हूँ आपके जरिए से कि एक फैमिली है, 4 मेंबर फैमिली 5 मेंबर, अब गोल्डन कार्ड हर एक के पास होता है?
0: गोल्डन कार्ड हर एक के पास हो सकता है, लेकिन बेनिफिट जो है वो एक साल में आप 5 लाख से ज्यादा नहीं ले सकते।
1: मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, जो भी है, बुजुर्ग लोग भी हो सकते हैं, क्या ये एक एक इंडिविजुअल को गोल्डन कार्ड?
0: गोल्डन कार्ड एवरीबॉडी हैज टू हैव अ गोल्डन कार्ड, यस, हूएवर इज एन एडल्ट मेंबर उसको आप
1: ओनली एडल्ट। बच्चों के लिए क्या है इसमें?
0: बच्चों के लिए आई डोंट नो, आई हैव नॉट गॉन थ्रू कि बच्चों के लिए, एडल्ट मेंबर्स के लिए गोल्डन कार्ड इज अवेलेबल, और इसमें जो कवरेज है दैट इज कैशलेस कवरेज अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर। मींस खुदा ना खास्ता कभी एक फैमिली मेंबर बीमार हो गया, उसको लाख रुपए का खर्चा आ गया, अब अगर दूसरा मेंबर बीमार,
1: दे हैव मार्जिन, दे हैव प्रोविजन,
0: मार्जिन, यस, तो दूसरे मेंबर को भी आप यूज कर,
1: अप टू 5 लाख इन अ ईयर,
0: इन अ ईयर, दूसरे साल जो ही मार्च आपका खत्म हो रहा है इसमें एलोकेशन फिर से होती है, आपका वो काइंड ऑफ रिचार्ज फिर से हो जाता है 5 लाख के लिए। इसमें कॉम्प्रेहेंसिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है, कंसल्टेशन भी है, मेडिसिन भी है, डायग्नोस्टिक्स भी है, मींस आपको टेस्ट भी इसमें कवर हो जाते हैं, सर्जरी भी, इम्प्लांट्स जैसे मैंने बात, स्टेंट वगैरह लगता है, अकोमोडेशन एंड फूड भी। इमेजिन ये कितनी कॉम्प्रेहेंसिव है कि अस्पताल में आपको बैठना पड़ा, वहां पे खाना पीना या रहना पड़ा, तो उसके लिए भी गोल्डन कार्ड की आप जो है पेमेंट कर सकते हैं। ये प्री हॉस्पिटलाइजेशन के 3 दिन देता है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के 15 दिन कवर होते हैं इसमें। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस अराइजिंग ड्यू टू द ट्रीटमेंट फर्दर, वो भी इसमें कवर होता है। इसमें बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज होती है, तो ये नहीं है कि आपने गोल्डन कार्ड बनाया उसके बाद अगर आप बीमार हुए, बट गोल्डन कार्ड आपने आज बनाया, somebody suffering from diabetes from last 10 years, he is also eligible.
1: Okay.
0: इसमें फैमिली साइज की लिमिटेशन नहीं है, जैसे 4 हम बोलते हैं, इफ somebody has a family of 10, he is also eligible. There is no restriction on gender, obviously. Nationwide portability है, benefits available all across. Approximately 2000 के करीब मेडिकल प्रोसीजर जो है यह कवर करता है, सो ये बहुत ही meticulous स्कीम है।
1: डॉक्टर साहब, जैसे जो गोल्डन कार्ड होल्डर है या आयुष्मान भारत के अंदर वो बेनिफिशियरी है, अब मान लीजिए कश्मीर से हम बाहर जा रहे हैं किसी भी काम से, किसी भी वजह से, क्या बाहर भी है वहां पे भी इसका ये एलिजिबिलिटी है हर जगह?
0: अक्रॉस, यू आर अ गोल्डन कार्ड होल्डर, इट हैज अ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस अक्रॉस द कंट्री।
1: ओके,
0: मे बी आपने अपने लोकली बनाया होगा डीसी ऑफिस से या जो भी हेल्थ केयर
1: जहां से भी।

0: हाँ, लेकिन अगर आप गॉड
1: फॉरबिड
0: समबडी इज इन गोवा, ही फेसेस एन एक्सीडेंट, सो ही कैन गो टू अ लोकल हॉस्पिटल इन गोवा एंड गेट,
1: दे विल एक्सेप्ट दैट कॉल.
0: यस, ऑफ कोर्स.
1: तो उसका ट्रीटमेंट वैसे ही होगा जैसे यहाँ लोकली होगा.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
1: तो अच्छा, जो फैसिलिटीज वहां पे होंगे, ऑफ कोर्स वहां पे कुछ खर्चा भी बढ़ जाता होगा या इस तरह के हॉस्पिटल्स में एज कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर और जो कश्मीरी जन है, मान लीजिए हम दिल्ली में है किसी और जगह है, तो वहां पे जो उसका एक्सपेंडिचर जो है वो तो जाहिर है ज्यादा भी हो सकता है. तो इट इज ऑल कवर्ड इन दैट
0: 5 लाख आपकी अपर कैप है, उसमें जो भी आप ले सकते हैं. 5 लाख अगर किसी का 6 लाख हो गया, ही विल हैव टू पे द एडिशनल एक्सपेंसेस.
1: ओके.
0: ऑब्वियसली अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, सरकार का बजट लिमिटेड है,
1: हर चीज कवर नहीं हो सकती,
0: हर चीज कवर नहीं हो सकती.
1: लेकिन एज यू सेड अर्लियर कि स्कीम जो है आप समझते हैं एज एन एक्सपर्ट एंड एज वी एज पीपल इन द इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम, तो हम क्या ये समझ सकते हैं या क्या हम बता सकते हैं कि ये बहुत ही क्या कहते हैं उसको प्रो पीपल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया?
0: एब्सोल्युटली. इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट पहले से, 1947 से ही. पहले अगर देखे तो

0: हैं तो वहां पे जो उसका एक्सपेंडिचर जो है वो तो जाहिर है ज्यादा भी हो सकता है, तो इट इज ऑल कवर्ड इन दैट
1: 5 लाख आपकी अपर कैप है, उसमें जो भी आप ले सकते हैं, 5 लाख अगर किसी का 6 लाख हो गया ही विल हैव टू पे द एडिशनल एक्सपेंसेस।
0: ओके,
1: ऑब्वियसली अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, सरकार का बजट लिमिटेड है,
0: हर चीज कवर नहीं हो सकती,
1: हर चीज कवर नहीं हो सकती।
0: लेकिन एज यू सेड अर्लियर कि स्कीम जो है आप समझते हैं एज एन एक्सपर्ट एंड एज वी एज पीपल इन द इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम, तो हम क्या ये समझ सकते हैं या क्या हम बता सकते हैं कि ये बहुत ही क्या कहते हैं उसको प्रो पीपल इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया?
1: एब्सोल्युटली, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट पहले से, 1947 से ही। पहले अगर देखें तो इंडिया का जो मॉडल था फेबियन सोशलिज्म का था, सबसे ज्यादा सर्विसेज सरकार ही देती थी, मोस्ट ऑफ द कंपनीज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर ऑब्वियसली जो ग्लोबल इकोनॉमी ओपन अप हुई, डिमांड्स रियलिटीज चेंज हुई, तो प्राइवेटाइजेशन का दौर चला। लेकिन जो रोल सरकार का है दैट इज टू कीप एब्रिस्ट विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोशली वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिसमें हेल्थ केयर और एजुकेशन दो ऐसी चीजें आती है विच इज बिसाइड्स रोटी कपड़ा एंड मकान। इन तीन चीजों के अलावा दो बड़ी चीजें हैं जिन पे खर्चा होता है एक फैमिली का, हेल्थ केयर एंड योर एजुकेशन। ये दोनों चीजों को लेके कोई भी सरकार हो, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, वो कांग्रेस की हो, एनडीए, यूपीए, इन्होंने कंसिस्टेंटली इन पे स्कीम्स जो है कंसिस्टेंटली बनाई, बजटरी एलोकेशंस बनाई है। हमने रिसेंटली आपके साथ आई थिंक एमजी नरेगा को, जिसको जी राम जी स्कीम बनाया गया, उस पर भी हमने डिस्कशन की।
0: जी राम जी,
1: करेक्ट, वो जॉब के लिए है। इसी तरह से एजुकेशन के लिए विद्यालक्ष्मी स्कीम है, यू हैव एंडलेस स्कीम्स। तो इंडिया एज अ कंट्री हैज ऑलवेज बीन प्रो पुअर। Obviously, like I said, 90s के बाद एक capitalistic जो है regime consistently because of the opening of the economy, because of the globalization. लेकिन अभी भी जो Indian government है, they don't stay away from coming forward with schemes and welfare schemes for its people.
0: Sir, आप आयुष्मान भारत में किस तरह से आप देखते हैं कि इसमें जो जो कहीं हम ये समझ सकते हैं या ये बता सकते हैं कि improvement और augmenting the you know the facilities या increasing the ceiling या slab की हमने बात की, golden card के हवाले से हम बात कर रहे हैं, आप किस तरह से समझते हैं कि कहां तक जाना चाहिए सरकार को और कहां कहां पे जरूरत है, किस तरह की जरूरत है इसको और इंप्रूव करने की और कवरेज बढ़ाने की?
1: पहली चीज, जो भी स्कीम बनती है हिंदुस्तान में सेंटर में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक कैपेसिटी होती है स्पेंड करने की, लेकिन कैपेसिटी के साथ साथ हमको ये भी देखना है कि इंडिया बहुत ही डाइवर्स कंट्री है ज्योग्राफिकली, जेनेटिकली भी। लोग अगर आप कश्मीर के जेनेटिक्स देखेंगे और साउथ इंडिया की जेनेटिक्स या फिर नॉर्थ ईस्ट,
0: एग्जैक्टली डिफरेंट तो है।
1: तो जेनेटिक्स मेकअप, ज्योग्राफिकल एक्सपोजर, ऑल्टीट्यूड वगैरह, इनकी वजह से बीमारियों का जो मेकअप है वो डिफरेंट है। हमारे यहाँ ज्यादा ऑर्थोपेडिक चीजें, हड्डियों की ज्यादा बीमारियां देखेंगे आप, साउथ में एक अलग किस्म का चीजें देखेंगे, पंजाब में आपको ज्यादा डायबिटीज और वो सब,
0: नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट होगा।
1: तो मेरे ख्याल में ये जो स्कीम है बहुत ही अच्छी स्कीम है, लेकिन टू एलोकेट फंड्स इट शुड बी स्टेट स्पेसिफिक। ये स्टेट्स को एक पर्टिकुलर एज पर रीजन स्पेसिफिक उनको दिया जाए और वो इसमें कैप्चर करें कि इसमें कौन सी चीजें आनी चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, किसी स्टेट में किसी बीमारी का
0: ज्यादा क्या करना चाहिए।
1: करेक्ट, तो मेरे ख्याल में वो कस्टमाइजेशन एक चीज है जो कि कर सकते हैं, क्योंकि नेशनल लेवल पे वो करना इज इम्पॉसिबल। जैसे कि मैंने कहा, हिंदुस्तान लगभग
0: यूनिफॉर्म नहीं हो सकता,
1: ये कॉन्टिनेंट, ऑलमोस्ट ए कॉन्टिनेंट। तो इसमें आप दिल्ली में बैठ के स्कीम बना रहे हैं, बहुत ही अच्छी बना रहे हैं, लेकिन उसकी जो डायवर्सिटी है उसको करने के लिए आपको स्टेट्स का साथ जरूरी चाहिए। दैट्स वन। सेकंड, जो कि आपने इनिशियली एक बात कही वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ डिजीज का प्रोफाइल अब चेंज हो चुका है, उसमें हेल्थ केयर में अब ऐसी क्रिटिकल डिजीज आती है जिसमें लोग ड्रेन हो जाते हैं फाइनेंशियल, तो उनको किस तरीके से कैप्चर किया जाए। हालांकि फाइनेंसिस पे लोड बढ़ेगा बट जरूरत है, वो चीज आई थिंक दे हैव टू डिलिबरेट अपॉन। तो डायवर्सिटी एज वेल एज इंक्लूजन ऑफ न्यू जो क्रिटिकल इलनेस डिजीजेस हैं, हाउ टू कैप्चर दोस, दे कैन बी न्यू फॉरवर्ड लुकिंग फॉर दिस स्कीम। आई थिंक
0: डॉक्टर साहब, आप ये कैसे हो सकता है ये काम, जैसे आपने जस्ट आपने सजेस्ट किया, रिकमेंड किया कि इस तरह से होना चाहिए, जैसे आपने डायवर्सिटी की बात, क्या क्या चीजें सरकार के पास पहुंचनी चाहिए, किन चीजों के बारे, कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे इनपुट्स हमारे साइड से, क्या क्या प्रायोरिटाइज कराना चाहिए सरकार के पास, या इट शुड गो इन टू द यू नो फीडबैक सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट।
1: करेक्ट,
0: कि इसको फिर कंसिडर किया जाए इन द पॉलिसी मेकिंग।
1: किसी भी पॉलिसी की सक्सेस या फेलियर डिपेंड करता है कि उस पॉलिसी जब बना रहे थे कौन से डेटा पॉइंट्स को कंसिडर किया जाए। मींस डेटा जितना सही होगा उतनी आपकी पॉलिसी, पॉलिसी एक सोल्यूशन होता है किसी प्रॉब्लम का, तो वो सोल्यूशन आपका ज्यादा बेहतर होगा। तो हमारे साइड से जितना डेटा सही जाएगा और रीसेंट डेटा जाएगा, अगर हम 2018 के डेटा पे अभी पॉलिसी बनी हुई है दैट इज ऑलरेडी 8 ईयर्स ओल्ड।
0: एग्जैक्टली,
1: अभी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में ऑलरेडी पेशेंट्स आ रहे हैं, डिफरेंट डिजीज लेके आते हैं, प्रोफाइल चेंज हो गया है। क्या वो डिजीज का प्रोफाइल और जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस होती है क्या वो सेंट्रल पॉलिसी मेकर्स तक रेगुलरली पहुंच रहा है,

0: उन चीजों को कैप्चर करके नई पॉलिसीज में वो एड्रेस कर रहे थे. आई थिंक डेटा हैज टू कम फ्रॉम द स्टेट्स एंड द पॉलिसी इफ इट कंटिन्यूज टू बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बट डेटा हैज टू कम फ्रॉम द स्टेट्स. नॉर्मली जो इकोनॉमिक डेटा होता है ये शासन ये प्रोबेबिलिटी बेस्ड होता है. हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन का डेटा कैप्चर नहीं कर सकते. अगर यहाँ पे 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, हम 10 लाख लोगों का डेटा लेंगे. सैम्पलिंग करते हैं, सैम्पलिंग के बेसिस पे हम काम करते हैं. लेकिन अगर वो सैम्पलिंग का दायरा बढ़ाया जाए तो उससे आपकी पॉलिसी में एक वो कॉस्टली होता है. दैट इज डेटा कैप्चर इज नॉट इजी एंड इट्स वेरी कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली. मेरे ख्याल में डेटा कैप्चरिंग पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके हमारी पॉलिसी जो है ज्यादा बेहतर. और ये जो हमने बनाया है पिछले 7-8 साल में बहुत अच्छी चीज बनाई है, इसको हम एक नई लेवल पे ले जा सकते हैं और एक बहुत बेहतर तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं.
1: डॉक्टर साहब, जो वीमेन हेल्थ केयर है इसमें किस तरह से आप देखते हैं, वो वीमेन हेल्थ केयर भी इसमें कवर होता है? और जो वीमेन हेल्थ केयर रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जैसे नई चीजें आई है उनके अंदर भी वल्नरेबिलिटीज बढ़ रही है, डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं, तो उसको भी कवर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए?
0: जैसे मैटरनिटी को लेकर पहले सबसे ज्यादा होता था सर्वाइवल मोर्टेलिटी ऑफ द बेबी एज वेल एज द मदर, अगर हम 30 साल पहले की बात करें. अभी उस स्टेज से हम आगे आ चुके हैं, अब मोर्टेलिटी उतना ज्यादा इशू नहीं होता है, गॉड फॉरबिड, उसकी लेवल बट कम हो चुकी. अब अलग चैलेंजेस है. अब पोस्ट नेटल केयर है, बेबी पैदा होता है उसके बाद आजकल मोस्ट लोगों को नियोनेटल आईसीयू की जरूरत पड़ती है. हालांकि J&K में एक बहुत बड़ा और अच्छा हॉस्पिटल है कंपेयर टू पार्ट्स ऑफ द कंट्री जहां पे बहुत कॉस्टली होता है पर नाइट, वहां पे ऑलमोस्ट 10,000-8,000 रुपए का लेते हैं, यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट है
1: जी,
0: यहां पे भी प्राइवेट सेक्टर में. तो वो चैलेंजेस नहीं है. या पोस्ट बर्थ जो बेबी का जो है न्यूट्रिशन है, दे आर न्यू चैलेंजेस कमिंग अप. या इनफर्टिलिटी है, उसका इनफर्टिलिटी रैम्पेंट,
1: दिस इज नाउ उस पे काफी चैलेंज इन जम्मू
0: खर्च. एंड फीमेल्स के लिए एक सोशल टैबू भी है, जहां के लोग पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, सोशल प्रेशर भी होता है, उसकी वजह से अलग किस्म के सोशल इश्यूज हो जाते हैं, डिवोर्स रेट्स बढ़ जाती है. तो मेरे ख्याल में इनफर्टिलिटी इज अ ग्रोइंग कंसर्न. पोस्ट बर्थ जो नियोनेटल केयर है दैट इज अ ग्रोइंग कंसर्न. इसी तरीके से देर इज ऑल्सो IVF इज बींग, उस पर भी अच्छा खासा, हालांकि वो सरकार इसमें नहीं ला सकती, दैट इज नॉट अ नेसेसिटी, बट people have gone into different fields altogether.
1: You are indicating towards the government level pe. Agar ye facilities aa jaye, ye inputs aa jaye.
0: Correct.
1: Matlab these facilities and interventions could be there. So this will help in overall, you know, healthcare
0: yes,
1: of the.
0: Yes, of course. Aur isme already bahut sari cheeze hain. Aajkal jo bhi government hospitals mein deliveries wagera hoti hain, golden card ke under capture hoti hai. Halanki already J&K government usko free kar rahi thi, lekin uske baad aapko bahut sari out of pocket expenses करनी पड़ती है, इवन इफ इट्स फ्री डिलीवरी वगैरह.
1: एग्जैक्टली.
0: तो वो इस गोल्डन कार्ड में कैप्चर होती है, तो वो एक बहुत बड़ी आसाइश है हमारी फीमेल फोक्स के लिए.
1: तो डॉक्टर साहब, एक और इससे जुड़ा मामला, जैसे हमने जो टर्मिनल डिजीज या टर्मिनली इल जो लोग हैं, इसे कैंसर्स बढ़ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैंसर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स आर कमिंग.
0: करेक्ट.
1: तो मतलब ये तो मतलब लोग सुन के ही परेशान हो जाते हैं, हम सब लोग, लेकिन बहरहाल बात तो करनी है इन अमराज के बारे में, इन बीमारियों के बारे में. तो इसको भी किस तरह से कवर किया जा सकता है, बिकॉज लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर.
0: मेरे ख्याल में जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है गोल्डन कार्ड का, आयुष्मान भारत स्कीम का, वो एक जो डे टू डे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आपकी डिजीजेस पे होता है, किसी को लग गई, चाइल्ड बर्थ है, या फॉर दैट मैटर इवन जो इम्प्लांटेशन हो, पेसमेकर वगैरह, वो भी अब काइंड ऑफ नॉर्मल
1: दैट हैज बीन कवर्ड,
0: वो कवर्ड है. ये जो कैंसर वाली चीज है, इसमें जो एक्सपेंडिचर है इट्स मोस्टली प्राइवेटाइज्ड, सरकार की तरफ से इसमें अक्रॉस इंडिया कहीं पे भी ऐसी, इसमें लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है बहुत कॉस्टली आते हैं, या बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रोसीजर, कीमोथेरेपी हो गया, रेडियोथेरेपी हो गया, बहुत कॉस्टली है. तो आयुष्मान भारत में अगर वो इंक्लूड करेंगे तो इसके बजट पे अच्छा खासा डेंट आ सकता है. तो आई थिंक उसके लिए मे बी गवर्नमेंट हैज टू कम अप विद अ डिफरेंट स्कीम. करेक्ट.
1: डिजीज स्पेसिफिक. तो सोशो इकोनॉमिक किस तरह से आप इम्पैक्ट देखते हैं जम्मू कश्मीर में, इसका क्या खासा फायदा क्या हो रहा है?
0: जैसे कि मैंने कहा कि सिंपल एक मैथमेटिकल पॉइंट है हमारे पास, 17,588 करोड़ यह बजट का अमाउंट है. ये अमाउंट लोगों को खर्च ना करता इससे पहले, यही पैसा अब सरकार खर्च रही है. तो ये खर्चे की आपकी ओब्लिगेशन कम होगी. आप इस पैसे जो आपको जो ऐसा सेक्शन है, अगर इसके पास ऐसा खर्चा करना पड़ रहा है, इवन इफ इट्स साल का 20,000-30,000 डॉक्टर के लिए, वो अब उसको नहीं करना पड़ रहा है
1: जी.
0: तो इधर उसकी सेविंग है, या तो उसको कर्जे से बचाया
1: जी.
0: दोनों सूरतों में उसके हाउस होल्ड की इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो सरकार ने प्रोटेक्ट की, वो एक पॉवर्टी में नहीं चला गया, उसको कहीं से अपने खर्चों के लिए, बिकॉज हेल्थ केयर इज अ प्रायोरिटी, उसको अपने बच्चों को पढ़ाई से नहीं उठाना पड़ा. तो ओवरऑल अगर हम ग्रैन्यूलर लेवल पे देखेंगे, इंडिया इज एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन डेमोग्राफी,

0: जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमको मिलना था
1: बिल्कुल
0: वो कब मिलेगा, जब आपकी पॉपुलेशन हेल्दी होगी, जब आपकी पॉपुलेशन
1: अच्छे से काम करेंगे, डेवलपमेंट होगा, सारा कुछ होगा,
0: करेक्ट। तो यही लोग आपका जो है आउटपुट देते हैं, वो आप गुड्स भी बनाते हैं, सर्विसेज भी देते हैं। अब अगर इन्हीं लोगों को आप पॉवर्टी में पुश करेंगे, इनको खाने के लाले पड़ेंगे, इनको हेल्थ केयर के साथ में जो है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस जाएंगे, इनको कर्जे चढ़ेंगे, ये लोग आपको प्रोडक्टिव की जगह डिपेंडेंट बन जाते हैं, तो ये ड्रैग बन जाता है इकॉनमी पे। तो जम्मू कश्मीर में भी इस पे अच्छा खासा अमाउंट है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर अभी। तो ये अमाउंट आपको एक इट्स काइंड ऑफ ए फ्रीडम फ्रॉम योर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस विच आर गोइंग ऑन हेल्थ केयर, वही पैसा आपको एक हाउस होल्ड को एक मे बी तरक्की की तरफ ले जाएगा। हालांकि अमाउंट कम होता है, वो डिपेंड करता है, अल्लाह ताला बचाए सबको बीमारियों से, तो वो एक एम्पावर करता है एक हाउस होल्ड को टू टेक बेटर डिसीजंस, टू एजुकेट किड्स बेहतर तरीके से, या अपने हेल्थ केयर पे या अपने घर पे ज्यादा तरीके से पैसा खर्च कर सके।
1: डॉक्टर साहब, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे गवर्नमेंट लेवल पे जो जितने भी हॉस्पिटल लेवल्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो हो गया, प्राइवेट सेक्टर में भी जो हॉस्पिटल्स वगैरह वहां पे भी इम्प्लीमेंट, दीज आर बीइंग एक्सेप्टेड गोल्डन कार्ड्स, वैलिड गोल्डन कार्ड्स,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ऐसे तो रिपोर्ट्स नहीं है कि इसमें, लेकिन कुछ चैलेंजेस आप देखते हैं इसमें कि अंडर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, या इसका जो स्मूथ एंड सीमलेस जो है, नॉट ओनली इम्प्लीमेंटेशन, जब भी प्रोसेसिंग होती है गोल्डन कार्ड बनाने की, किस तरह से कवरेज होगा, क्या इस सिलसिले में आप अपनी ऑब्जर्वेशन बताना चाहेंगे और कुछ सजेशन देना चाहेंगे?
0: बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल स्पैन ऑफ द कंट्री एंड द पॉपुलेशन साइज, इसमें चैलेंजेस रहेंगे। आप मुल्क के हर एक बाशिंदे को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, सरकार आपको, रेडियो, टीवी, अखबार के जरिए, और इसमें काफी ज्यादा एक्सरसाइज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी की, गांव गांव गए और बहुत सारे लोगों के
1: ग्रास रूट्स लेवल पे
0: गोल्डन कार्ड है। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनको गोल्डन कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है लेकिन गोल्डन कार्ड बनाया, somebody who is a taxpayer who has a car but he is having a golden card,
1: okay.
0: और कुछ ऐसे लोग हैं जो गोल्डन कार्ड के मुस्तहिक है लेकिन उनके पास
1: नहीं है।
0: ये चैलेंजेस रहेंगे, आप इसको मिनिमाइज करने विद टाइम इट विल मिनिमाइज। जैसे कि सरकार, अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो सब्सिडी ले रहे थे गैस की, उनको रिसेंटली SMS आए कि आप exactly. टैक्स पेयर है, सब्सिडी नहीं मिलेगी।
1: बिल्कुल।
0: तो सरकार जितना ऑटोमेट होगी चीजें, जितना आपके पैन कार्ड, आपके सब चीजें, टैक्स अथॉरिटीज, आपके बैंक अकाउंट्स, ये सब लिंक हो रहे हैं, आपका आधार कार्ड, साथ साथ में गवर्नमेंट को समझ आ रहा है कि रेवेन्यू लीकेजेस कहां से हो रही है, और ये जो रेवेन्यू सेविंग होगी लीकेजेस की, यही आप ज्यादा वल्नरेबल सेक्शंस पे स्पेंड कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में because of the span of the country in terms of geography and number of people, ye challenges rahenge but ha minimize hote rahenge.
1: Dr. Ejaz Ayub sahab, aapka bahut bahut shukriya sir.
0: Thank you so much sir.
1: سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کے خصوصی پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ اپنا فیڈ بیک radiokashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ مجھے اپنے ساتھی نیوز ایڈیٹرز اشفاق شاہ، کوشکی کشپ اور ریکارڈنگ معاون آصف بشیر کے ہمراہ اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
2: مرکز میں NDA حکومت کے 12 برس مکمل ہونے پر ہمارے شب خبر کا تیار کردہ خصوصی پروگرام یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔

0: SWR PVC pipes and fittings. जी हाँ, मून वाटर टंकियाँ बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC pipes and fittings. बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC pipes and fittings.
1: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स. पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड. BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस. कॉल नाउ 9419001960.
2: सूफी सदा ये प्रोग्राम जो प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजे तम नश सबदान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा.
3: युस साहेब इल्म सलूकस मंज अख बेमिसाल इंसानी कमिल, युस साहेब तय मकान त असरार कल्बुक वाकफे कार, सलूकिक त मौरिफतिक असरार पन्निन शारन मंज गेवन वोल शेर दिल नवाज कशीर पद कुर सुचो हजरत ख्वाजा हबीबुल्लाह नौशहरी रहमतुल्लाहि अलैह. यहिंद अशार छे पुर तासीर दिल गुदाज, तो अल्फाजन हिज लताफत छे सठा दिलकश तो मौजूद.

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सविंतुएसु प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। ये प्रोग्राम छु प्रेत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजन ताम नश्र सब्दान।

We program Sufi Sada. As the program of Sufi Sant Shahir Khaja Habibullah Nawshari Rahmatullah Mutalika Tinzi Zindagi Tishiri Pet. Numaya Wazasa Sarjan Ahmed Shahd Ruhi Sultana. Tahrir Abdullah Salam Shorwarti. The Mawin Samina Nabi. Sinis Demi Salanas Pradio. ये आकाशवाणी श्रीनगर है मीडियम 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर ठीक 10:31 और 20 सेकंड हुए हैं आप समाप्त कर रहे हैं लाइव मॉर्निंग शो पयाम सुबह की नशरियात वक्त हो रहा है इंटरैक्टिव प्रोग्राम का आज का प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रही है आज की होस्ट नाजिमा रशीद

समय मोहतरम, आज 5 जून है और पूरी दुनिया में आज यौमे माहौलियात मनाया जा रहा है। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक याद दहानी है कि हम जिस ज़मीन पर सांस लेते हैं, जिस पानी को पीते हैं, जिस हवा में ज़िंदगी महसूस करते हैं और जिन पहाड़ों, जंगलों, दरियाओं और झीलों से हमारी शनाख्त वाबस्ता है, उन सब की हिफाजत हमारी मुश्तरक जिम्मेदारी। आज हम माहौल, मौसमियाती तब्दीली, कश्मीर की कुदरती खूबसूरती, इसके माहौलियाती चैलेंज और अपने अखलाकी व समाजी जिम्मेदारियों पर तफसील से बात करेंगे।

0: sont das Wawak, har das Lonak, dai ad di papanhar. मैं इस के पसे तनाजुर में एक दो बातें अर्ज करना चाहता हूँ। दरअसल कश्मीर की तहजीबी, रूहानी और माहौलियाती फिक्र का एक ऐसा जरी कौल है जो सदियों से कश्मीरी माशरे की इज्तिमाई याददाश्त का हिस्सा है। ये श्लोक, ये कलाम हजरत शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ मंसूब है, उनके कलाम में ये दर्ज है। तो ये महज एक कलाम ही नहीं है बल्कि जिंदगी, फितरत और इंसान के बाहमी ताल्लुक का एक मुकम्मल फलसफा है। नंदरशी शेख नूरुद्दीन वली अलैह रहमा ने इस श्लोक में एक ऐसी हकीकत बयान की जो आज जदीद माहौलियाती साइंस भी तस्लीम करती है। जंगलात बारिशों के निज़ाम को मुतवाजिन रखते हैं, चश्मों और नदी नालों को जिंदा रखते हैं, ज़मीन को जरखेज बनाते हैं और मौसमी एतदाल कायम रखते हैं। जब जंगलात महफूज रहते हैं तो खेत सरसब्ज होते हैं, फसलें लहलहाती हैं और इंसानी जिंदगी खुशहाल रहती है। कश्मीर सदियों से घने जंगलात, सरसब्ज वादियों, चश्मों और जरखेज जमीनों की सरजमीन रहा है। यहाँ के लोगों की मईशत का बड़ा इन्हिसार ज़राअत और बागबानी पर था। नंदरशि रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुशाहदे और रूहानी बसीरत से महसूस किया कि अगर इंसान जंगलात का बेदरेग इस्तेमाल करेगा तो उसके नताइज बराहरास्त इंसानी जिंदगी और खुराक पर मुरतब हों। इसलिए उन्होंने फितरत के एहतराम और तहफ्फुज़ का पैगाम दिया। आज दुनिया मौसमियाती तब्दीली, जंगलात की कटाई, पानी की कमी और माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल से दोचार है। ऐसे में अनपोष तेली यानी वन पोष पहले से कहीं ज्यादा मानी खैज मालूम होता है। माहरीन माहौलियात इस बात पर मुतफिक हैं कि जंगलात बारिशों के निज़ाम को बरकरार रखते हैं, जेर ज़मीन पानी के ज़खायर को महफूज रखते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, हयातियाती तनों की हिफाजत करते हैं, कार्बन जज़ब करके आलमी जिदत को कम करने में मदद देते हैं। इख्तिसार में जामियत की बेहतरीन मिसाल है बल्कि अनचैलेंजेबल और अनपरलल है। सिर्फ चंद अल्फाज में एक वसी समाजी, मौशी, रूहानी और माहौलियाती फलसफा समूह दिया गया है। यही वजह है कि ये श्लोक कश्मीरी दानिश, सूफियाना फिक्र और आवामी हिकमत का नुमाइंदा समझा जाता है। अनपोषित तेली वन पोषी दरअसल इंसान और फितरत के दरमियान तवाजुन का मंशूर है। यह हमें याद दिलाता है कि जमीन के वसाइल लामहदूद नहीं है और इंसानी बका का दारोमदार फितरत की बका पर है। नंदरशी रहमतुल्लाह ताला अलैह का यह पैगाम आज भी इतना ही ताज़ा, जिंदा और जरूरी है जितना कई सदियों पहले था, बल्कि मौजूदा माहौलियाती बहरान के दौर में इस श्लोक की, इस फरमान की, इस तजुर्बे और इस मुशाहदे की मानवियत और भी बढ़ गई है। और हम बबांगे दौल एतराफ करते हैं कि जब तक हमारे जंगलात महफूज रहेंगे तब तक हमारा अनाज और हमारा खुराक चलेगा और खुराक और अनाज की फरावानी मुमकिन है। लिहाजा हमें अपने जंगलात और अपने बनों की हिफाजत करनी चाहिए। शुक्रिया,
1: बहुत शुक्रिया। ये खूबसूरत सा पैगाम डॉक्टर गुलाम नबी हलीम साहब की तरफ से हम तक पहुंचा। उम्मीद हम करते हैं कि जो पैगाम था, जो मालूमात रही, वो हमारे लिए मुफीद तो है, जाहिर सी बात है, लेकिन वो जो पैगाम इन्होंने दिया, हम उस पैगाम पे जो है अमल जरूर करेंगे। आप हमारे साथ बने हुए हैं, बने रहिएगा। एक प्यारा सा ट्रैक आ रहा है, ट्रैक के उस पार बातों का सिलसिला आपका और हमारा जारी है।

एक मरतबा इस्तकबाल, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम माहौलियात का आलमी दिन मना रहे हैं। हम कुछ डेटा अगर आप तक पहुंचाते चलें तो इस वक्त पे जो हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ हालात बने हुए हैं, माहौलियाती आलूदगी की बात हो रही है, एक जायज़ा अगर हम लें तो हमने देखा है कि कश्मीर को दुनिया भर में अपनी खूबसूरती की वजह से माना जाता है, जो किसी भी तारीफ किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है ये सरजमीन, और दुनिया भर में जो है इस ज़मीन को जन्नत बेनज़ीर कहा जाता है। और अफसोस इस बात का है, इस वक्त पे बहुत अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि ये जन्नत जो है आज मुख्तलिफ किस्म के माहौलियाती आलूदगी का सामना कर रही है। हवा, पानी, झीलें, दलदली इलाके जिनको हम वेटलैंड्स कहते हैं, जंगलात और हयातियाती तनु का जो है सबसे खतरात जो है इससे दो चार है इस वक्त पे। फजाई आलूदगी जिसका हमने आगाज में भी जिक्र किया था, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बज़ाहिर हमें लगता है कि कश्मीर शायद बचा

हुआ है, लेकिन ये हमारी गलत फहमी है। आमतौर पर कश्मीर को सनअत आलूदगी से जो है नस्बतन महफूज ही समझा जाता है, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों में हमने देखा कि फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा बहुत बढ़ चुका है और इसके असबाब बहुत से हैं। हमने देखा कि गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद है, ईंटों के भट्ठे जिन पे बहुत से मामलात चले, हमने बहुत से उन पे कंट्रोवर्सीज भी देखी, लेकिन वो मामलात अभी भी वैसा का वैसा ही है। हमने तामीराती सरगर्मियां भी देखी, काफ़ी अरूज पे है और बिलखसूस ये एक बहुत बड़ी वजह है सर्दियों में जो हम कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कोयले जलाते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, उससे भी एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, उसके बाद हम ये भी देखते हैं जब पतझड़ का मौसम होता है, चनार के पत्ते जब गिरते हैं दरख्तों से, मुरझाए हुए पत्ते नीचे गिरे पड़े होते हैं, हालांकि वो एक अलग सी कैफियत होती है, वो खुद में एक बहुत खूबसूरत सा समा होता है, लेकिन बहुत से हजरात हमने देखा कि वो पत्ते जमा करके उन्हें आग लगा देते हैं और वो आग से जो धुआं उठता है उससे भी मामलात खराब हो जाते हैं। सड़कों पर जो हमने गर्दोगुबार देखा है उससे मामलात खराब होते हैं। श्रीनगर में होने वाली एक हालिया तहकीक के मुताबिक जो है फ़ज़ा में मौजूदा बारीक ज़रात जो है PM2.5 कई इलाकों में तश्वीशनाक सतह तक पहुँच चुकी हैं, जिनका बड़ा सबब जो है ट्रैफिक और शहरी सरगर्मियाँ ही हैं। अब इससे बात यह है कि इससे सेहत पे क्या असर पड़ सकता है। हमने कोविड के टाइम पे देखा और कोविड के टाइम पे हमने कुछ हजरात से बात भी की, कुछ एनजीओ से बात की, कुछ डॉक्टर साहिबान से बात की, और उस टाइम पे जो हमारी मशीन्स रहती थी, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं उस टाइम पे ऑक्सीजन के बड़े मामलात रहे हैं, और उस वक्त पे हमें ये समझ आया कि कश्मीर में जो एयर पोल्यूशन है किस हद तक पहुँच चुका है और साफ हवा का होना इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। अब सेहत पे क्या असरात हो सकते हैं एयर पोल्यूशन के, जो दमे के पेशेंट्स हैं या इससे उसमें इजाफा भी होता है और उनके लिए मुश्किल का सबब भी बनता है। इसके अलावा फेफड़ों की बीमारियां, इसके अलावा दिल के अमराज, इसके अलावा बच्चों और बुजुर्गों में सांस की मुश्किलात, ये सारे मामलात हो रहे हैं एयर पोल्यूशन से। वाटर पोल्यूशन की तरफ अगर आए तो जम्मू कश्मीर की झीलें और दरिया जो है सदियों से जिंदगी का एक जरिया रहे हैं, लेकिन आज मैं इनमें आलूदगी के जो मामलात हैं मुसलसल बढ़ रहे हैं। जिले डल की सूरत हाल ही आप देख लें, साइंसी मुतालात के मुताबिक डल झील गुज़श्ता कई दहाइयों में शदीद माहौलियाती दबाव का शिकार हुई है। जो अहम हकाइक हैं उनके मुताबिक 1962 से 2013 के दरमियान जिले डल की सतह में तकरीबन 25% की कमी रिकॉर्ड की गई है। गैर मंसूबा जो यहाँ पे तामीरात हो रही है, गैर मंसूबा बंद तामीरात हो रही है, घरेलू जो फजला रहता है या फिर ये जो जरी आलूदगी, ये सारे मामला जिनका हमने पहले भी जिक्र किया है, ये सारे असबाब बने हुए हैं इसके। एक तहकीक के मुताबिक जो है झील पर पड़ने वाले मजमू आलूदगी के बोझ का जो तकरीबन 55% हिस्सा है वो सतही बहाव से आता है। सतही बहाव हम रन ऑफ को कहते हैं। अच्छा, अब इससे क्या नतीजे निकलते हैं? पानी का जो मयार है वो खराब हो रहा है, पानी के मयार में कमी हमने देखी है। आबी हयात, वो बेजुबा जिनकी कोई भी गलती नहीं है, जिनको अल्लाह ताला ने हमारे भरोसे शायद भेजा था दुनिया में कि आपको जो है हम अशरफुल मखलूकात के साथ में दुनिया दिखा रहे हैं, लेकिन हमने उनका भी नुकसान कर दिया। आबे हयात का बहुत नुकसान हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है जो हमने मामला देखे हुए हैं, और आबी पौधों और एलगई की गैर मामूली जो है अफजाइश भी हो रही है। ये मामलात है वाटर पोल्यूशन के। अब इसके बाद अगर वेटलैंड्स की हम बात करें, वेटलैंड्स का बहरान रहा यहाँ पे। वेटलैंड्स को कुदरत के गुर्दे कहा जाता है क्योंकि ये पानी को साफ करते हैं और सैलाब को कम करने में मदद करते हैं। आप देखिए, अल्लाह ताला ने हमें बहुत तरीकों से वार्निंग्स तो दी हैं, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की बात हो गई, कोविड के मामला देखे, हम फिर भी कुछ न सीखे, फ्लड्स हमने देखे, हम फिर भी शायद कुछ न सीखे। जम्मू कश्मीर में तकरीबन 51 वेटलैंड्स की निशानदेही की गई थी, जिनका मजमूई रकबा जो है 3.9

जब तक हम खुद में एक तब्दीली ना लाएं। ये टेक्नोलॉजी की बात है, ये साइंस की बात है, हमने मजहब की भी बात की, और हर एक मजहब हमें अच्छा ही सिखाता है, बेहतर ही सिखाता है। कुरान मजीद की बात करें तो वक्तन फवक्तन जो है हमें ये बताया गया है कि ज़मीन में फसाद ना फैलाओ। हालांकि अपनी इंटरप्रिटेशंस कुछ और है, लेकिन ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, सूरह एराफ की ये एक आयत है। तो फसाद हर एक तरीके का हो सकता है, फजूल खर्ची से बचो। फजूल खर्ची में इसराफ जो है, इसराफ की बात हो रही है, और ये पानी का मामला भी हो सकता है, हर एक तरीके का मामला हो सकता है, बशर्ते इंसान जरा सोचे और देखे कि हम किस तरह से फजूल खर्ची बचा सकते हैं। हम सिर्फ फजूल खर्ची पैसे के खर्च करने को नहीं कहते, हम फजूल खर्ची अल्लाह ताला की उन नियामतों की फजूल खर्ची भी शामिल कर रहे हैं जिनका वहां पे हिसाब किताब जरूर होगा। अहादीस में भी आप देखें कितनी अहादीस ऐसी है जहां पे हमें सफाई का ख्याल रखने के लिए जो है उसकी तलकीन की गई है, जहां पे हमें ये बताया गया है कि दरख्त लगाइएगा, दरख्त लगाने की फजीलत है। सही बुखारी की हदीस शरीफ है, सही मुस्लिम की हदीस शरीफ है कि जो कोई शख्स दरख्त लगाता है या कोई खेती बोता है, फिर उसमें कोई भी परिंदा, कोई भी इंसान या कोई भी जानवर खाए उससे, तो उसके लिए वो सदक़े जारिया बन जाता है जिस शख्स ने वो दरख्त लगाया हो। यहाँ तक कि अगर उस दरख्त की छाँव में कोई शख्स बैठे और उसको सुकून मिल जाए तो वो भी उस शख्स के लिए जो है सदक़े जारिया बन जाता है। यहाँ तक एक हदीस शरीफ है, मसनद शरीफ की हदीस है, लिखते हैं कि अगर कयामत कायम हो जाए और तुम में से किसी के हाथ में पौधा हो तो वो उसे लगा सकता है, तो वो उसे ज़रूर लगाए। कहने का गर्ज ये है कि इतना ज़रूरी है पेड़ पौधे लगाना। पानी जिया ना करो, बारहा बताया गया है, पानी में इसराफ ना करो, खा तुम बहते हुए दरिया में ही क्यों ना हो, ये अहदीस है। रास्ते की तकलीफ दह चीज हटा दो, रास्ते में तकलीफ दह चीज अगर आपको कोई दिख जाए और अगर वो हटा दे वो आपके लिए सदका बन जाए। तो ये सारे जो मामलात है, ये जो सारी अहदीस हमने पेश की, हमने शेखुल आलम शेख नूरुद्दीन नूरानी रहीमुल्लाह की बात आप तक पहुंचाई, शेख शुरुक हमने आप तक पहुंचाया, उसकी वजाहत आप तक पहुंचाई। गर्ज हर एक बात का यही था कि हम अपने छोटे छोटे इकदाम से बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। कोशिश हम अपने घर से ही करें, कोशिश हम अपने किचन से ही करें, हम डस्टबिन का प्रॉपरली इस्तेमाल करें, हम पानी को ज़ाया ना करें, हम बिजली को बचाएं, जिस तरह से भी हो सके हमें लगे कि हम अल्लाह ताला की इस दी हुई नियामत का अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं और फ़ायदा उठा के हम इसको ज़ाया ना करें। तो ये सब कुछ हमारे पास एक अमानत है, इस अमानत को हम अमानत ही रहने दें, इस अमानत का हम भरपूर फ़ायदा उठाएं, और ये दुनिया, ये कायनात, अल्लाह ताला, सब कुछ हमें अल्लाह ताला ने दिया है इस दुनिया की सूरत में, हर एक नियामत हमें अता की है, लेकिन हम बदले में इस समाज को, इस दुनिया को दे क्या रहे हैं, उस बात पे ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। प्लास्टिक, ये सारे मामला जो है सब चीज़ों को ख़राब ही कर रहे हैं। तो आज का बस इतना कहना था कि हम अपने किरदार को दुरुस्त करें, हम छोटी छोटी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें अपनाएं, तो इंशाल्लाह ताला हमारी शख्सियत में सुधार ज़रूर आएगा। और जब एक शख्स अच्छे के लिए बदलेगा तो वो एक शख्स अपने साथ 10 लोगों को बदल सकता है, और जब साथ मिलके सब अच्छे के लिए बदले तो हमारे समाज में एक अच्छी तब्दीली देखने को ज़रूर मिल सकती है। आज के लिए बस इतना ही, 5 मिनट हैं हमारे पास, लेकिन एक नगमा भी यहाँ पे क्यों करके रखा हुआ है। फिलहाल मुझे इजाज़त दें, आप बाकी के प्रोग्राम्स हमारे सुन सकते हैं हमारी साथी फातिमा सूफी के साथ। फिलहाल अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में शामिल ज़रूर रखिएगा। ये प्यारा सा ट्रैक आएगा, ट्रैक के उस पर आप जुड़ पाएंगे फातिमा सूफी के साथ।

ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मेरे हुए 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। ठीक है, 11:30 हुए हैं, हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम जहत 68.8 मीटर तो FM 103.5 MHz पर। समीन वंच पे छकर तुरो फनकार मोहम्मद यूसुफ चर तो हमनवा इन निश बूज तु कलाम ख्वाजा हबीबुल्ला नौशहरी रहमतुल्लाह अलैह।

来。

سجد شاد لنسرا.

0: گژھو بغداد پانس
1: پانس گژھو پالم دیو
0: سوک نہیں آسی حق سبحانس

0: مشتاق چھوی تس باغوانس
1: مشتاق چھوی تس باغوانس
0: نت کیا لائتس باغس
1: نت کیا لائتس باغس
0: نت کیا لائتس باغس
1: نت کیا لائتس باغس
2: آسانی تو اسے بوزان چھکر درو فنکار سے محمد یوسف زیر تا ہم نوائی من اسے بوزو تای کلائی میں خواجہ حبیب اللہ نوشاری احمد اللہ علی سینی سا دیمی سران اس پر رو یہ آکاشوانی سری نگر ہے میڈیا میں 268.1 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر دن کے 12 بجنے والے ہی اب آکاشوانی دلی سے ہندی اور انگریزی خبروں کا بلٹن اب سے تھوڑی دیر کے بعد ریلے ہوگا
3: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में लगातार दूसरी बार मौद्रिक नीति समीक्षा के दौरान प्रमुख ब्याज दरों को यथावत रखा है। द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने सर्वसम्मति से रेपो दर को 5.25% पर बनाए रखने का निर्णय लिया है, जबकि नीतिगत रुख तटस्थ रखा गया है।
4: After a detailed assessment,
5: हमने बदलती दीर्घ आर्थिक और वित्तीय परिस्थितियों तथा भविष्य के अनुमानों की विस्तार से समीक्षा की है। इसके बाद समिति ने सर्वसम्मति से LAF के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 5.25% पर ही बनाए रखने का निर्णय लिया है।
3: स्थायी जमा सुविधा की दर 5% पर बनी हुई है, जबकि सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर 5.5% पर ही है। बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि अनुमान को पहले के 6.9% से घटाकर 6.6% कर दिया है। बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पूर्वानुमान को भी 4.6% से बढ़ाकर 5.1% किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी पहले हजीरा में औद्योगिक और अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। दोपहर में श्री मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता

0: दाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे को बड़ी गति देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात और महाराष्ट्र के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के महत्वपूर्ण पैकेज राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन बनाने की भी आधारशिला रखेंगे, जिससे आदिवासी क्षेत्रों और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुँच में सुधार होगा। जनकल्याण के तहत प्रधानमंत्री सूरत में 24 घंटे आपातकालीन और ट्रॉमा केयर सुविधाओं से लैस एक आधुनिक 200 बिस्तरों वाले ESIC अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री आज शाम दमन भी जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 जून को नागरिक अलंकरण समारोह में इस वर्ष के 65% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इससे पहले पिछले महीने श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 66% व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह आज जम्मू में एक नए क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की स्थापना के औपचारिक घोषणा करेंगे। ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में मौसम पूर्वानुमान और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया, इसलिए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। पृथ्वी पर सभी जीवों के जीवन की उपयोगिता बनाए रखने और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम जैसी पहलों ने प्रतिवर्ष लगभग 1.1 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये दिन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को व्यक्त करने का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता जारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी समझौते में स्थायी रूप से ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोका जाना चाहिए। घरेलू शेयर बाजार में संवेदी सूचकांक के शुरुआती कारोबार में आज वृद्धि का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 121 अंक के उछाल के साथ 74,461 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi will visit Gujarat and Daman today to dedicate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Surat. Mr. Modi will also inaugurate a 200-bedded ESIC hospital in Surat, providing modern secondary health care across key specialities. The Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of the Government of Gujarat, including modern power distribution upgrades, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at Dahej Petroleum. In the evening, Prime Minister Modi will travel to Daman and lay the foundation stone of development projects worth around 2,970 crore rupees. These projects span various sectors including healthcare, civil aviation, tourism, infrastructure, connectivity and public welfare. The Prime Minister will also inaugurate and dedicate projects worth around 1,340 crore rupees, including the new terminal building of Namo Airport and Namo Hospital. The Reserve Bank of India kept interest rates unchanged for the second time in a row in the current financial year, announcing the second bi-monthly monetary policy for the current fiscal. RBI Governor Sanjay Malhotra today said the Monetary Policy Committee, MPC, has unanimously decided to retain short-term lending rate or repo rate at 5.25% with a neutral stance. RBI has lowered GDP growth projection

0: या उनके हमरा डायरेक्टर जनरल रूरल सैनिटेशन अनु मल्होत्रा भी थी। महकमे इमदादी बहामी की कमिश्नर सेक्रेटरी यशा मुद्गल ने ताउन की मरकज वजारत के आइंदा जोनल जायजा वर्कशॉप के लिए कायम करदा कमेटियों की तैयारियों का तफसीली जायजा लिया। ये वर्कशॉप श्रीनगर में 24 से 26 जून तक मुनक़िद होने वाला है। मरकज में एनडीए हुकूमत के 12 बरस मुकम्मल हुए हैं और इस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में आम लोगों की फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमें शुरू की गईं, जिनमें आयुष्मान भारत योजना भी शामिल है। पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पर लोग आयुष्मान भारत स्कीम से इस्तेफादा करके तिबी निगहदाश्त की मयारी सहूलियात हासिल कर रहे हैं। इस बारे में एक आम शहरी के तासरात।
1: रामन ठाकुर सुल्तानपोरा कंडी बारामूला का रहने वाला हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी ये आम लोगों के लिए ये गोल्डन कार्ड की स्कीम राइज की है, इसका फायदा जो मैं समझ रहा हूं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और हर एक गरीब से गरीब तर जो भी आदमी है उसको ये सुविधा जो मिल रही है, जिसको कि इसकी जरूरत पड़ती है। कोई अचानक बीमार पड़ता है तो जब भी वो अस्पताल जाता है, एडमिट होता है, तो जो सुविधा उसको ये गोल्डन कार्ड से मिलती है वो तो उसका नया जीवन दान मिलता है। और इस स्कीम के लिए हम बहुत ही मशहूर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, खुसूस अपने प्राइम मिनिस्टर के, कि जिसने ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर डायरेक्ट इस एक आदमी को इसकी सहूलियात राइज की है।
0: आज माहौलियात को तहफ़ देने से मुतलिक आलमी दिन है। आज के दिन हयाताती तनुओं को तकवीत बख्शने, नई आलूदगी को कम करने के लिए दरकार लाजमी इकदाम को उजागर किया जाता है। दुनिया भर में माहरीन माहौलियात ने माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने के लिए इख्तिराई इकदाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया है, ताकि कुरे अर्ज और इस पर बोदोबाश करने वाले जानदार बिना किसी आलाइश और रुकावट के अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आलमी योम माहौलियात के मौके पर माहौलियात को तहफ़ देने के वास्ते सरकार के अज़्म का इजहार किया। उन्होंने तमाम शहरियों से भी कहा कि वो भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करें। डिप्टी कमिश्नर बड़गाम अतर आमिर खान ने मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में मरकजी इमामबाड़ा यूसुफ आबाद बेमना का दौरा करके वहां इस सिलसिले में किए गए इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम शहजाद आलम ने भी जिला अफसरों की एक मीटिंग में माही मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में जिले में की गई तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने खासतौर पर बिजली और जल शक्ति के महकमों को आवाम के लिए माकूल सप्लाई दस्तियाब रखने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क्यूम ने जिला सतह की टेलीकॉम कमेटी की एक मीटिंग की सदारत करते हुए जिले में टेली मवासलात के बुनियादी ढांचे, मोबाइल नेटवर्क कवरेज और भारत नेट स्कीम पर अमलावरी का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर बिलाल मुहिद्दीन भट्ट की सदारत में जिला सतह की जायजा कमेटी की मीटिंग में जिले में काम करने वाले बैंकिंग सेक्टर के इदारों की कारगुजारी का जायजा लिया गया। उन्होंने समाजी सलामती की स्कीमों में इंदराज बढ़ाने और तरजीह सेक्टरों के लिए कर्जे वागुजार करने की जरूरत उजागर की। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
2: آداب، یہ آکاش وینی سری نگر کشرین خبرن ہند بلٹن ہس بہ سارا اختر۔ جموں کشمیر من نشاور چیزن ہز لانت مل منج گالنے باپ ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیان زور شور سان جاری۔ ات سلسلس مز آئی آز گاندربل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سندس قیادت مز پد یاترا کڑھنا۔ پد یاترا مجھ مقامی لوکن ہند ایک بھارتی اعداد سرکرم شرکت کرت نشاور چیزن خلاف ہول گنڈن ارادہ کورمت۔ ات موقع پہ ون پنس تقریر مز لیفٹیننٹ گورنرن زم ہین توتھ پوت یوتان نی تم امی عوامی مہم ہند ذریعہ جموں کشمیر امی بت نش پاک کران۔ تمو ون نشاور چیزن ہند کاروبار کرن وال ہرگز تخشن تو نوجوان ات ات مز پھست تہذی باضابات کری باپ تہذ ضروری قدم تلنا۔ منوج سنہا کور نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت ونس تام کہ پیش رفت سرسری خلاصہ تہ۔ ات دوران کور لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا رات کیسن اہم شخصیت ست ملاقات، ان مز جل شکتی ہند وزیر جاوید احمد رانا، ضلع کانگریس کمیٹی پلوامک صدر عمر جان تو ضلع ترقیتی کونسل رام مالک، سابق ممبر ایڈوکیٹ الفت مشتاق تامل۔ جل شکتی تو جنگلات ماحولیات وزیر جاوید احمد رانا ورمل اسمبلی حلقس مز عوامی استعمال اہم ترقیتی پروجیکٹ مقرر کرنے آمتس وقت دوران تمن اند بور دن باپ پڑا معاملہ انزرام باپ کلیئرنس عمل مز وسن ہدایت دتمت۔ تم حلقس مز تعمیرتی منظر نامک افسر اکس میٹنگ مز جائزہ ہان۔ گمی ترقی تو پنچیتی راج محکمک سیکرٹری محمد اعجاز ازدن بال تلک دور کر یاترا زاس شتوہ کس سلسلس مز محکم چین تیارین سام ہس مز تمو ہوت خاص کر نیل گراٹ ہیلی پیڈ پہ بال تل بیس کیمپ تو دومیل کیمپس مز صاف صفائی ہزن سہولت تائزہ۔ تمہ سیت ڈائریکٹر جنرل رورل سینیٹیشن الو ملہوترا تہ۔

0: और 5 गीगावाट डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की योजना की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा पारिस्थितिकी तंत्र में प्रस्तावित सबसे बड़े निवेशों में से एक है। गृह मंत्री अमित शाह त्रिपुरा के अगरतला में बीएसएफ के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की हर सीमा की भौगोलिक और सुरक्षात्मक चुनौतियां अलग अलग हैं, इसलिए सभी सीमाओं पर एक जैसी रणनीति के बजाय स्मार्ट मॉडल अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पर्यावरण को लेकर कई कदम उठाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलाई के पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दिए गए इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। अनामलाई ने हाल ही में भाजपा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा था। कर्नाटक के जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने आज अपने मंत्रालय के आवंटन को लेकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। बेंगलुरु में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें बेंगलुरु विकास मंत्रालय देने का वादा किया गया था, लेकिन उन्हें जल संसाधन मंत्रालय दिया गया। उन्होंने कहा कि वे विधायक के रूप में काम करते रहेंगे और कांग्रेस पार्टी में बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बलिया स्थित जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य सुरहा ताल को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि देश के प्राकृतिक परिवेश और विशेष रूप से आर्द्र भूमि की रक्षा के प्रति भारत की अटूट प्रतिबद्धता इससे झलकती है। नागालैंड सरकार ने राज्य में तंबाकू या निकोटीन युक्त सभी खाद्य उत्पादों के निर्माण, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध पान मसाला, सुगंधित और स्वादयुक्त चबाने योग्य उत्पादों के साथ साथ तंबाकू या निकोटीन युक्त किसी भी अन्य खाद्य पदार्थ पर लागू होता है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख रहा। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक फिसलकर 74,274 पर, जबकि निफ्टी 43 अंक लुढ़ककर 23,374 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी। The news read by Valsa Williams.

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: सफलता प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है कठोर परिश्रम और लगन।
3: बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारे संदेश के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा,
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी,
3: और बेगूसराय बिहार से इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा,
2: ऊपरकोट मोहल्ला चकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य,
3: और डोंडी दोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया,
2: और मगरपारा बिलासपुर से वसीम जाटव, अकरम जाटव, आफताब जाटव, मेहताब जाटव, मेराज जाटव और अल्ताफ जाटव।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं शीत मरुस्थलों की।
2: अब तक हम चर्चा कर चुके हैं अंटार्कटिक, गोबी और लद्दाख के शीत मरुस्थलों की, तो चलिए आगे चर्चा को बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं भारत के एक और शीत मरुस्थल की, जिसे लाहौल स्पीति के शीत मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसे लामाओं की भूमि भी कहा जाता है। तो अजीत जी, एक बार फिर से मैं श्रोताओं की ओर से उसी प्रश्न पर आती हूँ, इसे शीत मरुस्थल क्यों कहते हैं?
3: विमलेश जी, जैसा कि हमने बार बार चर्चा की है ना, कि मरुस्थल केवल गर्म ही नहीं होते, जरूरी नहीं है कि वहाँ रेत ही हो या गर्मी हो जैसी कि आम धारणा है। ऐसा है कि जहाँ वर्षा मानक औसत से बहुत कम हो, जहाँ वनस्पतियों का अभाव हो, जनजीवन कठिन हो, वो स्थान मरुस्थल कहलाते हैं।
2: जी अजीत जी, लाहौल स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है क्योंकि ये क्षेत्र हिमालय की वर्षा छाया यानी रेन शेडो में पड़ता है। हिमालय क्षेत्र की ओर आने वाले मानसूनी बादलों को रोक लेता है, इसी कारण से यहाँ हरियाली बहुत कम देखने को मिलती है। अजीत जी, ये तो बता दें श्रोताओं कि लाहौल स्पीति कहाँ है?
3: विमलेश जी, लाहौल स्पीति है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी भाग में।
2: जी,
3: आमतौर पर हम इसे लाहौल स्पीति कह देते हैं, लेकिन दरअसल ये दो अलग अलग घाटियां हैं।
2: जी,
3: यहाँ का तापमान सर्दियों में -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर -32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
2: जी,
3: गर्मियों में दिन के समय तेज धूप होती है, लेकिन शाम होते ही तापमान गिरने लगता है, रातें बहुत ठंडी हो जाती हैं।
2: श्रोताओ, जहाँ तक जनजीवन का प्रश्न है, कम ऑक्सीजन, भारी बर्फबारी और लंबे सर्द मौसम के बावजूद लोग यहाँ छोटे छोटे गांवों में रहते हैं। खेती करने का मौसम बहुत छोटा होता है, मुख्य रूप से यहाँ आलू, जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं। कई गांवों में तिब्बती संस्कृति और बौद्ध मठ देखे जा सकते हैं। अजीत जी, कल आप बात कर रहे थे यहाँ के आसमान की, कोई खास बात है क्या?
3: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाश गंगा के अनोखे

0: ऋषियों का भी आनंद उठा सकते हैं।
1: क्या बात है।
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
1: क्या बात है। श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
0: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए भी पास।
0: जी विमलेश जी, यहाँ का आसमान सच में रात के समय अद्भुत होता है। आसमान इतना साफ होता है कि आप आंखों से अनगिनत खूबसूरत तारों और यहाँ तक कि आकाशगंगा के अनोखे दृश्यों का भी आनंद उठा सकते हैं।
1: क्या बात है।
0: इसीलिए तो यहाँ कुछ वेधशालाएं भी बनाई गई हैं। खगोल प्रेमियों के लिए तो ये जगह खास है।
1: क्या बात है। श्रोताओं, आपको एक बड़ी रोचक जानकारी दे दें कि कौमिक गांव स्पीति क्षेत्र का सबसे अधिक ऊंचाई वाला गांव माना जाता है। ये समुद्र तल से लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये दुनिया की सबसे ऊंचे मोटर सड़क से जुड़े गांवों में गिना जाता है।
0: और श्रोताओं, ये भी बता दें कि यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए नए लोगों के शरीर को अनुकूलित होने तक धीरे धीरे चलना पड़ता है। यहाँ के घर भी लद्दाख की तरह पत्थर और मिट्टी के बने होते हैं ताकि अंदर गर्मी बनी रहे।
1: और अब बात करते हैं इस क्षेत्र के स्कूलों की। इतनी ऊंचाई और कठिन मौसम के बावजूद यहाँ बच्चे स्कूल जाते हैं। गांव में सरकारी प्राथमिक स्कूल हैं। कभी कभी भारी बर्फबारी के कारण स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद भी करना पड़ता है। यहाँ हिंदी, अंग्रेजी के अलावा बच्चे भूटी और तिब्बती भाषा भी सीखते हैं। आगे की पढ़ाई के लिए भी पास।

0: पहाड़ी रास्तों से होकर पैदल चलकर डाक पहुंचाते हैं। तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी भारत के शीत मरुस्थल लाहौल स्पीति के बारे में।
1: और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर किस गांव में पड़ता है?
1: आप हमारे IVRS नंबर यानी 8800044559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकें ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं तो उन्हें NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर या दीक्षा पर सुन सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं कार्यक्रम नकली हीरे।
1: कक्षा 4 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस नाट्य प्रधान कार्यक्रम के द्वारा विशेष रूप से संदेश दिया गया है कि किसी को प्रसन्न करने के लिए उसकी झूठी प्रशंसा करने का परिणाम अंत में बुरा ही होता है। नकली हीरे।

0: چیزی شانسون کریم
1: خاص اعلان
2: شانت شان. आप सबका स्वागत है. मैंने एक विशेष कार्य के लिए आप सबको दरबार में बुलाया है.
3: हाँ हाँ महाराज, महाराज बताइए.
2: हम आपकी सेवा में सदैव तत्पर.
3: हम आपकी सेवा के लिए हाजिर हैं महाराज.
2: मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कृपया करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा.
4: जी महाराज, पूछिए. क्या प्रश्न है आपका?
2: प्रश्न है, क्या मैं बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूं? मुझे सिर्फ सत्य ही जानना है.
5: निसंदेह महाराज, आप संसार में आप सब बुद्धिमान, सारे संसार में कोई नहीं है.
6: सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया.
2: आप सभी के उत्तर से मैं इतना प्रसन्न हुआ कि भेंट स्वरूप आप सभी को एक एक हीरा दिया जाता है.
6: हर दरबारी को राजा ने एक एक हीरा दिया.
1: जी महाराज,
7: महाराज की जय हो.
8: महाराज की जय हो. महाराज की जय हो. महाराज की जय हो.
2: आप सभी के उत्तर के लिए धन्यवाद.
6: सब दरबारी प्रसन्न होकर चले गए, पर एक दरबारी चुपचाप एक कोने में खड़ा रहा.
2: नवयुवक, तुमने कोई उत्तर नहीं दिया, तुम चुपचाप खड़े रहे. क्या तुम्हें मेरा प्रश्न समझ में नहीं आया?
3: महाराज ऐसी बात नहीं है, परंतु महाराज दूसरों ने तो आपको प्रसन्न करने वाले उत्तर दिए, पर क्षमा कीजिएगा, मेरा उत्तर वैसा नहीं है.
2: हम फिर भी आपका उत्तर सुनना चाहते हैं.
6: इसमें संदेह नहीं है महाराज कि आप बुद्धिमान भी हैं और ईमानदार भी हैं, परंतु क्षमा करें महाराज, आपसे पहले भी श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं, जो बुद्धिमत्ता में आपसे तो बढ़ चढ़ कर थे ही, ईमानदारी में भी वे आपसे बढ़ चढ़ कर थे.
2: हमें आपका उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई. ये लो आपका इनाम, हीरा.
6: धन्यवाद महाराज. अगली सुबह काननपुर के सारे दरबारी दरबार में वापस आए. उनके बीच कुछ चिंता का विषय था. वे आपस में कुछ दबी दबी आवाज में बातें करने लगे.
3: भाई क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ?
9: मुझे भी नकली मिला. मुझे भी नकली हो सकता है
3: यार. क्या सबको नकली मिला? तुम भी नकली. तुम
9: नकली हीरा दे सकता? नकली कैसे आ गया?
3: अरे मैंने तो कई लोगों से पता करवाया.
9: राजा ने
3: सभी ने बोला कि नकली है.
2: शांत, क्या समस्या है? आप सब इतने व्याकुल क्यों हैं?
3: महाराज क्षमा करें, हम सभी के मन में एक दुविधा है महाराज. यदि आप आज्ञा दे तो हम पूछ लें महाराज.
2: कहिए, मेरी आज्ञा है. आप सभी निसंकोच कहिए.
3: जी धन्यवाद महाराज. धन्यवाद महाराज. महाराज हमने इन हीरो की जांच जौहरी से करवाई थी महाराज, लेकिन पता चला कि सारे हीरे तो नकली हैं महाराज.
2: क्या? और कोई शंका?
3: जी जी नहीं महाराज, आपने हमें जो भी दिया वो तो हमारे लिए उपहार ही है. बस केवल यही प्रश्न था महाराज, आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया महाराज?
2: ठहरिए, मैं समझाता हूँ. आप सबने मेरे प्रश्न का झूठा उत्तर दिया, इसलिए हीरे भी आपको नकली दिए गए.

0: पर इस नौजवान ने सीधा साधा उत्तर दिया, इसलिए इसे असली हीरा दिया गया। और मेरे बाद यही मेरे बेटे का विश्वस्त सलाहकार होगा।
1: महाराज की जय! महाराज की जय! महाराज की जय!
0: साथियों, अभी आपने सुना कार्यक्रम नकली हीरे। आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। जरा सोचिए, राजा ने दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? सोचिए सोचिए। आप कहेंगे उन्होंने झूठी प्रशंसा की थी। जी बिल्कुल सही। साथियों, हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी को खुश करने के लिए झूठी प्रशंसा हम ना करें। यदि कोई बात अच्छी है तो उसकी प्रशंसा जरूर करनी चाहिए, लेकिन बढ़ा चढ़ाकर नहीं। और हाँ, याद रखिए, किसी की प्रशंसा करने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सकारात्मक होता है।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे। कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वनि अंकन मंजू कुमारी, कलाकार चांद मोहम्मद और मोहम्मद शमीम खान, मार्गदर्शन विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन और निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नकली हीरे।
3: मैं एक नन्ही बच्ची हूँ, प्री स्कूल में जाती हूँ, अलग रूम है चंचल।

तो सुनिए अपने छोटे बच्चों के मन की बात। निष्ठा, गुणवत्ता पूर्ण प्रारंभिक बाल शिक्षा, जिससे मिलेगा बचपन को महत्वपूर्ण आयाम। बाल्यावस्था में 6 वर्ष तक के छोटे बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर तीव्र

0: सकारात्मक विकास होता है। जी हाँ, अब महकेंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा से, निष्ठा से खिलेंगे ये नन्हे फूल।
1: इस कार्यक्रम के बाद आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पोंगल।
2: ये कार्यक्रम भारत के तमिलनाडु राज्य के प्रसिद्ध त्योहार पोंगल की रोचक जानकारी देते हुए उसके पौराणिक कारणों को भी विस्तार से बताता है और इस त्योहार के मनाए जाने की परंपराओं का बखान करता है।
1: पोंगल।
3: भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय किसान का जीवन प्रकृति से जुड़ा रहता है। वो प्रकृति के साथ ही हंसता रोता है, नाचता गाता है। बुआई, सिंचाई, निराई आदि खेतीबाड़ी के सारे काम वो मौसम के अनुसार करता है। जब चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वृक्ष लताएं फूलों से लद जाती हैं, तब मानव भी गुनगुनाने लगता है। जब खेत खलियान अनाज से भर जाते हैं, तब उसके पांव थिरक उठते हैं। वो उत्सव मनाने के लिए मचल उठता है। त्योहारों का जन्म यहीं से होता है। पोंगल नई फसल का त्योहार है। यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। तमिलनाडु का यह प्रमुख त्योहार है। यह जनवरी में मनाया जाता है। पोंगल में खेतों से सुनहरे रंग का नया धान कटकर किसान के घर आता है। गन्ने के खेत की फसल तैयार होती है। बागीचे में हल्दी का पौधा लहलहा उठता है। इन्हें देखकर किसान का मन नाच उठता है। उसके जीवन में मिठास आ जाती है। नए चावल का मीठा भात बनाकर सूर्य को चढ़ाया जाता है। इसी मीठे भात को पोंगल कहते हैं। इसी से त्योहार का नाम पोंगल पड़ा है। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार पौष मास में आरंभ के चार दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन लोग भोगी का त्योहार मनाते हैं। पूरे घर की सफाई की जाती है। इससे पर्यावरण स्वच्छ हो जाता है। भोगी के दिन शाम को बच्चे ढोल और बाजे बजाकर खुशियां मनाते हैं। पोंगल के दिन घर आंगन को रंगोली से सजाते हैं। नहा धोकर सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। उस दिन सब कुछ नया होता है। आंगन में अंगीठी जलाकर नए बर्तन में पोंगल पकाया जाता है। बर्तन में हल्दी का पौधा बांध दिया जाता है। गन्ने के रस में नई फसल का चावल पकाया जाता है। जब चावल उबलकर ऊपर उठता है, तो उसमें दूध डाल देते हैं। दूध के साथ उफनता हुआ पोंगल बर्तन के ऊपर से उमड़ता है और चारों ओर रिसकर आंच में टपक पड़ता है। उस समय चारों ओर इकट्ठे लोग खुशी से नाच उठते हैं और जोश में चिल्लाते हैं, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल, पोंगलो पोंगल। उन्हें प्रसन्नता होती है कि सूर्य और अग्नि ने पोंगल का भोग स्वीकार कर लिया है। लोग अपने आस पड़ोस में पोंगल बांटते हैं। उसके बाद मित्र और सगे संबंधी सब मिलकर बढ़िया भोजन करते हैं। पोंगल के दिन हर तमिल भाषी, चाहे वो भारत के किसी कोने में रहता हो, अपने घर पहुंचने की कोशिश करता है। विवाहित लड़कियां पोंगल मनाने अपने मायके आती हैं। तीसरे दिन माटू पोंगल मनाया जाता है। तमिल भाषा में माडू गाय बैलों को कहते हैं। माडू का अर्थ धन भी है। पुराने समय में गाय बैल ही हमारी संपत्ति थे। माटू पोंगल के दिन गाय बैलों को अच्छी तरह नहलाया जाता है। लोग उनके सींगों को रंगते हैं और उन्हें रंगीन कपड़ों से सजाते हैं। उनके गले में फूल मालाएं पहनाते हैं तथा उन्हें गुड़ और अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। शाम को मैदान में बैलों को दौड़ाया जाता है।

0: जगह जगह मेले लगते हैं। लोग मेलों में घूमते हैं या आसपास के स्थान देखने के लिए चल पड़ते हैं। इस तरह चारों दिन लोग अपने दैनंदिन कामों से छुट्टी लेकर इस त्योहार का आनंद लेते हैं। खेती से संबंधित यह त्योहार पूरे भारत में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। गुजरात से लेकर बंगाल तक लोग इसे संक्रांति के नाम से मानते हैं। महाराष्ट्र में यह तिल गुड़ का त्योहार है। लोग एक दूसरे को तिल गुड़ देकर कहते हैं, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, अर्थात तिल और गुड़ खाओ और मीठा बोलो। पंजाब में संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी का अर्थ है छोटी या छोटी संक्रांति। अरुणाचल प्रदेश में पानुंग का त्योहार भी इसी समय मनाया जाता है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है। एक ही त्योहार को लोग विविध रूपों में मनाकर भारत की सांस्कृतिक एकता को मजबूत बनाते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोंगल।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: जी दोस्तों, आप समाप्त कर

0: रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम NCERT उमंग।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 208.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। ठीक 1:40 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं नातिया कवाली, पेश कर रहे हैं हाजी गुलाम फरीद, हाजी मकबूल साबरी और साथी कलाम है एच मिर्जा और मदानी का।

जी समीन, आप सुन रहे थे नात्या कवाली, पेश कर रहे थे हाजी गुलाम फरीद, हाजी मकबूल साबरी और साथी कलाम था एच मिर्जा का। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियो 268 मीटर और एफ एम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ठीक 1:50 हो रहे हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन अब से थोड़ी देर के बाद रिले होगा।

0: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं हबीबुर रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। मरकज ने सरकारी तमस्कात में असासों के फ़ायदों पर गैर मुल्की अदारा जाति सरमायाकारों को टैक्स में छूट दी है। RBI ने रेपो रेट में कोई तब्दीली न करते हुए इसे 5.25% पर बरकरार रखा है। उसने GDP से मुतालिक अपनी पेशगोई में शरह तरक्की को कम बताया है। इस माली साल के दौरान पहले यह पेशगोई 6.9% पर थी, अलबत्ता इसे कम करके अब 6.6% कर दिया गया है। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल आज भारत के 3 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुँचेंगे। आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हुकूमत ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का इफ्तिताह किया और जापान में मर्दों के 18 साल की उम्र तक के एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला उसके देरीना हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज सड़क, बिजली और सनाती शोबों के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे जिनकी मालियत 18,800 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। वज़ीर आज़म हज़ीरा जाएंगे और सहपहर में एक बड़े जलसे आम से खिताब करने से पहले सनाती और बुनियादी ढांचे की जारी कार्रवाइयों का जायज़ा लेंगे। बाद में शाम को वज़ीर आज़म दमन का दौरा करेंगे जहाँ वो कौम के लिए हिफ्ज़ान सेहत और हवाबाजी के बड़े बुनियादी ढांचे समेत दमन में तकरीबन 2,970 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और उनका संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वो मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके लक्षद्वीप के लिए अहमियत के हामिल बहरी प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखेंगे। पेश है हमारे नामा निगार की रिपोर्ट।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज दमन में नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल और जदीद नमो अस्पताल की इमारतों का इफ्तिताह करेंगे जिससे इलाकाई फजाई राबतों को इस्तेहकाम हासिल होगा और मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इस इलाके में हिफ्ज़ान सेहत तक मजीद रसाई हासिल होगी। वो बुनियादी ढांचे के बहुत से अहम प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखेंगे जिसमें आइकॉनिक ब्रिज, दमन कन्वेंशन सेंटर और निफ्ट कैंपस भी शामिल है। समुद्री तरक्की के लिए अहम कदम के तौर पर वज़ीर आज़म मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाके लक्षद्वीप में बंदरगाह प्रोजेक्टों के लिए इजाफी तौर पर संग बुनियाद रखेंगे जिनकी लागत 885 करोड़ रुपये है। इन प्रोजेक्टों से कालापानी और कदमत जजी

0: की तरक्की में इजाफा होगा। मुसाफिरों और बहरी जहाजों की साल भर की आमदोरफ्त बढ़ेगी। इसके अलावा माही परवरी नीज कश्तियों की मरम्मत की सहूलियात में इजाफा होगा। सूरत से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे के सफ़र को काबिल तहसीन रफ्तार मिल रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बताया कि एयर ट्रंक ने भारत में तकरीबन 3 लाख करोड़ रुपए का सरमाया लगाने और 5 गीगावाट वाले डेटा सेंटर तैयार करने के मंसूबों का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि ये मुल्क के डिजिटल बुनियादी ढांचे के इको निज़ाम में सरमायाकारी की सबसे बड़ी तजवीज़ है। जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह की सरमायाकारी से क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई के लिए एक आलमी मरकज़ के तौर पर भारत की पोजीशन को इस्तेहकाम हासिल होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को उनके योम पैदाइश पर मुबारकबाद दी है और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए उनका काम काबिल सताइश है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज त्रिपुरा में लंकामुरा सरहदी चौकी पर सरहदी हिफाजती फोर्स के अमले से खिताब करते हुए सरहदी हिफाजत का एक जामे खाका पेश किया है। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर जनाब शाह ने कहा कि मरकजी मुसल्लह पुलिस दस्तों के माहौलियाती ताउन को उजागर किया। उन्होंने कहा कि 2019 में CAPF अमले ने तकरीबन 4 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए थे। वजीर दाखिला ने सरहदी हिफाजत पर जोर देते हुए कहा कि हुकूमत त्रिपुरा मगरबी बंगाल और बिहार के सरहदी इलाकों में गैर कानूनी आबादी में तब्दीली की रोकथाम की पाबंद है। उन्होंने बताया कि सरहद पर पुरानी बाड़ को हटाकर 119 किलोमीटर नई बाड़ की तामीर के लिए रकम की मंजूरी दे दी गई है।
2: 2019 से लेकर आज तक हमारे सभी CAPF में जवानों ने लगभग 6 करोड़ 40 लाख वृक्षों को लगाने का काम किया। इस साल हम 40 लाख से 60 लाख वृक्ष लगाने वाले हैं और अगले साल हम सबका एक सामूहिक संकल्प बनने वाला है कि अगले साल एक ही वर्ष में CAPF के जवान 2 करोड़ से ज्यादा वृक्षों का लगाने का काम करेंगे और पर्यावरण की और देश की सेवा करेंगे।
1: मरकज ने सरमाए पर हासिल होने वाले मुनाफे पर गैर मुल्की अदारा जाती सरमायाकारों और सरकारी तमस्सुकात में सरमायाकारी से होने वाली आमदनी में सूद पर टैक्स में छूट दी है। हुकूमत ने इस सिलसिले में इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 को नाफिज कर दिया है। ये छूट इस साल 1 अप्रैल से काबिल इतलाक होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौजूदा माली साल में लगातार दूसरी बार शरह सूद में कोई तब्दीली नहीं की है। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज मौजूदा माली साल के लिए दूसरी दोमाही माली पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा कि माली पॉलिसी कमेटी ने कम मुद्दत के कर्जे देने की शरह रेपो रेट को 5.25% की सतह पर बरकरार रखने का फैसला किया है। रिजर्व बैंक ने मौजूदा माली साल में मजमूई अंदरून मुल्क पैदावार GDP की शरह तरक्की कम होकर 6.6% रहने का अंदाज़ा लगाया है, जबकि इससे पहले उसके 6.9% रहने की बात कही गई थी। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने मौजूदा माली साल के दौरान अशियाए सार्फीन की कीमतों के अशारिये पर मबनी अफरात ज़र की शरह का निशाना अब 5.1% कर दिया है, जबकि इससे पहले 4.6% रहने की बात कही गई थी। गवर्नर ने तरक्की में सुस्त रफ्तारी के अंदेशों के तौर पर आलमी सप्लाई चेन में देरीना रुकावटों, बैन अल-अक़वामी माली मार्केट्स में गैर यकीनी सूरत हाल और मौसम से मुतालिक गैर यकीनी का जिक्र किया है। RBI ने शेयर बाजारों में गैर रिहायशी भारतीयों, भारत के बैरून मुल्क आबाद शहरियों और बैरून मुल्क दीगर अहम सरमायाकारों के लिए सरमायाकारी के मौक़ों में भी इजाफा किया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदन नितिन नबीन ने तमिलनाडु में BJP के चीफ KN नामलाई की तरफ से दिए गए पार्टी की इब्तदाई रुकनियत से इस्तीफा कबूल कर लिया है। हाल ही में अन्नामलाई ने BJP के सदर को अपना इस्तीफा पेश किया था। 12वीं जमात के तलबा की तरफ से CBSE के नतायज के बाद की शिकायतों के अजाले के अमल के लिए 70,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इनमें 3,314 दरख्वास्तें नंबरों की तौसीक और दोबारा जाँच के लिए 63,000 से ज़्यादा दरख्वास्तें शामिल हैं। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल आज से भारत के 3 रोज़ा दौरे पर रहेंगे। वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर की दावत पर भारत का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे के दौरान नेपाली वजीर खारजा नई दिल्ली में डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात करेंगे। نیپال کی وزارت

0: अर्जन एक बयान में कहा है कि तरफ़ैन तिजारत, सरमायाकारी, कनेक्टिविटी, तवानाई और आवाम से आवाम के राबतों समेत अहम शोबों में इश्तराक पर तबादले ख्याल करेंगे। आज दुनिया भर में माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कुर्रे अर्ज़ पर ज़िंदगी बचाने के लिए बेदारी पैदा करने की खातिर माहौलियात से मुतालिक अक्वामे मुत्तहिदा प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 1973 से हर साल 5 जून को यह दिन मनाया जाता है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के हमराह आज माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्क का इफ्तिताह किया। जापान में 18 साल की उम्र तक के मर्दों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में आज शाम भारत का सेमीफाइनल में मुकाबला रवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। ये मैच काका मीगाहारा हॉकी स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक 3:30 बजे शुरू होगा। आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज गुजरात में 18,800 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत वाले बहुत से तरक्याती प्रोजेक्टों को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। मरकज ने सरकारी तमस्सुकात में एहसासों के फ़ायदों पर गैर मुल्की अदारा जाती सरमायाकारों को टैक्स में छूट दी है। RBI ने रेपो रेट में कोई तब्दीली ना करते हुए इसे 5.25% पर बरकरार रखा है। उसने GDP से मुतालिक अपनी पेशगोई में शरह तरक्की को कम बताया है। इस माली साल के दौरान पहले यह पेशगोई 6.9% पर थी, अलबत्ता इसे कम करके अब 6.6% कर दिया गया है। नेपाल के वजीर खारजा शिशिर खनाल आज भारत के 3 रोज़ा दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। आज माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हुकूमत ने नई दिल्ली में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का इफ्तिताह किया और जापान में मर्दों के 18 साल तक की उम्र के एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला उसके देरीना हरीफ पाकिस्तान से होगा। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द मिड डे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi to dedicate and lay foundation stone of multiple development projects worth over 18,800 crore rupees in Gujarat today. Centre grants tax exemption to foreign institutional investors on capital gains in government securities. RBI keeps repo rate unchanged at 5.25%, reduces GDP growth projection to 6.6% from 6.9% for the current fiscal. Nepal Foreign Minister Shishir Khanal to arrive in New Delhi on 3-day visit today. World Environment Day being observed, government inaugurates 18 Namo Oxygen Parks in New Delhi. And India to take on arch rivals Pakistan in semi-final of men's under 18 Asia Cup hockey in Japan this evening. Prime Minister Narendra Modi will visit Surat today to launch multiple development projects worth over 18,800 crore rupees spanning the road, power and industrial sectors. The Prime Minister will first visit Hajira and will review ongoing industrial and infrastructure operations before addressing a large public gathering in the afternoon. Later in the evening, the Prime Minister is scheduled to visit Daman to inaugurate and lay the foundation stone for various projects worth around 2,970 crore rupees, including major healthcare and aviation infrastructure to the nation, besides laying foundation stones for crucial maritime projects for the Union Territory of Lakshadweep. We have a report from our correspondent.
2: Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the new terminal building of Namo Airport and modern Namo Hospital in Daman today, strengthening the regional air connectivity and healthcare access for the Union Territory. He will also lay the foundation stone for several landmark infrastructure projects, including the iconic bridge, Daman Convention Centre and NIFT Campus. In a significant step for maritime development, Prime Minister will additionally lay the foundation stone for port projects worth 885 crore rupees for the Union Territory of Lakshadweep. These projects will develop multi-purpose jetty on Kalpini and Kadmat Islands, enabling year-round berthing for large passenger and cruise vessels while supporting the local fishermen with integrated fish handling and boat repair facilities.
3: Aparna Khun, Akashvani News, Surat.
1: The centre has granted tax exemption to foreign institutional investors on capital gains and interest income

यादगार। अब पेश है इस फिल्म से ये गीत, बप्पी लहरी की आवाज में, इंदीवर अनजान के बोल, मुस्की तरतीब दी है बप्पी लहरी ने।

आखिर में आपके नजर फिल्म सजन का घर से गीत सुरेश वाडेकर और अलका याग्निक की आवाज समीर के बोल। पंडित दिवाकर का संगीत।

जी समीन, आप समझ कर रहे थे चंद फिल्मी नगमे दिन के अढ़ाई बज चुके हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। इच्छा आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव जहत अरहट अशरिया अर्थ मीटर तो एफ एम अखतर अशरिया पांच मेगा हर्सन पैठ समीन वन पे छकर तो रोह फनकार मोहम्मद यूसुफ सर तो हमनवा यह बूझ तुम कलामी न्याम सब।

जय हिंद फौज भाइयो, फौज भाइयो फिर संगीत का प्रोग्राम लेके मैं हूँ आपकी रेडियो सखी सूफी फातिमा आपकी खिदमत में हाजिर। प्रोग्राम का पहला नजराना आपकी नजर फिल्म गर्म खून से, ये गीत सुलक्षणा पंडित की आवाज में, शंकर जयकिशन के संगीत में।

जी दोस्तों, अगला नगमा हमने चुना है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल राजेश रोशन का मधुर संगीत।

घर घर की आवाज ऑल इंडिया रेडियो की आवाज मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर फिल्म संगीत का प्रोग्राम आप डीटीएस सर्विस और अपने स्मार्ट मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। समाप्त कीजिए फिल्म छला बाबू से ये गीत किशोरदा आशाताई और साथियों की आवाज में।

दूसरा आदमी। अब पेश है इस फिल्म से गीत किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में मजरू के बोल, राजेश रोशन का मधुर संगीत।

0: ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
2: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
2: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
1: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
2: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
1: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
2: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
1: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
2: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
1: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
3: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
4: जी दोस्तों, वक्फे के बाद आपका स्वागत करते हैं फिल्म संगीत के प्रोग्राम में। आपको याद दिला दे, आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन मीडियम 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। फिल्म संगीत का प्रोग्राम आप डीटेल सर्विस और अपने स्मार्ट मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। अगला नगमा हमने चुना है फिल्म ज्वेल थीफ से मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में मजरू के बोल एसडी बर्मन का संगीत।

जी दोस्तों, आपने फिल्म गीता मेरा नाम से गीत सुना। लता मंगेशकर की आवाज में नगमा निगाह थे राजेंद्र कृष्णम, उसकी तरतीब दी थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। प्रोग्राम का आखिरी नजराना आपकी नजर फिल्म गैम्बलर से है। प्यारा सा गीत नीरज के बोल, एसडी बर्मन का संगीत, किशोर दावल, लता मंगेशकर की खूबसूरत आवाज़ें।

जी दोस्तों, इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। आपसे वादा है अगले प्रोग्राम में आपके खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए जय हिंद। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 3:50 हो रहे हैं। अब यहाँ से उर्दू खबरें नशर होंगी।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं शेख यासीन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। भारत का डिजिटल बुनियादी ढांचा तरक्की की राह पर गामजन, वजीर अजम नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नार्को टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार किए जाने का दोहराया अजम। माहौलियात को तहफ़ देने का आलमी दिन आज। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने हयातियाती तनाव को तकवीत बख्शने के लिए इख्तराई इकदामात पर दिया जोर। और चीफ सेक्रेटरी अटल डिलो ने यूटी में अमलाई जारी मुख्तलिफ ज़रई क्रेडिट स्कीमों की पेशरफ्त का लिया जायज़ा। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का डिजिटल बुनियादी ढांचा तरक्की की राह पर गामजन है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि एयरट्रंक ने भारत में 3,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया है ताकि डेटा सेंटर की सलाहियत को 5 गीगावाट तक बढ़ाया जा सके। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि इस सरमायाकारी से भारत को क्लाउड कंप्यूटिंग और मसनूई ज़हानत के शोबे में एक आलमी मरकज के तौर पर उभारने में मदद मिलेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि नार्को टेररिज्म के खिलाफ 55 रोज पहले जम्मू से शुरू किया गया अभियान अब एक तारीखी तहरीक में तब्दील हो गया है और समाज के सभी तबके के लोग इस अभियान का हिस्सा बनकर जम्मू कश्मीर को मनुष्यात से पाक कराने के लिए पुरअज़म है। गांधरबल से हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब ने खबर दी है कि गांधरबल में आज मनुष्यात मुखालिफ एक पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करने से पहले खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि पिछले 55 दिनों के दौरान 1036 एफआईआर दर्ज किए गए, 1128 ड्रग स्मगलर गिरफ्तार किए गए, नीज स्मगलरों की 100 जायदादों को अटैच किया गया, इलावाजी 700 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए गए, नीज 130 ड्रग स्मगलरों के पासपोर्ट मनसूख किए गए।
1: मैं आपको आज भरोसा देना चाहता हूँ कि हम और प्रशासन के हमारे सहयोगी उन लोगों को जो नशे की लत के शिकार हो गए हैं उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। पूरी हमदर्दी और इज्जत के साथ उन्हें आवाम की मुख्य धारा में वापस लाने की हर कोशिश की जाएगी। मैं आवाम के दुश्मन नशा तस्करों से कहना चाहता हूँ, जब तुम्हारे दिन पूरे हो चुके हैं अब तुम्हारे नेटवर्क एक एक करके ढहा दिए जाएंगे। ये हमारा हलफ भी है, हमारा वादा है कि हर ड्रग तस्कर और नार्को आतंकवादी अपने अपराधों और अपने पापों की कीमत चुकाएगा।
0: एलजी मनोज सिन्हा ने 11 अप्रैल को नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत जम्मू से की थी और उन्होंने तमाम अजला में मनुष्यात मुखालिफ पद यात्राओं और बेदारी प्रोग्रामों की क़यादत की। अभियान की शुरुआत के साथ ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मनुष्यात के नेटवर्क को खत्म करने और इस धंधे में मुलव्वस लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सजा दिलाने के अजम को दोहराया।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: समाजी सतह पर मनुष्यात का कलाकमा करने के लिए लाजमी इकदाम के ताल्लुक से एक उस्ताद सईद एजाज अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: नशा मुक्त भारत अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है इसके लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, अगर जम्मू कश्मीर पुलिस ने काम किया है ड्रग इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए वो बिल्कुल काबिल तारीफ है। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूलों में ऐसे 16 गन्स उठाए हैं, ऐसे एक्टिविटीज हुए हैं जिनकी बदौलत से हमने देखा कि ड्रग के जो इफेक्ट्स है वो बहुत बहुत ज्यादा कम हुए, ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें, हमारी जो सोसाइटी है इसे बच सके, जो फ्यूचर जनरेशन है वो इन तबाहकारियों से बच सके।
0: लेफ्टिनेंट गवर्नर

0: सिन्हा ने तुलमुला गांधरबल में माता खीर भवानी मंदिर में यात्री भवन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि यात्री भवन के मुकम्मल होने से खीर भवानी आने वाली यात्रियों को रिहायश और कयाम उत्वाम की बेहतर सहूलियात दस्तियाब होंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांधरबल में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशंस सेंटर और श्री अमरनाथ जी यात्रा कंट्रोल रूम का भी इफ्तिताह किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर कहा कि इन सहूलियात से आने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए बिला खलल सहूलियात की दस्तियाबी और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर खिदमात यकीनी बन जाएंगी। आज माहौलियात को तहफ़ देने से मुतलिक आलमी दिन है। आज के दिन हयातियाती तनाव को तकवीत बख्शने, नींद आलूदगी को कम करने के लिए दरकार लाजमी इकदाम को उजागर किया जाता है। दुनिया भर में माहिरीन माहौलियात ने माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने के लिए इख्तराई इकदाम करने की जरूरत पर जोर दिया है, ताकि कुरई अर्ज और इस पर बूदबाश करने वाले जानदार बिना किसी आलाइश और रुकावट के अपनी जिंदगी गुजार सकें। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन ने माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर लोगों से कहा है कि वो माहौलियात और हयातियाती तनाव के तहफ़ के अपने अजम पर कायम रहें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद दी है और कहा है कि ये दिन माहौलियात के तहफ़ और पायदार तरक्की के अजम का इरादा करता है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने समाज के हर तबके पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में माहौलियाती निज़ाम को तकवीत बख्शने, नीज यहाँ के सब्जे और हयातियाती तनाव को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखने में अपना कलीदी रोल अदा करें। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत देरपा तरक्की अहदाफ की हुसूलियाबियों के साथ साथ माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि साफ व शफाफ माहौलियाती निज़ाम को आलमी इंसानियत के लिए कलीदी अहमियत हासिल है। माहौलियात के आलमी दिन के सिलसिले में एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत इतलात और नशरियात के मरकजी वजीर ममलकत डॉक्टर एल मुरुगन और प्रसार भारती के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गौरव द्विवेदी ने आज नई दिल्ली के आकाशवाणी भवन के सहन में पौधे लगाए। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए डॉक्टर मुरुगन ने मुल्क के आवाम से अपील की कि वो माहौलियात के तहफ़ में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने पानी के बचाव और ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत पर जोर दिया। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने भी माहौलियात के दिन के ताल्लुक से अपने पैगाम में किसानों, नौजवानों, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो माहौलियात को तहफ़ देने और बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए मुतहद होकर काम करें। उन्होंने कहा कि जंगलात को फ़रोग देने के साथ साथ यहाँ के आबी ज़खायर को तहफ़ देने की अशद ज़रूरत है। इस दिन की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर में भी मुतअद्दिद बेदारी प्रोग्रामों और सेमिनारों का इनेकाद किया गया, जिनके दौरान मुकर्ररीन ने बेहतर माहौलियाती निज़ाम की अहमियत को उजागर किया। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने इस दिन के मौके पर आज अनंतनाग में एक देवदार का पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कहा कि पौधा लगाने से पुलिस अहलकारों और आम लोगों में माहौलियाती बेदारी पैदा करने में मदद मिलेगी। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर एक सीनियर सियासतदान और साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कुदरती वसाइल के तहफ़ में संजीदगी का इजहार करना चाहिए। उन्होंने दरियाई जहलम की शान रफ्तार बहाल करने की जरूरत पर भी जोर दिया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बेंगलुरु में एक तकरीब के हाशिए पर कर्नाटक के वज़ीर आला DK शिवकुमार के साथ मुलाकात की और उन्हें कर्नाटक का वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी है। उमर अब्दुल्ला ने कर्नाटक के लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया। चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लों ने ज़रई सेक्टर को तरक्की की नई मनाजिल से हमकिनार कराने के लिए किसानों के हक में ज़रई कर्जा स्कीमों की मौसर अमलावरी पर जोर दिया है। वो आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान इन स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा ले रहे थे। चीफ सेक्रेटरी ने दीही मईशत के मजीद फरोग के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन FPOs के रोल को उजागर करते हुए इन इदारों को माली तौर मजीद पायदार बनाने की हिदायत दी। अटल जिलों ने जरूरी कर्जों की फराहमी के ताल्लुक से मुकर्रर किए गए अहताब को हासिल करने की अफसरान से तलकीन की। PDP सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एम्स अवंतीपोरा में तिबी शोबे का एक मयारी मरकज बनने की वसी गुंजाइश मौजूद है। एम्स के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि इस इदारे की शक्ल में PDP के बानी और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का ख्वाब शर्मंदा ताबीर हो रहा है। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने सेहत के मरकजी वजीर JP नड्डा से इस इदारे की तामीर जल्द अज जल्द मुकम्मल कराने की अपील की।
1: हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त हेल्थ के हवाले हवाले से बहुत मुश्किलात है, खासकर कैंसर फैल रहा है और इसमें रिसर्च का भी अपना एक हिस्सा होगा और डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट, नर्सेज की रिक्रूटमेंट, उससे मुझे लगता है ये इंस्टीट्यूट जो बन रहा है ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक मिसाल बनेगा, क्योंकि आपने देखा कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ आते ही मुझे लगता है पेशेंट तो

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर तू अज दा पहाड़ी प्रोग्राम के इनका मेहा तुस्ती मेजबान गजाला मुमताज सामीन तो सारा को प्रोग्राम भी जी आया को आखती हर कदे आओ ते प्रोग्राम दी शान बताओ सामीन अज जुम्मा मुबारक ते आओ प्रोग्राम दी शुरुआत कर दे इस नात शरीफ नाल ते आवाज सैयद मोहम्मद इकबाल मलनगामी औरां दी।

0: जी समीन, आप समझ कर रहे थे पहाड़ी प्रोग्राम पेशकश मारुफुल निसा। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। सफर के 4:20 हो रहे हैं। अब यहाँ से पहाड़ी खबरें नशर होंगी।
1: सामीन आदाब, ए आकाशवाणी दा श्रीनगर स्टेशन है। पहाड़ी खबरनामा केन के में जावेद मुगल पहला पेशन कुछ खास खास खबर दियां सुर्खियां। भारत दा डिजिटल बुनियादी ढांचा तरक्की दी राह उतै गामजन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन नारको टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार कीते जुलने दा दोहराया आजम। माहौलियात को तहफुज देना दा आलमी त्याड़ा अज, वजीर आला उमर अब्दुल्ला सुन हयाताती तनों को तकवीत बख्शने वास्ते इख्तराई इकदामात उत्ते दिता जोर। और चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू सुन यूटी बिच अमलाई जुड़ रही मुख्तलिफ जरी क्रेडिट स्कीम दी पेशरफ दा कैदा जायजा। हुण पेश है इन्हां ते दुईयां खबरां दी तफसील। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन आख्या जे भारत दा डिजिटल बुनियादी ढांचा तरक्की दी राह उत्ते गामजन है। एक सोशल मीडिया पोस्ट बिच वजीर आजम सुन आख्या जे आयर ट्रंक सुन भारत बिच 3,00,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का ऐलान किया है ता जे डेटा सेंटर की सलाहियत को 5 गीगावाट्स तोड़ी बधाया जुल सके। वजीर आजम सुन मजीद आख्या जे इस सरमायाकारी थी भारत को क्लाउड कंप्यूटिंग और मसनूवी जहानत के शोबे बिच एक आलमी मरकज के तौर उत्ते उभरने बिच मदद मिल सी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन आख्या है जे नारको टेररिज्म के खिलाफ 55 त्याड़े पहला जम्मू थी शुरू किए गया अभियान और एक तहरीकी तहरीक बिच तब्दील हो गया है ते समाज के सभा तबकों के लोग इस अभियान का हिस्सा बनकर जम्मू व कश्मीर को नशे थी पाक कराने वास्ते पुराजम हैं। गांदरबल थी अस्ते नुमाइंदे साबर अयूब सुन खबर दिती है जे गांदरबल बिच अज मंशियात मुखालिफ एक पद यात्रा को चंडी दसाल का विद्या करना थी पहला खिताब करदे होया एलजी सुन आखे जे 55 त्याड़ियां दे दौरान 1036 FIR दर्ज कीते गए हैं। 1128 ड्रग स्मगलरां को गिरफ्तार कीते गया है। इस दे अलावा स्मगलरां दी 100 जायदादां को अटैच कीते गया है और 700 ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इस दे अलावा 130 ड्रग स्मगलरों के पासपोर्ट मंसूख किए गए हैं। एलजी मनोज सिन्हा सुन 11 अप्रैल को नशा मुक्त जम्मू व कश्मीर अभियान की शुरुआत जम्मू थी कीती आसी और उन्हें सुन सारे जिले बिच मंशियात मुखालिफ पद यात्रा और बेदारी प्रोग्राम की कयादत कीती। अभियान दे शुरुआत थी एलजी सुन मंशियात दे नेटवर्क को खत्म करने ते इस तंदे बिच मलवस लोकां दे खिलाफ कड़ी सजा दयालने दे अजम को दोहराया।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: समाजी सतह उतै मंशियात को जड़ू काट के फेंकना वास्ते लाजमी इकदाम दे वाले थी।

0: ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸਤਾਦ ਸੈਯਦ ਏਜਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਸੁਣ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਖਿਆ,
1: नशा मुक्त भारत अभियान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने काम किया है ड्रग इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए, वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। इसके अलावा जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्कूलों में ऐसे स्लोगन्स उठाए हैं, ऐसे एक्टिविटीज हुए हैं जिनकी बदौलत से हमने देखा कि ड्रग के जो इफेक्ट्स है वो बहुत बहुत ज्यादा कम हुए, ताकि हमारी जो आने वाली नस्ल, हमारी जो सोसाइटी है, इसे बच सके, जो फ्यूचर जनरेशन है वो इन तबाहकारियों से बच सके।
0: इसी सिलसिले बिच एलजी मनोज सिन्हा सुन तोलमुला गांदरबल बिच माता खीर भवानी मंदिर बिच यात्री भवन दा इफ्तिताह कीता। इस मौके उते उन्हें सुन आखे जे यात्री भवन दे मुकम्मल होने थी खीर भवानी एना वाले यात्रियों को रहना और खेना पीना दी बेहतर सहूलता मिल सन। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन गांदरबल बिच डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर और श्री अमरनाथ जी यात्रा कंट्रोल रूम का भी इफ्तिताह कीता। एलजी सुन इस मौके उते आखे जे इना सुल्तान थी एना वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा वास्ते बगैर किसे खलल सुल्तान दी दस्तयाबी और श्रद्धालुओं वास्ते बेहतर खिदमात यकीनी बन जुलसन। ए खबरां तुसी आकाशवाणी दे श्रीनगर स्टेशन ते सुन रहे हो। खबरां तुसी आकाशवाणी दी मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआर और डीटीएच उता भी सुन सकते हो। अज माहौलियात को बचेने दे हवाले थी आलमी त्याड़ा है। आज दे त्याड़े हयाताती तनु को तकवीयत बख्शने दे अलावा आलूदगी को काट करने वास्ते दरकार लाजमी इकदामात को उजागर कीता जुलदा है। पूरी दुनिया बिच माहरीन माहौलियात सुन माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखने वास्ते इख्तराई इकदामात करने दी जरूरत उते जोर दिता है। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधा कृष्णन सुन माहौलियात दे आलमी त्याड़े दे मौके उते लोकां थी आखिया जे ओ माहौलियात और हयाताती तनु दी हिफाजत दे अपने अजम उते कायम रहन। वजीर अजम नरेंद्र मोदी सुन भी माहौलियात दे आलमी त्याड़े दे मौके उते हम वतना को मुबारकबाद दिती है और आखिया जे ए त्याड़ा माहौलियात दे तहफुज और पायदार तरक्की दे अजम दा अदा करदा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला सुन समाज दे हर एक तबके उते जोर दिता है जे ओ जम्मू कश्मीर बिच माहौलियाती निज़ाम को तकवीयत बख्शने दे अलावा सब्जे और हयाताती तनु को एना वाली नस्लां वास्ते महफूज रखने बिच अपना कलीदी रोल अदा करन। माहौलियात दे आलमी त्याड़े दे मौके उते अपने सुनेहा बिच वज़ीर आला सुन आखे जे हुकूमत देरपा तरक्की दे अहदाफ को हासिल करने दे नाल नाल माहौलियाती तवाजुन को बरकरार रखना दी वादा बंद है। उन्हें सुन आखे जे साफ व शफा माहौलियाती निज़ाम को आलमी इंसानियत वास्ते मुच अहमियत हासिल है। माहौलियात दे आलमी त्याड़े दे सिलसिले बिच एक पेड़ माँ के नाम मुहिम दे तहत इतलात व नशरियात दे मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर एल मुरगुन और प्रसार भारती दे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गोरू द्विवेदी सुन अज नवी दिल्ली दे आकाशवाणी भवन दे सैन बिच बूटे लाए। आकाशवाणी न्यूज दे नाल गल करदे होए डॉक्टर एल मुरगुन सुन मुल्क दे लोकां थी अपील कीती जे ओ माहौलियात दे तहफुज बिच अपना किरदार अदा करन। उन्हें सुन पानिया दी बचाव और ज्यादा ती ज्यादा बूटे लेने दी जरूरत उते जोर दिता। ज़रात दे वजीर जावेद अहमद डर सुन भी माहौलियात दे त्याड़े दे ताल्लुक थी अपने सुनेहा बिच किसाना नौजवाना तालीमी अदारे और सिविल सोसाइटी तंजीमा उते जोर दिता है जे ओ माहौलियात को तहफुज देने और बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने वास्ते एक होकर काम करन। उन्हें सुन आखे जे जंगलात को बढ़ावा देने दे नाल नाल इत्थे आबी जखायर को तहफुज देने दी अशद जरूरत है। इस त्याड़े दे हवाले थी जम्मू कश्मीर बिच भी कई बेदारी प्रोग्रामा और सेमिनारा दा इनकाद कीते गया जिंदे दौरान मुकररीन सुन बेहतर माहौलियाती निज़ाम दी अहमियत को उजागर कीता। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलीन प्रभात सुन इस त्याड़े दे मौके उते अज अनंतनाग बिच एक द्यारा दा बूटा लाके शजरकारी मुहिम दा आगाज कीता। उन्हें सुन आखे जे बूटे लेना थी पुलिस एहलकारा और आम लोकां बिच माहौलियाती बेदारी पैदा करने बिच मदद मिल सी। माहौलियात दे आलमी त्याड़े दे मौके दे सिलसिले बिच साबिक मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफदीन सो सुन आखे जे दरियाए जहनम को गंदगी थी पाक कराने वास्ते फौरी इकदामात कीते जुलने चाहिए। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू सुन जरी सेक्टर को तरक्की दी नवी मंजिलां थी अमकरार करने

0: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 268.8 एक मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 5 बज चुके हैं, एक वक्फे के बाद आप गोजरी प्रोग्राम सुनेंगे।
1: सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

जिया समी नाम सुरिंदर कौर की आवाज़ में गीत सुन रहा था। ते अगे लगे थे थारे वास्ते लोक गीत है, सुन लिया।

आम लोकगीत सुन रहा था, तो इस लोकगीत से पहले गल कर रहा था माहौलियाती आलूदगी के बारे। माहौल की आलूदगी में प्लास्टिक को बड़ो रोल है। प्लास्टिक की वजह से मारो माहौल कितनो आलूदा हो रहा है, इसको अंदाजो इस गल से लाया जा सके कि पूरी दुनिया में हर साल 430 मिलियन टन से ज़्यादा प्लास्टिक तैयार कियो जाए, जिस बिचू निसफ ते भी काट प्लास्टिक जुड़ो है उसना सिर्फ एक बार इस्तेमाल कियो जाए, तो फिर यो प्लास्टिक रिसाइकल के बजाय रोडा ग्राया ते शहरा की गलियों में पेयो वामना सही हो है। जिसको मतलब हर साल तैयार किया गया प्लास्टिक बिचों सिर्फ 10% ते भी कट प्लास्टिक ना रिसाइकल कियो जाए, बाकी रे वो प्लास्टिक सिर्फ माहौल ही ना तबाह नहीं करता बल्कि बाकी जानदारा वास्ते भी मौत ते बीमारी को बास बन जाए। इतनो ही नहीं बल्कि इस प्लास्टिक का साड़न ना इसका धुआं ते इस धुआं में मौजूद जहरीली गैस की वजह से पहाड़ा की चोटी ते लेकर समुद्र का फर्श तक हर माहौलियाती निज़ाम जुड़ा है ना वो तबाह हो जाए। इस वास्ते हमना कदी भी प्लास्टिक जुड़ा है ना वो ग्राया के बिच गलियां में रोड़ा में या फिर दूजी ऐसी किसी जगह बिच नहीं सटना चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक सब ते पहला तो यूज़ ही ना किया जाए। अगर हम इसने इस्तेमाल करांगा तो अपना इस्तेमाल करने के बाद यो आमना हर जगह के बिच नहीं फेंकना चाहिए, हर जगह में नहीं साड़ना चाहिए, बल्कि इसने रिसाइकल करने की कोशिश करनी चाहिए। सामी नगर थारे वास्ते हमने सोफियाना कलाम।

अभी आप गोजरी प्रोग्राम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। 5:50 होने वाले हैं। थोड़ी देर में आप गोजरी में खबरें सुनेंगे।

0: 800 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के विकास को गति देंगी और लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होंगी। श्री मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश के सबसे स्वच्छ शहरों में शामिल सूरत की प्रशंसा की।
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होंगी।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया हरित और स्वच्छ भविष्य की ओर बढ़ रही है तथा भारत भी इसमें सक्रिय योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर आगे बढ़ रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले सूरत में प्रधानमंत्री ने हजीरा में वर्तमान औद्योगिक तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की। प्रधानमंत्री आज दमण भी जाएंगे, जहां वे लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि ये परियोजना अंतिम चरण में है और अगले वर्ष सीमा सुरक्षा बल तथा सशस्त्र सीमा बल की तैनाती वाले 7 से 8 संवेदनशील क्षेत्रों में इसका प्रायोगिक चरण शुरू किया जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को मजबूती मिलेगी। श्री सिंह ने कहा कि सटीक और समय पर मौसम पूर्वानुमान से कृषि, विमानन, पर्यटन और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को लाभ होगा। असम मंत्रिपरिषद का आज विस्तार किया गया। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में 12 नए मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल रक्षम प्रसाद आचार्य ने इस अवसर पर नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस विस्तार के बाद असम मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है। पद्म पुरस्कार 2027 के लिए नामांकन 31 जुलाई तक किए जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और अनुशंसाएं केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव मीटर 5 मिनट पेट शबजे पेश छु गर्मी बाइन हिंदी खतरे जुक प्रोग्राम।

خود چیزی ری پایم دینا چمدا.

0: आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।

शेरबीन के समैन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूद हैं आलमी योम माहौलियात पर तकारीब का एहतमाम, वज़ीर आज़म का खास पैगाम। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम जिला गांधरबल पहुंची।

0: 8 घंटे की पार्टी मीटिंग के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों का वक्त जाया करने का कोई हक नहीं था। पीपल्स कॉन्फ्रेंस। और पुलवामा जिले में काश्तकारों की बड़ी तादाद परेशान। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
1: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
2: सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है, हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
4: 9018074333।
5: 9018074333।
6: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ।
7: वाह, इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है। पता नहीं मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा।
6: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
7: अच्छा भाभी।
6: और हाँ, मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच ले कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो। और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ, अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान से तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
7: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी।
8: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
9: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
10: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
9: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
10: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
9: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
10: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
9: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट। मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं। पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
10: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
9: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
10: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
9: वही तो माँ, PM राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
11: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
0: शर्वीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समय आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी यौम माहौलियात के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए माहौलियात के तहफ्फुज और पायदार तरक्की के लिए नए सिरे से अहद करने की अपील की। मौसूफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि पिछले 10 बरस में मरकज के इकदाम माहौलियात के तहफ्फुज और पायदार तरक्की के तहत हुकूमत की संजीदगी को जाहिर करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि पिछली दहाई में हमारी हुकूमत की कसीर जहती कोशिशें इस समत हमारे काम को उजागर करती हैं। भारत की कुछ अहम कामयाबियों में ग्रीन कोर यानी हरियाली के दायरे की तौसी और कई जानवरों की आबादी में होने वाला इजाफा शामिल है। उन्होंने माहौलियात के तहफ्फुज में अवामी शमूलियत के किरदार पर जोर देते हुए इज्तमाई कोशिशों और जिद्दत तराजी के जरिए मुस्बत माहौलियाती नतायज में शहरियों के तआवुन को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने यह दिखाया है कि किस तरह इज्तमाई काविशें, पॉलिसियां, साइंस पर भरोसा और जिद्दत तराजी हमारे माहौल को बेहतर बना सकती है। इधर आलमी यौम माहौलियात के मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि आलमी यौम माहौलियात हमें माहौलियात के तहफ्फुज और कुदरती तवाजुन को बरकरार रखने की जिम्मेदारी की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि

0: इंकलाब है, हमें साथ मिलकर ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी ड्रग्स तस्कर या सप्लायर को हमारे आवाम में कोई स्थान न मिले।
1: आवामी स्टार्टअप यात्रा की बड़े पैमाने पर सराहना की गई और तबका हाई फिक्र से वाबस्ता लोगों, खासकर सियासी और समाजी कारकुनान, मजहबी रहनुमाओं, स्कूली बच्चों, रजाकार तंजीमों, ट्रेडर्स यूनियन, रिटायर्ड मुलाजमीन, ताबिका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल, ताबिका ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ताबिका म्युनिसिपल काउंसिलर, ताबिका म्युनिसिपल चेयरमैन, दुकानदार, अदवियात फरोशों, तजारत पेशा अफराद, व्यापारियों, होटलर के अलावा दीगर शख्सियात ने पद यात्रा में शिरकत करके इसे कामयाब बना दिया। पद यात्रा में VC सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर ए रविंदर नाथ, MLA कंगन मियां मेहर अली, साबिका MLA गांधरबल शेख इशफाक जबार, साबिका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल चेयरपर्सन नुजरत इशफाक, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्व, IGP कश्मीर VK डिर्जी, DIG सेंट्रल कश्मीर राजीव पांडे, IGP ट्रैफिक, IGP CID, सेक्रेटरी कल्चर, सेक्रेटरी रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जैटिन किशोर और SSP गांधरबल सुधांशु दामा के अलावा सिविल पुलिस और जिला अफसर मौजूद थे। पद यात्रा के इख्तिताम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पुला मुला जाकर माता खीर भवानी के स्थापन पर हाजिरी दी और यहां यात्री भवन का इफ्तिताह किया। पद यात्रा के सिलसिले में जिले इंतजामिया ने गांधरबल कस्बे को अच्छी तरह सजाया था और पूरे जिले में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए थे।
2: जिला गांधरबल में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के सिलसिले में तकरीब का इनेकाद, रहीम रिजवान की रिपोर्ट आपने सुनी। प्रोग्राम के आगाज में हमने आज के दिन के ताल्लुक से यानी आलमी यौम माहौलियात के ताल्लुक से बात की। इस सिलसिले में आज जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात ने अनंतनाग में एक शजरकारी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने माहौलियात के तहफ्फुज़ के लिए सांझी कोशिशों पर जोर दिया। सदन पुलवामा जिले के कई एक देहात में इंतजामिया ने लोगों को खालिसा सरकार जुमरे के तहत आने वाली अराजी खाली करने का हुक्म दिया है। वाजिर है कि इस अराजी पर ये लोग मुसलसल कई दहाइयों से खेती बाड़ी करते आए हैं, लिहाजा इंतजामिया की तरफ से जारी की गई ये हिदायत के नतीजे में वो सकते में आ गए हैं। मुतल्लिका आबादी का कहना है कि उन्हें बेशक इस अराजी पर कोई मालिकाना हुकूक हासिल नहीं है, ताहम अगर उन्हें सरकार के इस इरादे का इल्म होता तो वो लवा साल से ही इस अराजी पर खेती बाड़ी करने से गुरेज करते, यूं उनकी मेहनत और काश्तकारी पर खर्च होने वाला पैसा भी बच जाता। इसी तनाजुर में एक रिपोर्ट के साथ पुलवामा से शौकत डार।
3: जिले पुलवामा के वंदकपुरा, डांगरपुरा, पदगामपुरा, गोरीपुरा और मुलहक देहात में लोगों के जेर कब्जा और जेर काश्त सैकड़ों कनाल खालिसा सरकार जमीन पर खेती तरक करने और जमीन छोड़ने के सरकारी अहकाम जारी हुए हैं, जिसके सबब इन जमीनों पर बरसों से खेती बाड़ी कर रहे किसान परेशान हैं। इतला के मुताबिक गुज़श्ता दिनों इंतजामिया की जानिब से लोगों को इनके जेर कब्जा जरे जमीन पर खेती करने से रोका गया और ये बताया गया कि तमाम जेर कस्बा खालिसा सरकार जमीन पर कोई भी खेती न की जाए। मुकामी किसानों का कहना है कि वो कई दहाइयों से इन जमीनों पर धान समेत मुख्तलिफ फसलों की काश्त करते आ रहे हैं और उनकी रोजी रोटी का इन्हिसार इस ज़रई अराजी पर भी है। उनके मुताबिक ये जमीन उनके लिए मुआशी सहारा रही है क्योंकि रेलवे और नेशनल हाईवे बनने से उनकी काफी मिल्कियती जमीन छिन गई थी। हालांकि उन्होंने खुद एतराब किया कि यह जमीन खालिसा सरकार है और इस जमीन पर उनका कोई कानूनी हक नहीं बनता है। ताहम उन किसानों ने बताया कि रवां सीजन में वो गुज़श्ते एक माह से धान की काश्त की तैयारियों में मसरूफ थे। जमीन को जोतना, आबपाशी और पनीरी लगाने पर उन्होंने हजारों रुपए खर्च किए, लेकिन अचानक इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए उन्हें मजीद काम करने से रोका, जिसके नतीजे में उन्हें माली नुकसान का सामना करना पड़ा। किसानों का कहना है कि अगर इंतजामिया की जानिब से पहले ही वाज़ह हिदायत जारी की गई होती तो वो खेती बाड़ी शुरू ही न करते और उन्हें ये नुकसान न उठाना पड़ता। इस दौरान पुलवामा के रुकने असेंबली वहीदुर्रहमान परन ने भी गुज़श्ते रोज इस इलाके में जाकर मुकामी लोगों से मुलाकात की। उन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो इस मामले का संजीदगी से जायजा लें और किसानों के तहफ्फुज़ात को मद्देनजर रखते हुए मुनासिब हल तलाश करें। एक सरकारी अफसर ने इस हुक्मनामे का एतराब करते हुए बताया कि खालिसा सरकार जमीन दरअसल सरकारी मिल्कियत होती है और जब भी हुकूमत को इस जमीन की जरूरत पेश आए वो इसे अपने इस्तेमाल में ला सकती है। मुकामी बाशिंदों ने हुकूमत और इंतजामिया से अपील की है कि मौजूदा धान की फसल की कटाई तक किसी भी किस्म की बेदखली या कार्रवाई को मौखर रखा जाए ताकि किसान कम से कम इस सीजन की फसल को काट सकें। वाजह रहे कि पुलवामा के इस जरई खत्ते में 2000 कनाल से ज्यादा खालिसा सरकार जमीन तवील अरसे से अवाम के जेर काश्त है।

0: है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो पार्टी है लेजिस्लेचर से उनमें उथल पुथल है। वो चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट वज़रा जो है उनकी परफॉर्मेंस से मुतमिन नहीं है, उनके काम नहीं हो रहे हैं। जिस तरह लोग रो रहे हैं इसी तरह लेजिस्लेचर भी रो रहे हैं। 7 घंटे इसी में लगे कि हमारा काम नहीं हो रहा है, लोग हमसे नाराज हो रहे हैं। इस तरीके से बात ऐसी वही थी, लेकिन ये बात मेरा इसमें ये एतराज है। आप देखिए, ये तो उनका मेरा भी मानना कि सरकार कहीं नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मेरे इलाके का है, मेरे रफियाबाद का मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर है। आप देखिए, 6 महीने पहले यहाँ के 3 वीडियो प्रमोशन उनकी हो गई, लेकिन 4 महीने से उसके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में वीडियोज नहीं है। दूसरे वीडियो को चार्ज दिया गया है दूसरे इलाकों से, तो यह सफर कर रहा है। यह है मिनिस्टर के कॉन्स्टिट्यूंसी का अपना हाल।
1: ये थे पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील। इधर इत्राल से शबीर भट्ट की खबर है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज अवंतीपुरा में जेरे तामीर एम्स अस्पताल का दौरा किया और वहां जारी तामीराती काम का मुफसल जायजा लिया। दौरे के दौरान एम्स के हुकाम ने उन्हें इस अहम मंसूबे की पेशरफ्त और मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में जानकारी फराहम की। इस मौके पर रुकन असेंबली इत्राल रफीक अहमद नायक और रुकन असेंबली पुलवामा वहीदुर रहमान पर्रा भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर आला ने कहा कि अवंतीपुरा में कायम होने वाला एम्स मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का एक ख्वाब था और उन्हें उम्मीद है कि यह मंसूबा जल्द मुकम्मल होकर आवाम के लिए दस्तियाब होगा। राजमार्ग के शाठी गांव और इससे मुड़का मुतद्दिद देहात में आज सुबह होने वाली शदीद जालेबारी ने महबूबागात धान की पनीरी सब्जियों की फसल और दीगर फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया है, जिससे काश्तकारों को भारी माली खसारा बर्दाश्त करना पड़ा है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी फोरम के नायब सदर मोहम्मद सुलेमान भट्ट ने हुकाम से मुतालबा किया है कि नुकसान का फिलफौर तखमीने लगाया जाए ताकि मुतासरीन को माकूल मुआवजा अदा किया जा सके। इधर शोपियां से फयाज वानी की इतला है कि आज बाद दोपहर मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते तारीखी मुगल रोड के दोनों तरफ वाके पद पावन बहुरी हालन और दीगर मुल्हिका इलाकों में तेज बारिशों के साथ साथ शदीद जालेबारी शुरू हुई जो कई मिनट तक जारी रही। जालेबारी के नतीजे में इलाके के महबूबागात को बड़ा नुकसान पहुंचने की इतलात हैं, जिससे बागबानों में तश्वीश की लहर दौड़ गई है। मकामी आबादी का मुतालबा है कि नुकसान का फिलफौर तखमीना लगाया जाए ताकि उन्हें राहत पहुंचाने के लिए रास्ता हमवार हो। और अब एक रिपोर्ट के साथ कुलगाम से फारूक राठौर।
2: जिले कुलगाम के दूर उफ्तादा और पहाड़ी इलाका वाल्टुगुनार कुंड में 2 दहाई कबल पेश आने वाला तबाकुन बर्फानी तूफान आज भी इलाके के लोगों के जहनों में एक दर्दनाक याद के तौर पर महफूज है। इस सानहे ने न सिर्फ दर्जनों खानदानों को उजाड़ कर रख दिया बल्कि सैकड़ों अफराद को बेघर और मायूसी तौर पर तबाह कर दिया। ताहम अफसोसनाक अमर यह है कि उस अलमनाक हादसे के 20 साल मुकम्मल होने के बावजूद भी मुताजिद मुतासरा खानदान अपनी मुकम्मल बाजाबादकारी और हुकूमती वादों के तकमील के मुंतजर हैं। शहरबीन को मिली तफसीलात के मुताबिक 19 फरवरी 2005 को वाल्टुगुनार कुंड में अचानक बर्फानी तूफान और बर्फानी तूदू ने ऐसी तबाही मचाई जिसकी मिसाल इस खत्ते की तारीख में कम ही मिलती है। इस साने के 2275 कीमती इंसानी जाने तलब हो गई जबकि 120 से जायद राशि मकानात मुकम्मल तौर तबाह हो गए और दर्जनों गांव खाने भी जमीन बोस हो गए, जिसके नतीजे में पूरा इलाका शदीद इंसानी अलमिया से चार हो गया और मुतासरा खानदान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। उस वक्त हुकूमत की जानिब से मुतासरा अफराद को पूरी इमदाद और राहत फराहम करने के साथ साथ उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकल करके मुस्तकिल तौर पर आबाद करने का फैसला लिया गया था, जिसके तहत 172 कनाल अराजी फी कनाल 20,000 रुपए के हिसाब से खरीदी गई और मुतासरीन की बाजाबादकारी के एक बड़े मंसूबे का आगाज किया गया, जबकि मरकजी हुकूमत की जानिब से भी इस मकसद के लिए तकरीबन 5 करोड़ रुपए की रकम वागुजार की गई ताकि मुतासरा खानदानों को रहायशी सहूलियात फराहम करके उनकी जिंदगियों को दोबारा मामूल पर लाया जा सके। अगर मंसूबे की इब्तदाई मराहिल में कुछ पेशरफ्त देखने को मिली और हुकूमत की जानिब से 76 मुतासरा कुंभों के लिए रहायशी शेल्टर तामीर करके उनको सौंप दिए गए, तहम 44 कुंभे ऐसे आज भी मौजूद है जिन्हें 20 वर्ष गुजरने के बावजूद न तो रहायशी शेल्टर फराहम किए गए और न ही उनकी मुकम्मल बाजाबादकारी अमल में लाई गई।

0: जिसके बायस ये खानदान मुसलसल मुश्किलात और गैर यकीनी सूरतहाल के शिकार है और हुकूमती वादों की तकमील के मुंतजर है। मुतासिरीन का कहना है की 2018 से जेर तामीर रहायशी शर्त का काम अचानक रोक दिया गया है जिससे मुतासर खानदानों में शदीद तशवीश पाई जाती है। उनके मुताबिक इब्तदाई तौर पर तामीर किए गए 76 शर्त 4 कमरों और अलहदा गाँव खाने पर मुश्तमिल है।
1: कुलगाम से फारूक राठौर की रिपोर्ट आपने सुनी और प्रोग्राम के आखिर में यह खबर कि पीडीएफ के सदर और साबिक वजीर हकीम मोहम्मद यासीन ने इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया है कि हिजरी कैलेंडर के पहले माह मुहर्रम उल हराम की आमद आमद के पेश नजर वादी कश्मीर में बिलअमूम और बड़गाम जिले में बिलखसूस तमाम ऐसे लाजमी इकदाम किए जाएं जिससे अजादारों को सहूलत मैसर हो सके। उन्होंने खसूसी तौर पर महकमे सेहत, महकमे बिजली, महकमे जल शक्ति और म्यूनिसिपल हुकाम से मुतालबा किया है कि तमाम ऐसे इंतजाम किए जाए ताकि अजादारों को सहूलत मिले और उन्हें किसी किस्म की कोई दिक्कत पेश न आए। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
2: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
3: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर हैं फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दें इश्तिहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000025।
4: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग।
5: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
6: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
7: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
8: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावट खोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
9: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
11: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
12: अरे माँ देखो, एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
13: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
12: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की PM राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
13: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
12: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
13: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
12: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
13: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
12: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
13: शुक्र है, और डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
12: वही तो माँ, PM राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं शेख यासीन। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नार्को टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार किए जाने का दोहराया अजम। मुनशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी। ड्रग स्मगलरों की 6 करोड़ रुपए से जायद मालियत की जायदादें जब्त। माहौलियात को तहफ

0: राजनांदगांव में मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर एक जिंदा उजावित करतास है जिस पर सदियों से फहम और दानिश इख्तरा फनकारी और दस्तकारी नक्श की गई है। श्रीनगर में एक हफ्ते तक जारी रहने वाले रंगे कश्मीर नामी सकाफती फेस्टिवल से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि किसी मुल्क की मजबूती उसकी दौलत और ताकत में नहीं बल्कि उसके जज्बे रिवायात की गहराई और उसकी सकाफत की फालियत में मुजमर होती है।
1: मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर कल्चरल हेरिटेज फेस्टिवल और एक्सपो का ये चौथा एडिशन इस विरासत का सम्मान करने का एक अच्छा माध्यम है। बड़े स्तर पर सांस्कृतिक महोत्सव, प्रदर्शनी, विरासत समारोह, शिल्प प्रदर्शनों के आयोजन के प्रति फाउंडेशन की प्रतिबद्धता भारतवर्ष और जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक पहचान की जीवंतता की प्रमाण है। इस एक्सपो को मैं एक जीवंत पाठशाला के रूप में भी देखता हूँ जहाँ परम्परा और इनोवेशन इन दोनों का संगम दिखाई पड़ा है, जहाँ पुराने नए को प्रेरित कर रहे हैं और जहां आवाम एक साथ आकर उस विविधता का उत्सव मना रही है।
0: इस मौके पर वादी से ताल्लुक रखने वाले मारूफ फिल्म साज मुश्ताक अली अहमद खान को अवार्ड से नवाजा गया। आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए उन्होंने अपने तासुरात का यूं इजहार किया।
2: मैं बड़े अदब और बड़े हम्बली ये कहना चाहता हूँ कि खुशी तो होती है, कोई शक नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि जो मेहनत, जो एक कंसिस्टेंसी मेरे काम में रही है, लगातार मेहनत करता रहा हूँ आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, थिएटर, टेलीविजन और खासकर जो मेरा प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स का, उसमें जो मेरी मेहनत और काविशें रही हैं उसको कहीं छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे सराहा जाता है तो मुझे खुशी जरूर होती है। और मैं अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे इसके काबिल समझा कि उनके हाथों मुझे इज्जत अफजाई की जाए।
0: आज माहौलियात को तहफ़ दिन से मुतलिक आलमी दिन है। आज के दिन हयातियाती तनाव को तकवीत बख्शने, नीज आलोदगी को कम करने के लिए दरकार लाजमी इकदाम को उजागर किया जाता है। इस बारे में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा के वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशू ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
3: क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल फिनोमेना है। हम कहेंगे कि कश्मीर में तो हमारी इंडस्ट्रीज ही नहीं है तो फिर क्लाइमेट चेंज क्यों है, क्योंकि हम जब कहते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से हमें रेनफॉल आता है, स्नो आता है, तो वो तो वेस्ट से ही आता है। इसलिए ये पोल्यूटेंट से, ग्रीन हाउस गैसेज, ये सारा जो है, यू नो, इट सर्कुलेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसलिए हम कश्मीर में तो हम उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्लाइमेट चेंज के, बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, वी फेस द मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो मुझे लगता है कि जो मैं कह रहा हूँ कि एक्शन प्लान्स पर हमें रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने हैं। क्लाइमेट चेंज को हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हम अपने आप को रेजिलिएंट बना सकते हैं ताकि जब जब ये क्लाइमेट एक्सट्रीम्स आएंगे, जब जब ये क्लाइमेट डिजास्टर्स आएंगे, तो उसका हम पर असर कम पड़ेगा।
0: वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने समाज के हर तबके पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर में माहौलियाती निज़ाम को तकवीत बख्शने, नीज यहाँ के सब्जे और हयातियाती तनावों को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखने में अपना कलीदी रोल अदा करें। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत देरपा तरक्की के अहदाफ की हुसूल याबी के साथ साथ माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने की वादाबंद है। वज़ीर आला ने आज जम्मू कश्मीर हाउस नई दिल्ली में एक पौधा लगाया। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने भी माहौलियात के दिन के ताल्लुक से अपने पैगाम में किसानों, नौजवानों, तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी तंजीमों पर जोर दिया है कि वो माहौलियात को तहफ़ुज़ देने और बेहतर मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए मुतहद होकर काम करें। उन्होंने कहा कि जंगलात को फ़रोग देने के साथ साथ यहाँ के आबी ज़खायर को तहफ़ुज़ देने की अशद ज़रूरत है। आज के दिन की मुनासिबत से जम्मू कश्मीर पुलिस के एहतमाम से यूटी के सभी अजला में तकरीबात और शजरकारी प्रोग्राम मुनक्कद हुए। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन श्रीनगर में शजरकारी मुहिम की कयादत की। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा और जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल के अलावा पार्टी के कई दीगर लीडरों ने जम्मू में पार्टी के एहतमाम से मुनक्कद शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। पार्टी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोनियार बारामुल्ला में शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया। माहौलियात के आलमी दिन के मौके पर सीनियर सियासतदान और साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को कुदरती वसायल के तहफ़ में संजीदगी का इजहार करना चाहिए। उन्होंने दरियाई जहलिम की शान रफ्तार बहाल करने की जरूरत पर जोर दिया है। सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पापोर की तरफ से एनआईएफटी बड़गाम में माहौलियात के आलमी दिन के मुनासिबत से सॉयल साइंटिस्ट मीट 2026 का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वहां शजरकारी मुहिम भी शुरू की गई। इस मौके पर डायरेक्टर सेरिकल्चर कश्मीर एजाज अहमद भट्ट के अलावा कई दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थी। बाद में मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते

0: उन्होंने कहा,
1: हम देख रहे हैं कि सस्टेनेबल जो सिरी कल्चर है वो कैसे हम डेवलप करेंगे, कैसे इसको ग्रूम करेंगे। लीफ ऑफ क्वालिटी जो है उसको ठीक करना है, जो काफी स्पीसीज हैं सीड में वो कैसे हम अच्छा बनाएंगे ताकि यहाँ की प्रोडक्शन अच्छी बने। एवरी प्लांट इज मस्ट, वेदर इट इज मलबेरी, वेदर इट इज पाइन, वेदर इट इज एप्पल, वेदर इट इज चिनार, वेदर इट इज पॉपुलर, जो भी है, तो हम किस तरह से प्लांट को ठीक करेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम इसमें जो वर्मी कम्पोस्ट है, जो ऑर्गेनिक है, उसका यूज हो। बाई डिफॉल्ट ये ऑर्गेनिक है, लेकिन इसको ऑर्गेनिक रखना है फ्यूचर के लिए।
0: वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बेंगलुरु में एक तकरीब के हाशिए पर कर्नाटक के वज़ीर आला डी के शिवाकुमार के साथ मुलाकात की और उन्हें कर्नाटक का वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में कायम किए गए

0: ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी की मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाप्त कर सकते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज जम्मू में कायम किए गए महकमे मौसमियात के इलाकाई मरकज का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस सहूलत से जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में लोगों तक मौसम से मुतल्लिक बरवक जानकारी पहुंचाने में मदद मिलेगी। मीडिया से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा,
1: जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, डॉपलर वेदर रडार बिल्कुल उपलब्ध नहीं थे। अभी कुछ ही सालों में हमने चार जगह स्थापित कर दिए हैं, जम्मू, श्रीनगर, बनिहाल, ले, और बहुत जल्द पांच और स्थापित होने वाले हैं, डोडा, किश्तवाड़, रजौरी, अनंतनाग, बारामूला। इसी प्रकार रेनफॉल मॉनिटरिंग सिस्टम जम्मू कश्मीर में केवल और केवल 30 थे, हमने 55 उसमें जोड़ दिए, आज बढ़कर के 85 हो गए। तो इस कदर जब विस्तार हुआ तो दिल्ली के रीजनल सेंटर को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक रहेगा जम्मू में, जम्मू रीजनल सेंटर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल को कवर करेगा। दूसरा रहेगा दिल्ली में, जो दिल्ली और गिर्द और नवाह के जो प्रदेश है, हरियाणा, पंजाब इत्यादि। और तीसरा रहेगा लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को कवर करेगा।
0: वज़ीर सेहत सकीना ईतू ने कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर के गैर मारूफ सियाती मकामात को सियाहत के नक्शे पर लाने के लिए ठोस इकदाम कर रही है। कुलगाम में जिला अफसरान की एक मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि जिले के पांच चनपत्री इलाके में सियाहत के बुनियादी ढांचे को फरोग दिया जाएगा। उन्होंने जिला इंतजामिया और महकमे सियाहत के अफसरान को इस बारे में जरूरी कार्रवाई शुरू करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लो ने जरूरी सेक्टर को तरक्की की नई मंजिल से हमकिनार कराने के लिए किसानों के हक में जरूरी कर्जा स्कीमों की मौसर अमल आवरी पर जोर दिया है। वो आज श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान इन स्कीमों की पेशरफ का जायजा ले रहे थे। अटल डिल्लो ने जरूरी कर्जों की फराहमी के ताल्लुक से मुकर्रर किए गए अहदाफ को हासिल करने की अफसरान को हिदायत दी। मौसम में तब्दीली और गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ लोगों, खुसूसन बुजुर्ग अफराद को जिस्म में पानी और नमकियात की कमी महसूस होती है। इस सिलसिले में बुजुर्गों के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में बुजुर्ग अफराद के तिबी मसाइल के माहिर डॉक्टर जुबैर सलीम ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: गर्मी में बुजुर्गों को दिन के गर्म अवकात, खास तौर पर 11 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से गुरेज करें। पानी, लस्सी, नींबू पानी, दिन में ORS का एक गिलास, होममेड फ्रूट जूस दिन भर 4 बजे तक पीते रहें, चाहे प्यास महसूस ना भी हो। गिजा में ताज़ा फल, सब्जियां, दही, तरबूज, खरबूजा, खीरा और हल्की गिजा को तरजीह दें। फलों को अच्छे से धोकर खाएं। ज्यादा तेल वाली, मसालेदार और भारी गिजा से परहेज करें। अगर किसी भी गिजा से, खासकर घर में रखे वाजवान से हल्की भी गैर मामूली बू महसूस हो तो उसे ना खाएं। चक्कर, जीभ का सूखना, कमजोरी, उलझन, ज्यादा नींद, भूख में कमी या अचानक कंफ्यूजन, डिहाइड्रेशन या पानी की कमी की निशानी हो सकती है। ऐसी सूरत में पानी पिएं, डॉक्टर के पास जाएं।
0: PDP सदर और साबिक वज़ीर-ए-आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एम्स अवंतीपुरा में तिबी शोबे का एक मयारी मरकज बनने की वसी गुंजाइश मौजूद है। एम्स के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि इस इदारे की शक्ल में PDP के बानी और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर-ए-आला मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का ख्वाब शर्मिंदे ताबीर हो रहा है। मीडिया नुमाइंदों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
3: हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त हेल्थ के हवाले से बहुत मुश्किलात हैं, खासकर कैंसर फैल रहा है और इसमें रिसर्च का भी अपना एक हिस्सा होगा और डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट, नर्सेज की रिक्रूटमेंट, और उससे मुझे लगता है ये इंस्टीट्यूट जो बन रहा है ये पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक मिसाल बनेगा। कितनी खूबसूरत जगह है, यहाँ आते ही मुझे लगता है पेशेंट तो इस माहौल में ज्यादा बेहतर फील करेगा और हमारे यहाँ बड़े ही काबिल जो बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, डॉक्टर बनेंगे, नर्सेज का काम करेंगे, उससे यहाँ के लोगों का बहुत फायदा। और यहाँ मुझे लगता है लोगों का जो इतने सारे डॉक्टर, इतने स्टूडेंट्स वगैरह, मुझे लगता है अवंतीपुरा जो है बहुत तरक्की करेगा इंशाल्लाह।
0: BJP जम्मू कश्मीर के मीडिया इंचार्ज डॉक्टर प्रदीप महोत्रा ने उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार पर तामीर और तरक्की के लिहाज से जम्मू सूबे को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। जनता दल यूनाइटेड जम्मू कश्मीर के सदर GM शाहीन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इल्जाम आयद किया है कि इस पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हजरत ख्वाजा हबीबुल्ला नौशहरी रहमतुल्लाह के उर्स के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने हजरत मियां निजामुद्दीन लारवी रहमतुल्लाह के सालाना उर्स के मौके पर अकीदतमंदों की सहूलत के लिए माकूल इंतजाम करने की इंतजामिया से ताकीद की है। ये उर्स इस महीने की 7

0: 8 तारीख को मनाया जा रहा है। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने इंतजामिया से अपील की है कि मुहर्रम उल हराम की आमद के पेश नजर मुनासिब इंतजाम किए जाने चाहिए। उन्होंने शिया आबादी वाले इलाकों में अजादारों को तमाम सहूलियात दस्तियाब रखने की भी सूबाई इंतजामिया से अपील की है। मौसम। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामत पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 27.1 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 37.2 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 21.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:19 पर और गुरुब आफ्ताब शाम 7:40 पर होगा। इसके ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। खुदा हाफिज।
1: समीन आदाब। आज का तबसरा लेकर मैं बसारत गुल। आलमी योम माहौलियात हर साल 5 जून को दुनिया भर में इस अज़म की तजदीद के तौर पर मनाया जाता है कि हम अपने कुदरती वसाइल माहौलियाती निज़ाम और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के तहफ़ के लिए अमली इकदाम करें। तेजी से बदलते मौसमी हालात, बढ़ती आलूदगी, जंगलात की कटाई और कुदरती वसाइल के बेदरीख इस्तेमाल ने माहौलियात को आलमी सतह पर एक चैलेंज बना दिया है। ऐसे में ये दिन हमें याद दिलाता है कि माहौल का तहफ़ सिर्फ हुकूमतों या इदारों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर फर्द का मुश्तरका फरीजा है। जम्मू कश्मीर अपनी कुदरती खूबसूरती, भरपोश पहाड़ों, सरसब्ज जंगलात, झीलों, दरियाओं और हयाताती तनुओं के बायस एक मुनफरिद मकाम रखता है। यह खिता जगराफियाई एतबार से भी नहायत हसास है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात यहाँ वाजह तौर पर महसूस किए जा रहे हैं। ग्लेशियर्स के सुखड़ने, बेवक्त बारिशों, सैलाबी सूरत हाल, खुशकसाली के खदशात और दर्ज हरारत में गैर मामूली तब्दीलियों के अलावा शहरी तोसी, जंगलात पर दबाव और आबी जखायर की आलूदगी भी माहौल के लिए संगीन खतरात पैदा कर रही है। जम्मू कश्मीर के कुदरती वसाइल न सिर्फ यहाँ के आवाम की मईशत और रोजगार से वाबस्ता हैं बल्कि माहौलियाती तवाजुन में भी अहम किरदार अदा करते हैं। इसलिए जंगलात के तहफ्फुज़, शजरकारी मुहिमात, आबी वसाइल की निगहदाश्त, फसलें के मौसर इंतजाम और माहौल दोस्त तर्ज जिंदगी को फरोग देना वक्त की अहम जरूरत है। तालीमी इदारों, समाजी तंजीमों और सरकारी महकमों को मिलकर ऐसी सरगर्मियों को फरोग देना होगा जो माहौल के तहफ्फुज में माउन साबित हों। आलमी योम माहौलियात हमें ये पैगाम देता है कि कुदरत ने हमें जो नेमतें अता की है उनकी हिफाजत हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अगर हम आज माहौल के तहफ्फुज के लिए संजीदा और मुस्तकिल इकदामात करेंगे तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर की कुदरती खूबसूरती और माहौलियाती तवाजुन बरकरार रहेगा बल्कि आने वाली नस्लों को भी महफूज, सेहतमंद और खुशहाल माहौल मैसर हो सकेगा। यही इस दिन का असल मकसद और हमारी मुश्तरका कामयाबी की बुनियाद है। तबसरा खत्म हुआ। शब बखैर।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: वादे की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

सब का एक सरचश्मा निसाब होता है, जबकि दूसरा बच्चे अपने घर माहौल और समाजी रवैयों से अपने साथ लेकर आते हैं। पाकिस्तानी तालीमी इदारे अक्सर इन तासुबात को कम करने के बजाय उन्हें मजीद मजबूत और मुनज्जम कर देते हैं। बहुत से असातिज़ा खुद महदूद मुताले के हामिल होते हैं, निसाबी किताबों के सिवा उनका इल्म और दुनिया से राबता निहायत कम होता है। दूसरी तरफ निसाब में बार बार एक ही तरह के ख्यालात, शिनाख्तों और बयानियों की तकरार बच्चों के जहनों को मखसूस सांचों में ढाल देती है। बच्चे अजीबोगरीब वसवसों का शिकार हो जाते हैं, नतीजतन इख्तलाफ राय से खौफ, दूसरों के बारे में बदगुमानियां और तंग नजरी महज ख्यालात नहीं रहते बल्कि मुस्तकिल समाजी रवैयों में तब्दील हो जाते हैं। अगर स्कूल ही उन्हें तनु से खौफ और तकसीम सिखाए तो फिर माशरे में बर्दाश्त और हम आहंगी का फरोग कैसे होगा। सभी प्रोग्राम में आपसे करेंगे और भी बातें। आज जुमतुल मुबारक है, पहले फैज़ याब होते हैं इस नातिये कलाम से।

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से वादी की आवाज पेश किया जा रहा है। समीन, पाकिस्तान में जून 2026 में अगले माली साल के लिए जो वफाकी बजट पेश होगा तो हज़्ब रिवायत, मईशत, तरक्याती मंसूबों, मासूलात और महंगाई पर तवील बहस होगी। हुकूमत अपनी कामयाबियां बयान करेगी, वुज़रा की तरफ से अदद और शुमार की जादूगरी के हैरान कुन मुजहरे होंगे। अपोजिशन हज़्ब रिवायत तनकीद करेगी, टीवी स्क्रीनों और वहां सोशल मीडिया पर माशी तजियों का तूफान उमड़ आएगा, मगर इस सारे शोर में एक सवाल की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाएगा। क्या तालीम वाकई वहां की कौमी तरजीह है? शायद हुकूमत और अपोजिशन के लिए इस सवाल की कोई अहमियत नहीं। ये सवाल इसलिए भी अहम है कि किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल उसकी शहराओं, मेट्रो मंसूबों या बुलंद इमारतों से नहीं, बल्कि उसके स्कूलों और क्लासरूम्स में तश्कील पाता है। जो ममालिक तालीम के शोबे में सरमायाकारी करते हैं, वही मजबूत मईशत और बेहतर समाजी ढांचा कायम करने में कामयाब होते हैं। समीन, बदकिस्मती से पाकिस्तान की तालीमी तारीख इस हवाले से ज्यादा हौसला अफजा नहीं रही। कायम पाकिस्तान के बाद से हर हुकूमत ने सिर्फ जबानी जमा खर्च को कौमी तरजीह करार दिया। बुलंदोबाग दावे किए गए, मुख्तलिफ तालीमी पॉलिसियों का ऐलान किया गया, उन पॉलिसियों और इस्लाहती मंसूबों में बड़े बड़े अहदाफ मुकर्रर किए गए। कभी शरह ख्वानदगी बढ़ाने की बात हुई, कभी तालीम सब के लिए का दिलकश नारा लगाया गया और कभी इल्म पर मबनी मईशत के ख्वाब दिखाए गए, मगर तलख जमीनी हकीकत यही है कि वहां तालीम कभी वफाकी बजट की तरजीहात में अहम नहीं रही। यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान बुनियादी तालीमी मसाइल से नबरुदाजमा है। वहां स्कूलों की अक्सरियत में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। गर्मियों में क्लासरूम्स तप रहे होते हैं और शदीद सर्दियों में क्लासरूम्स में सर्दी से बचने का कोई इंतजाम नहीं होता। अक्सर वहां स्कूलों की इमारतें खस्ता हैं, एक ही कमरे में मुख्तलिफ जमातों के बच्चे बैठे होते हैं, न बिजली, न पंखा, न पानी। इन हालात में उस्ताद से तवक्कु की जाती है कि वो पूरी तंदही से पढ़ाए और तलबा जौक और शौक से तालमी अमल का हिस्सा बने। समीन, वहां सरकारी स्कूलों की अक्सरियत की हालत नागुफ्तब है। काश बजट बनाने और बजट पर बहस करने वाले उन स्कूलों की खस्ताहाली को अपनी आंखों से देखे, ताकि उन्हें एहसास हो कि तालीम के शोबे में सरमायाकारी किस कदर जरूरी है। लेकिन वहां के पॉलिसी साजों के अपने बच्चे एलीट स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं, लिहाजा पाकिस्तान के बच्चों से उनका कोई सरोकार नहीं। आज पाकिस्तान में 2.5 करोड़ से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर है। उन बच्चों और उनके वालदेन के भी कुछ ख्वाब थे, लेकिन माली वसाइल की कमी ने उनके ख्वाब गली कूचों में बिखेर दिए। उन बच्चों की अक्सरियत देही इलाकों, अंदरूनी सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और पसमानदा तबका से ताल्लुक रखती है। खुरबत, बच्चों से मशक्कत, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, तवील फासले और सिनफी रुकावटें उन्हें तालीम से दूर रखती हैं। लड़कियों की सूरतहाल और भी ज्यादा तश्वीशनाक है। बहुत सी बच्चियां वहां सिर्फ इसलिए तालीम छोड़ देती हैं कि स्कूल में बुनियादी सहूलत या ख्वातीन असातिज़ा दस्तियाब नहीं होती। ऐसा नहीं कि उन बच्चों में जहानत की कमी थी या उन्हें पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी। वो जहीन थे और पढ़ना भी चाहते थे, लेकिन उनका वाहिद कसूर उनकी गुरबत थी जो उनके रास्ते की दीवार बन गई। समीन, पाकिस्तान का तालमी बहरान सिर्फ रसाई तक महदूद नहीं। जो बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं उनमें से भी 53% 8वीं जमात में पहुंचने तक ड्रॉप आउट हो जाते हैं। जो खुशकिस्मत स्कूल में बाकी रह जाते हैं उनमें से बड़ी तादाद सीखने की बुनियादी सलाहियत से महरूम रहती है। समीन, पाकिस्तान के तालीमी निजाम के हवाले से करेंगे और भी बातें। पहले इस नातीय कलाम से फैजियाब होते हैं।

0: आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से इस वक्त वादी की आवाज पेश किया जा रहा है।
1: सनी, वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल की उम्र के तकरीबन 80% पाकिस्तानी बच्चे एक सादा इबारत रवानी से नहीं पढ़ सकते। ये सूरत हाल इस बात की अक्कासी करती है कि मसला सिर्फ वहाँ स्कूल तक रसाई का नहीं बल्कि तालीमी मैार का भी है। पाकिस्तान में शरीय खानदगी 63% तक है, यानी आज भी तकरीबन 40% आबादी नाखानदा है। ये बहरान सिर्फ तालीम के शोबे तक महदूद नहीं रहता बल्कि इसके मनफी असरात वहाँ के माशरे और मईशत पर भी पड़ते हैं। ऐसा माशरा जहाँ एक बड़ा तबका बुनियादी तालीम से महरूम हो, वहाँ जमहूरी शऊर, तनकीद फिक्र और समाजी शिरकत भी एक सवालिया निशान बन जाती है। ये मामला उस वक्त मजीद संगीन हो जाता है जब वहाँ सरकारी सतह पर तालीमी अखराजात का जायजा लिया जाता है। कई दहाइयों से पाकिस्तान में तालीम पर GDP का 4% खर्च करने का दावा किया जाता रहा। 2019 की तालीमी पॉलिसी में तो ये नवीद भी दी गई कि अगले चंद वर्षों में तालीम के लिए GDP का 7% तालीम के लिए मुख्तस किया जाएगा, मगर अफसोस यह हदफ कभी हासिल न हो सका। सितम जरीफी ये कि तालीम के लिए मुख्तस फंड्स में इजाफे के बजाय हर साल कमी होती गई, हत्ता कि 2024-25 में तालीमी खराजात GDP का महज 0.8% रह गए। ये शरह न सिर्फ आलमी मैार से बहुत कम है बल्कि जनूबी एशिया के ममालिक से भी पीछे है। कम बजट के साथ दूसरा बड़ा मसला तरजीहात का है। तालीमी बजट का बड़ा हिस्सा तनख्वाहों और जारी अखराजात में वहाँ सर्फ हो जाता है, जबकि तरक्याती मनसूबों, लाइब्रेरियों, लेबॉरेटरियों, टेक्नोलॉजी और तदरीसी वसाइल के लिए बहुत कम रकम बचती है। यही वजह है कि हजारों स्कूल आज भी बिजली, पानी, बैतुल खुला और दीगर बुनियादी सहूलियात से

0: इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का जो वक्त है अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मेजबान को प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। आप खुश रहिए, सलामत रहिए, खुदा हाफिज।
1: वादी की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

0: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है। समय पेश खिदमत है खेलों से मुतलिक प्रोग्राम स्पोर्ट्स टाइम।
1: स्पोर्ट्स टाइम सामईन इस्तकबाल है आपका आज के स्पोर्ट्स टाइम में। स्पोर्ट्स टाइम में आज हमारे प्रोग्राम की जीनत बन रहे हैं नामवर स्पोर्ट्स तजिया निगार और खुद एक खिलाड़ी रह चुके सैयद हुमायूं कैसर। हुमायूं आपका इस्तकबाल है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: हुमायूं साहब आज प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं फ्रेंच ओपन से। ये टूर्नामेंट अपने उरूज पर जिसको कहें पहुंच चुका है, अब सेमीफाइनल्स और फाइनल्स की बारी है। सबसे बड़े उलट फेर इस बार इस टूर्नामेंट में देखने को
2: मिला। सही बात है। देखिए पहली बात थी कि अल्कराज खेल नहीं रहे थे, सिनर पहले हार गए। जोकोविच किसके लिए खेल रहे, फन के लिए, किस लिए? जोकोविच भी हार गए। और अब एक चीज सडनली महसूस होने लगी, अब पिछले दिन अल्कराज और सिनर ने तो अच्छा खेला, ठीक है, वो जो बिग थ्री थे तो चार्म था, इसका चार्म ही नहीं रहा।
1: बिल्कुल, जब स्टार्स हट जाते हैं तो
2: नडाल फेडरर और जोकोविच की जब टक्कर होती थी तो एक वो समा बनता था, वो रहा ही नहीं।
1: बिल्कुल वो रहा ही,
2: अजीब सा लग रहा है, हॉलो हॉलो सारा। अब अल्कराज और सिनर की होती थी वो भी पिट गए, जोकोविच शुरू में हार गए, तो फिर अब ये बात ही नहीं बनती। अब शायद ज़ेवरेव
1: उनका सेमीफाइनल में मुकाबला,
2: एक मशहूर खिलाड़ी वही बचे।
1: हाँ बिल्कुल। औरतों की तरफ अगर देखें वुमेन्स फ्रेंच ओपन की तरफ, वहाँ भी बड़े उलटफेर सामने आए हैं। वहाँ हम देख रहे हैं कि मीरा एड्रेवा रशियन खिलाड़ी हैं, फाइनल में पहुंच चुकी हैं। दूसरी तरफ से ओपन दौर की दूसरी खातून है माजा चावलिस्का, पोलैंड से है, इन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। तो यहाँ भी लगता है कि जो दबदबा था बहुत अरसे तक विलियम सिस्टर्स का, मारिया शारापोवा, दूसरे खिलाड़ी, वो सब खाली
2: सारे खत्म हो गए,
1: सारे खत्म हो गए। और टेनिस में एक बड़ा उलटफेर सामने आ रहा है।
2: बिल्कुल सही है, इसमें ज्यादा हुआ। और फ्रेंच ओपन को मैं बहुत टफ इसलिए मानता हूँ, इसमें बड़ी लंबी रैलीज होती हैं, बहुत हिम्मत चाहिए, पांच पांच घंटे मैच चलते हैं इसमें, क्ले पे खेलते हैं। मगर इसमें देखिए फिर भी एक क्या खास चीज है कि जो डोमिनेट कर रही थी लड़कियां वो नहीं है, लेकिन फिर भी ईस्टर्न यूरोपियन ही है।
1: बिल्कुल
2: अमेरिकन नहीं है, ऑस्ट्रेलियन नहीं है, जो एक जमाने में छाए थे इस पे, टेनिस पे कहीं नहीं है, ये

0: यूरोपियन है, फिर भी फिर वही डोमिनेट करेंगी, फिर वही ले जाएंगी। वरना ऐसे देखिए, बीच में अमेरिका में एक दो आई पिछले ऑफ लेट फीमेल्स, जिनने कुछ जीता सिरना विलियम्स के बाद भी आई, बाकी कोका गफ आई, कुछ और आई, मगर अब
1: वो जो मैजिक एक अरसे तक कायम रहता था नहीं, वो नहीं है,
0: नहीं है।
1: मर्दों में भी और खवातीन में भी नहीं, कुछ देर लगता है कोई खिलाड़ी
0: जो हम कैसे
1: कहें कि सक्सेसर हो सकता है उन कमाल के प्लेयर्स का, लेकिन अभी वो बात नहीं बन रही
0: बात।
1: तो इसलिए से लोगों का भी थोड़ा सा इंटरेस्ट कम होता है जब स्टार पावर कम होता है।
0: एक और चीज भी होती है ना, जैसे नस्तासा एक खिलाड़ी थे, बहुत टूर्नामेंट जीते, विंबलडन नहीं जीता उन्होंने कभी, मर्क्यूलर कहते थे, है ना, उनके गेम में जो फ्लैम्बॉयंस थी वो क्राउड को लाती थी,
1: बिल्कुल
0: वैसे खिलाड़ी जैसे जरूरी है, सहवाग, शाहिद अफरीदी, शेन वॉर्न, ऐसे खिलाड़ी आपको चाहिए परफॉर्म करें ना करें,
1: एक्स फैक्टर लेके आते हैं
0: क्राउड के लिए।
1: तो हमें उम्मीद है कि टेनिस में ये जो अभी दौर चल रहा है कि कुछ ऐसे खिलाड़ी सामने आ रहे हैं जो नाम बना सकते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये नाम बनाए और आगे ये उस उफक पर छा जाए जिस पर कभी नडाल जैसे नाम रहते थे। तो अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, 11 तारीख से शुरू हो रहा है, एक हफ्ता बचा है कम अज कम, तो हमारे 12 को लेकिन 11 तारीख को ऑफिशियली अमेरिका में शुरू होगा, यूएसए और मेक्सिको इसकी ज्वाइंट मेजबानी कर रहे हैं, लेकिन इस बार ज्यादा पॉलिटिक्स ही है फुटबॉल से ज्यादा लग रहा है,
0: बहुत प्रॉब्लम है, बहुत इशूज है। अभी मोराको की टीम का जो चीफ था उसको वीजा नहीं मिला, उन्हें रिप्लेस किया उसको, ईरान की टीम को वीजा नहीं मिला अभी अमेरिका में एंट्री का, अच्छा ब्राजील के कुछ लोगों को नहीं, बाकी टीमों को नहीं, फैंस को बिल्कुल ही नहीं वीजा मिल रहा है, ये तो बिल्कुल यानी ये इससे रद्दी वर्ल्ड कप कभी हुआ नहीं, हमने नहीं सुना अपनी लाइफ में, हमने देखते हुए कि इसमें अमेरिका का प्रेसिडेंट जो चाह रहा है वो हो रहा है, फीफा चुप करके तमाशा देख रही है,
1: बिल्कुल
0: कुछ भी नहीं हो रहा है। अब यूएसए ने कहा कि फीफा ने कहा कि ईरान के मैच हम शिफ्ट नहीं करेंगे, उनको खेलना है जी यूएसए में ही, उनके मैच यूएसए में, यूएसए ने कहा हम इनको यहाँ रहने नहीं देंगे, फीफा ने वो मान लिया, वो रहेंगे मेक्सिको में,
1: बिल्कुल
0: मैच खेलने आएंगे
1: यूएसए,
0: यूएसए फिर मेक्सिको में ही खेलने देना था उनको,
1: बिल्कुल
0: उनके फैंस भी आते, उनके फैंस आ ही नहीं सकते हैं, 30-32 कंट्रीज में तो बैन लगा दिया यूएसए ने, और आप देखिए 38% फॉल हुआ है रिजर्वेशन होटल्स की में। दूसरी बात आप देखें कि फीफा ने उन्हें पौने दाम टिकटें बेची हैं, एक केस हो गया इनके खिलाफ, इन्फेंटिनो की जहां बताई है, जो टिकटें इनकी बच गई थी इन्हें किसी और तरीके से किसी और पोर्टल को देके उससे बिकवा दी हैं, जो फीफा कर ही नहीं सकता है, वो फीफा को अलाउड ही नहीं करना। फिर दूसरे इससे रिलेटेड एक और बात यह कि रेट बढ़ाते रहे जब मर्जी टिकटों के, फुटबॉल वर्ल्ड कप क्रिकेट का वर्ल्ड कप नहीं
1: है,
0: फुटबॉल वर्ल्ड कप आम आदमी का वर्ल्ड कप होता है, जो 4 साल पैसे जमा करता है अपनी टीम को देखने के लिए कि वो कैसा खेलेगी, और इसमें जज्बात है, क्रिकेट में सिर्फ मैदान में और सोशल मीडिया पे जज्बात है, इसमें दीवानगी है, अगर जब तक फुटबॉल वर्ल्ड कप में वो ना हो तो फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं।
1: मैं कल कहीं ट्रिविया पढ़ रहा था कि एक बारी होंडुरस और एल सल्वाडोर के दरमियान जंग छिड़ गई है फुटबॉल मैच के बाद वर्ल्ड कप के फुटबॉल,
0: और
1: तो इससे पता चलता
0: है मैच देखने के लिए ये भी हुआ है
1: दीवानगी इस गेम के लिए है? क्या है वर्ल्ड ओवर, और ऐसा एक इवेंट जिसको हम कहेंगे कि ग्लोबली स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा इवेंट 11 जून या 12 जून जैसे आपने कहा शुरू हो रहा है।
0: इसमें एक और प्रॉब्लम भी है, कहा जी इंटरवल 30 मिनट का करेंगे, सेमीफाइनल फाइनल का कह रहे हैं 15 मिनट स्टैंडर्ड है, प्लेयर फिट रहता है, स्ट्रेटजी करता है, रिकूप होता है, वो सो जाएगा 30 मिनट में, इस गेम में नहीं। अच्छा 3-3 मिनट के ब्रेक करेंगे तो हम
1: वो तो एड्स तो के, होगा गेम
0: एड्स के लिए, ये तो फीफा को रोकना था ना। और मैं हैरान हूँ यूएफए सबसे पावरफुल बॉडी है, एफकॉन सबसे पावरफुल बॉडी है, एशियन तो बड़ी कमजोर है, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, जो हो रहा है सो चलने दे रहे हैं, ये वो गेम नहीं है जिसको आपने बेचना है सुपर बोल की तरह, वो सिर्फ अमेरिका देखता है, इसको बेचने की जरूरत ही नहीं होती है, बिक जाती है गेम।
1: सही बात है, बिकॉज जो कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करते वहां इंटरेस्ट बहुत ही हाई होता है।
0: देखिए इंडिया में दो मुल्क हैं जिनकी तूफान की फैन फॉलोइंग है, एक है ब्राजील और एक अर्जेंटीना, लाखों लोग फैन हैं इनके,
1: बिल्कुल
0: हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें खेलनी आती फुटबॉल फिर भी
1: यहाँ पे मैं कहूँ कि इंडिया के केरला से बिलोंग कर रहे हैं प्लेयर तहसीन मोहम्मद जमशेद, हाँ, कतर की नुमाइंदगी करेंगे।
0: दो और खिलाड़ी भी हैं इंडियन ओरिजिन के,
1: ओके
0: वो दो मुख्तलिफ टीमों में, बड़ी टीमों में नहीं है वो, मगर शायद कारको में एक है किसी में है, मगर आ रहे हैं,
1: बिल्कुल, तो इंडियंस को स्पेस, इंडियन डायस्पोरा को वो स्पेस मिल रही है जिससे इंडिया में इसके लिए और इंटरेस्ट बढ़ सकता है।
0: मुझे शक ही है वो अपनी टीमों को

0: लो करते हैं
1: बिल्कुल। तो फुटबॉल के बाद इसके इस पर तो बात होती ही रहेगी, ये ऐसा इवेंट है कि जिसको हम स्किप भी नहीं कर सकते। अब इंडिया टीम अफगानिस्तान के साथ कल से एक टेस्ट मैच खेल रही है, इस टेस्ट मैच के लिए वन ऑफ टेस्ट मैच है, तो इसके लिए इंडिया टीम की जो सिलेक्शन हुई सरप्राइजिंग सिलेक्शन हुई, तो कैसे देखा आपने इसको?
2: देखिए पहली बात यह है कि इन्हें कहा कि जैसे हम बुमराह को रेस्ट देंगे, आईपीएल में रेस्ट नहीं कहते हैं करो
1: एग्जैक्टली
2: किसी प्लेयर को, जोफ्रा आर्चर भी आईपीएल में रेस्ट नहीं करते हैं इंग्लैंड के वक्त खेलने के, तो रेस्ट करते हैं, तो चलिए ठीक है। और अफगानिस्तान टेस्ट में बहुत ही नाकिस साबित हुआ है आज तक, उन्हें कुछ अच्छा खेला नहीं है टेस्ट क्रिकेट ना वो खेल, क्योंकि फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर ही नहीं, वो बेचारे फर्स्ट क्लास खेलते ही नहीं है
1: बिल्कुल,
2: तो पाँच दिन का मैच खेलने कहाँ निकलेंगे वो। अब चलिए है जो आईसीसी मदद भी नहीं करता उनकी, उसमें तीन लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं टीम में क्योंकि जडेजा नहीं है, मगर कुलदीप यादव है उसने खेलना है, फिर दो ओवर किस लिए हैं किसी को खिला लें। उसके बाद एक फेवरेट खिलाड़ी थे, वाइस कैप्टन बने इंडियन टी20 के, और अब अच्छा परफॉर्म करते हैं अक्षर पटेल, वो कहीं नज़र ही नहीं आते हैं क्योंकि न्यू ब्लू वर्ल्ड बॉय आपका वाशिंगटन सुंदर है तीनों फॉर्मेट में परफॉर्म करे या ना करे। फिर गुरनूर बरार साहब हैं, एक 18 मैच में 36 या 32 विकेट लिए हैं, और आकिब नबी ने 104 लिए हैं पिछले 18 में, वो टीम में है क्योंकि वो गुजरात टीम में थे और पंजाब में खेलते हैं, गिल ने टीम में लाया लेकिन गिल ने कभी गुजरात की टीम में उसको नहीं
1: खिलाया। तो बहुत से जो एक्स प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं कि फिर रणजी बंद कर दो, जब वहां के पर परफॉर्मर्स को आप रेड बॉल क्रिकेट में नहीं ले रहे तो उससे बेहतर है कि उस फॉर्मेट को ही बंद कर दो।
2: अब उसमें एक और बात भी है, अब देखिए आप ये जो प्लेयर ने लिए हैं बैटिंग में भी, अगर आपको सही सुदर्शन ने 5 टेस्ट में 300 रन बनाए हैं वो है, सरफराज नहीं है जिसने 5 टेस्ट में 350 और 1 सेंचुरी बनाई है, तो ये अच्छा शमी अब क्या कर सकते थे, कंटिन्यूसली रणजी में विकेट लिए
1: बिल्कुल
2: उनने। और चीफ सेलेक्टर कहता है, मुझे जो न्यूज़ मिली है उसमें कहा ये T20 के लिए फिट है, कान आंख नाक बंद है अगर करके, उसने खुद नहीं देखा 25-25 ओवर दिन में करते इसको
1: बिल्कुल अगर करके, मतलब लीडरशिप में जो ये फैसले लिए जा रहे हैं टीम सिलेक्शन के, इनका कोई बेसिक लॉजिक नज़र नहीं आ रहा।
2: देखिए इसमें वेंगसरकर ने कहा कि रणजी बंद करो, फिर सहवाग आ गए का इनजस्टिस हुआ है, वसीम जाफर आ गए उनने कहा, और ऑफ लेट आकाश चोपड़ा ने भी बोला है, और कपिल देव ने पहले कहा था कि आकिब नबी कैसे नहीं खेल सकता है, अगर अब नहीं खेलेगा कब खेलेगा,
1: कब खेलेगा
2: खेलेगा ये। तो ये मगर जो बीसीसीआई के अपने पालतू जो कमेंट्री करते हैं उनमें से कोई नहीं बोलता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
1: अब लास्ट मोमेंट पे एज अ बैकअप बॉलर आकिब नबी को टीम में शामिल किया,
2: नेट बॉलर के बदले बुलाया,
1: हाँ नेट बॉलर
2: उनको प्रैक्टिस करा रहे हैं,
1: बट देयर वाज अ न्यूज अराउंड कि सिराज को रेस्ट देके उनको टीम में लाया जा सकता है,
2: पता नहीं कितना सदाकत है इसमें। एक और चीज ये भी है कि मैं पिछले दिनों भी कह चुका हूँ एक जगह कि नेक्स्ट बारी सिराज की टीम से बाहर होने की, दो परफॉर्मेंस बाहर खराब तो बाहर, क्योंकि ये जो हमारे टीवी पे लोग होते हैं उनने उनको टारगेट करना शुरू किया है, ये देख जो ये इसने मुनाफ पटेल को ऐसी टीम से निकाला, एक जमाने में और बड़े प्लेयरों को ऐसे निकाला इन सिलेक्टर्स ने, ये हमारे कमेंटेटर्स ने नेगेटिव बातें उनकी कर करके, और सहवाग के साथ भी एक पीरियड में यही हुआ कि वो टीम से कैसे बाहर हुए। तो इसलिए अब ये अजीब सा एक खेल है, और अब इंडियन क्रिकेट का सिलेक्शन जो है एक तो अग्रकर के हाथ में नहीं है, बाहर के फोर्सेज हैं, और एक सीधी बात मान लें आप, मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूँ अब शायद लोग मानना शुरू करें, जो फ्रेंचाइजी है कॉर्पोरेट बॉडीज हैं जो पैसा लगाती हैं प्लेयरों पे, उनके प्लेयरों को आपने लाना है वो नहीं मानेंगे
1: बिल्कुल। आईपीएल का टूर्नामेंट हाल ही में ख़त्म हुआ, पिछले संडे को फाइनल हुआ, आरसीबी जीती, तो आरसीबी और रासिक सलाम इन दो पर मैं आपका कमेंट ब्रीफ कमेंट चाहूँगा।
2: बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस है उनकी, वो अनसंग हीरो रह गए, 19 विकेट लिए, उन्होंने भी कम नहीं लिए, पावर प्ले में बॉलिंग की, क्रूशल विकेट लिए, फिर कभी कैच भी पकड़े, एक बैटिंग से भी मैच जिता लिया
1: एग्जैक्टली,
2: थोड़े 4-5 रन ही तब 2 ही रन जरूरत थे, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। और बड़ी बात याद रही उनमें, उन पे फोकस ऐसा नहीं रहा कि ये क्या करेगा ये क्या करेगा
1: एग्जैक्टली,
2: इसलिए वो अपना
1: ही केम फ्रॉम अंडर द रेडार आए और अच्छा काम करके,
2: भुवनेश्वर के साथ उनको बहुत फायदा हुआ बॉलिंग करने से
1: exactly.
2: फिर एक और चीज है, वो बड़ौदा से खेले पिछले 2 साल उससे बहुत फायदा हुआ, J&K में आपको नहीं पता है किसको कब ड्रॉप कर देते, इनको कहाँ बिठा देते, देखते ही विकेट ले रहा है उसको बाहर ही रखो, तो इसलिए वो अच्छा है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, और चैंपियन साइड का प्लेयर है और इम्पोर्टेंट प्लेयर है।
1: तो JK क्रिकेट की आपने बात की, JK CA की बात करनी नागुजीर हो गई है। अब तो एक

0: फिर से एक बंदरबांट का मंजर सामने आ रहा है। कोई कह रहा मैं प्रेसिडेंट हूँ, कोई कह रहा मैं जनरल मैनेजर हूँ, हो क्या रहा है?
1: ठीक है, इसमें टर्मोइल ख़त्म ही नहीं हुआ। पहले जो ये जब ये प्रेसिडेंट वगैरह बने थे, वो जम्मू में यहाँ वहाँ जो हुआ था, वो एग्जैक्टली कोई ख़ास हकीकत अगर माने तो वो कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी कि जिसमें आप किसी को प्रेजिडेंट इलेक्ट करते। उसमें क्लब मैक्सिमम क्लब के रिप्रेजेंटेटिव थे ही नहीं, क्लब्स ने इलेक्ट करना होता है
0: exactly.
1: क्योंकि क्लब डिसबैंड किए गए थे सारे। क्लब क्रिकेट तो पिछले 10 साल से हो नहीं रहा है, 10-12 साल से, तो इसलिए उन्हें कर लिया। लेकिन अब एक बॉडी है, इसको हैंड ओवर किया गया, कोर्ट ऑर्डर्स हैं। अब थोड़ा सब्र तो करें लोग, इसके साथ मिलें थोड़ी देर, बाद में देखेंगे क्या होगा। पहले संभालो तो सही, फिर हाथ से निकल जाएगा, फिर पैसा नहीं मिलेगा आपको, फिर कोर्ट करेगा फ्रीज पैसा, क्योंकि आप काउंटर चार्जेस लगते रहेंगे, अदालत में केस होते रहेंगे, नुकसान होगा खिलाड़ी का, नुकसान होगा गेम का। ये 15-20 खिलाड़ी जो हैं रांझी वांझी रिप्रेजेंटेटिव टीम में तो जाएंगे, ये पैसा भी कमाएंगे, हो शोहरत भी, लेकिन नॉर्मल खिलाड़ी कभी उस दर्जे पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ क्रिकेट ही नहीं होगी,
0: क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे खत्म कर देगा क्रिकेट को। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में ये मसले सुलझ जाएं और क्रिकेट पे फोकस वापस जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़ के क्रिकेट पे वापस फोकस जाए। तो चलते चलते अब हमारे पास 1-2 मिनट का ही वक्त बचा है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज जारी है, इंतहाई लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले, पाकिस्तान अभी 2-1 से आगे है। तो इस सीरीज को आपने कैसे देखा?
1: देखिए, ऑस्ट्रेलिया वहां से निकल के आया बड़ी देर के बाद खेलने, एक तो बिग बैश के बाद उन्हें कुछ नहीं खेला है, एक वो बात है। और हम कहेंगे, लोग कहेंगे जी टॉप टीम नहीं है, अब टॉप टीम कोई नहीं होती है, हर मुल्क की 2-3 टीमें होती हैं जो ट्रेवल करती हैं, हर बार वही सारे प्लेयर ट्रेवल नहीं करते। इवन पाकिस्तान के, इंडिया के, साउथ अफ्रीका के, सब के साथ ही होता है, न्यूजीलैंड के, तो अब वो ना कहें। लेकिन ये है कि पाकिस्तान कंडीशंस को बेहतर समझ रहा है, इसलिए अभी तक जीत रहा है। और बड़ी बात हुई है अरफात मिनास का आना और अवरार की बॉलिंग, और मैं कहता हूँ सुफियान मुकीम भी डिजर्व करते हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉलर हैं। अब पाकिस्तान को इनको लाके परमानेंटली खिलाना चाहिए।
0: हमारे साहब बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ ये डिस्कशन करके, हमें उम्मीद है कि हमारे सामईन भी इससे बहुत ज़्यादा महजूज हुए होंगे और उनकी जो इनसाइट्स हैं इनटू द गेम्स उसमें इजाफा हुआ होगा। हम इंशाल्लाह अनकरीब ही किसी और प्रोग्राम में आपको फिर से दावत देंगे और फिर से आपसे बात करेंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: थैंक यू सो मच।
0: सामिन, इसी के साथ स्पोर्ट्स टाइम के आज के शुमारे का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
2: स्पोर्ट्स टाइम में आज मधु मेहमान थे सैयद हुमायूं कैसर, इनसे बात कर रहे थे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर वसीम फारूक। यह आकाशवाणी श्रीनगर है। अब हम आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में खबरें रिले करेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया, कहा भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर, गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंचा और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर-18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमण में 9,270 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस समय एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं।
4: मैं देशवासियों को आर्थिक क्षेत्र की इस नई ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं देश को फिर आश्वस्त करता हूं कि देश दुनिया भर में चल रहे इन संकटों का सामना करते हुए

रास्ते पर ऐसे ही दृढ़ संकल्प के साथ तेज गति से आगे बढ़ता ही रहेगा, ये मेरी देशवासियों को गारंटी है। साथियों, आज हमारे लिए

0: विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो।
1: गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
0: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात में है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। ये भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं।
0: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने सदैव अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकारकर विकास को प्राथमिकता दी है। उन्होंने लोगों से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की। सूरत के विकास का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सूरत एक ग्रीन सिटी के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
0: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री आज त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मोरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। और इस स्मार्ट बॉर्डर का कंसेप्ट फाइनलाइजेशन के स्टेज पर है। इसका पायलट प्रोजेक्ट आने वाले साल में हम निश्चित रूप से इंट्रोड्यूस कर देंगे। एक साथ देश की अलग अलग सीमाओं पर 7 या 8 जगह पे पायलट प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे।
1: गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बाड़ लगाने का काम प्राथमिकता पर किया जा रहा है। इसी कड़ी में त्रिपुरा में 119 किलोमीटर लंबी सीमा पर नई डिजाइन की बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है। इसका पहला चरण शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक प्रवीण कुमार तथा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
2: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख

0: रहेगी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
1: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में 3.2% की वृद्धि दर देखी गई है, जो मुख्य रूप से कृषि और मत्स्य पालन क्षेत्रों के प्रदर्शन से प्रेरित है। वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 87,77,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद सरकार ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती, सुधारों की सफलता और 140 करोड़ भारतीयों के अथक परिश्रम को दर्शाती है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार लोगों के जीवन को सुगम बनाने, व्यापार में सुगमता और युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। मई माह में भारत की यात्री वाहन बाजार में लगभग 4,40,000 वाहनों की बिक्री हुई है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में ऑटोमोबाइल सेक्टर के मजबूत प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि मजबूत उपभोक्ता मांग को दर्शाती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि यह खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर मिला है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दिल्ली के मालवीय नगर में हुई आग की घटना में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि मृतकों में एक व्यक्ति मोजाम्बिक, 4 नाइजीरिया, 1 लाइबेरिया, 3 किर्गिस्तान, 1 उज्बेकिस्तान, 1 बांग्लादेश, 1 कांगो और 1 इराक का नागरिक था। भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि दोनों देशों के बीच हुई बातचीत सकारात्मक रही।
2: The negotiating team which came from
3: बातचीत करने वाली टीम यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के कार्यालय से आई थी। इसमें अमेरिकी पक्ष के मुख्य वार्ताकार भी शामिल थे। ये बातचीत इस महीने की 1 और 4 तारीख के बीच हुई। ये चर्चा सकारात्मक और रचनात्मक रही है और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
0: नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है।
2: With Nepal, we have an expansive agenda.
3: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
2: पार्टनरशिप दैट वी हैव विद नेपाल।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को रूस के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 देने की पेशकश की है। उन्होंने इस विमान के भारत में संयुक्त उत्पादन का भी प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग आर्थिक मंच में श्री पुतिन ने कहा कि रूस भारत के साथ एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के उत्पादन में सहयोग करने के लिए तैयार है। भारत वर्तमान में अपनी स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली सुदर्शन चक्र

0: विकसित कर रहा है। इसमें रूस से प्राप्त S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो 3 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियानो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में आज सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। भारत की ओर से आशीष तानीपूर्ति ने 4 गोल किए, शाहरुख अली ने 1 गोल किया। फाइनल में कल भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर में गोवा और कर्नाटक के कई क्षेत्रों में पहुंच गया है। तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। विभाग के अनुसार अरब सागर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ साथ गोवा, तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में दक्षिण पश्चिम मॉनसून पहुंचने की संभावना है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन के दौरान बंगाल की खाड़ी के कई क्षेत्रों के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत और दमण में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। कहा, भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर हरित भविष्य की ओर अग्रसर। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रहने का अनुमान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू किए जाने के अंतिम चरण में संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्रों में अगले वर्ष इसे प्रायोगिक आधार पर शुरू किया जाएगा। और भारत पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अंडर 18 एशिया कप हॉकी के फाइनल में पहुंचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 268.1 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी श्रीनगर है। रात के 9 बज चुके हैं। अब से लेकर 9:15 बजे तक आइए चंद फिल्मी नगमे सुनते हैं। आगाज में पेश है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में दुगाना। मौसीकार हैं शंकर जयकिशन और फिल्म का नाम है दिल तेरा दीवाना।

यहाँ। आपने किशोर कुमार की आवाज में शर्मीली फिल्म से नगमा सुना। अब आइए आखिर पे मोहम्मद रफी की आवाज में एक और नगमा सुने। फिल्म है प्यार किया तो डरना क्या। गीतकार शकील बदायूनी और मौसीकार रवि।

साल अब तक 1076 भारतीय शहरियों को अमेरिका से मुल्क बदर किया गया है, जबकि यही तादाद पिछले साल 3567 थी। भारत में गैर मुल्की शहरियों के बारे में बात करते हुए तर्जुमान ने कहा कि मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रह रहे लोगों से निमटने के बारे में कानून मौजूद हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नई दिल्ली को रूस के पांचवी नस्ल के स्टेल्थ तैयारे सुखोई SU-57 की पेशकश की है और इन तैयारों को भारत में मुश्तरका तौर पर तैयार करने की तजवीज़ रखी है। ये पेशकश दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत स्ट्रेटेजिक साझेदारी की अक्कासी करती है। सेंट पीटर्सबर्ग इकतसादी फोरम के तनाजुर में कल रात सरकर्दा न्यूज़ एजेंसियों के सरबराहान से बातचीत करते हुए जनाब पुतिन ने कहा कि मॉस्को अब भी SU-57 तैयारा प्रोग्राम में नई दिल्ली की शिरकत का ख्वाहिशमंद है। जनाब पुतिन ने इंटीग्रेटेड फिजाई दिफाई निज़ाम और उससे मुतालिक हार्डवेयर समेत दीगर अहम दिफाई प्लेटफॉर्म्स पर भारत के साथ इश्तराक करने की रूस की तैयारी का इजहार किया है। भारत रूसी साख्त के S-400 मिसाइल निज़ाम के मुमकिन कलीदी पुर्जे के साथ अपने दिफाई निज़ाम सुदर्शन चक्र को स्वदेशी तर्ज पर तैयार कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने आज पाकिस्तान के साथ सख्त एहतजाज दर्ज कराया है और पाकिस्तान के उन मंसूबों पर शदीद एतराज़ किया है जिसके तहत वो पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी और जबरन कब्जा किए हुए भारतीय इलाके नाम नहाद गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात कराने का मंसूबा रखता है। ये इंतखाबात इस माह की 7 तारीख को होने हैं। भारत ने अपने वाज़ेह मौक़िफ़ को दोहराया है कि नाम नहाद गिलगित बल्तिस्तान समेत जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मुकम्मल मरकजी खित्ता भारत का अटूट और नाकाबिले तस्खीर हिस्सा है, क्योंकि साल 1947 में जम्मू कश्मीर का भारत में मुकम्मल कानूनी और नाकाबिले वापसी इल्हाक हुआ था। उमूर खारजा की वजारत ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की इस तरह की कोशिशें उन बुनियादी मसाइल को नहीं छिपा सकती जिनमें इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, सियासी जबर, माशी इस्तेहसाल और पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में आज़ादी से महरूमी शामिल है। नई दिल्ली ने पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में किसी भी बुनियादी या इंतजामी तब्दीली की कोशिश को वाज़ह तौर पर मुस्तरद कर दिया है। भारत ने जोर देकर कहा है कि इस तरह के इकदाम उन हकायक को छुपा नहीं सकते कि पाकिस्तान अब भी गैर कानूनी तौर पर भारतीय इलाकों पर काबिज़ है जिन्हें खाली करना होगा। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। दिल्ली के वज़ीर आशीष सूद, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विसेज, दिल्ली की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर महकमों के सीनियर अफसरान मीटिंग में मौजूद थे। मीटिंग के बारे में मीडिया को तफसीलात बताते हुए जनाब सूद ने कहा कि वज़ीर आला ने गैर कानूनी तामीरात, फायर सेफ्टी के उसूलों के खिलाफ वर्जियों और इंतजामी लापरवाही से पेश आए हालिया अलमनाक हादसे पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत ने आफात से निमटने से मुतालिक एक्ट 2005 की मुख्तलिफ दफात को मौसर तरीके से नाफिज करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि अगर रिहायशी या तिजारती इमारतों के मालिकान इस कानून के तहत कसूरवार पाए जाते हैं तो उन्हें जुर्मानों के साथ साथ कैद की सज़ा का भी सामना करना पड़ सकता है। जनाब सूद ने कहा कि मुस्तकबिल में DMs को अपने ज़िले में काम करने वाले किसी भी महकमे के अफसरान की जवाबदेही तय करने का इख्तियार हासिल होगा। वो ज़रूरत पड़ने पर महकमा जाती कार्रवाई की सिफारिश, FIR दर्ज करने और वजह बताओ नोटिसें जारी कर सकेंगे। गुवाहाटी में हलफबरदारी की एक तकरीब में 12 नए काबिनी वुजरा को शामिल करते हुए आज आसाम की वुजरा काउंसिल में तौसी की गई। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने नए वुजरा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। आसाम की वुजरा की काउंसिल की तादाद अब बढ़कर 17 हो गई है। आइन के तहत आसाम में वजीर आला समेत ज्यादा से ज्यादा 19 वुजरा हो सकते हैं। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी ने आज ऐलान किया कि अंडमान जजायर के मशरक़ी साहिल से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 के मकाम पर कुदरती गैस दरियाफ्त हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब पुरी ने कहा कि ये दरियाफ्त बुहरा अंडमान के तवानाई के वसी इम्कानात को वाजह करती है और इस तास में जारी जस्तजू की मुहिम में एक और कामयाबी को नुमाया करती है। पद्म अवार्ड्स 2027 के लिए नामजदगी का अमल अगले माह की 31 तारीख तक जारी रहेगा। वजारत दाखिला ने कहा कि पद्म अवार्ड्स के लिए नामजदगी और सिफारिशात का अमल जो 15 मार्च को शुरू हुआ था सिर्फ राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन तरीके से मौसूल नामजदगियों के जरिए जारी रहेगा। वजारत ने सिलसिले में शहरियों से खुद नामजदगी समेत नामजदगियाँ और

0: थोड़ी देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से खबरें रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन में 2,970 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने नमो अस्पताल और नमो हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
2: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
1: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि गुजरात सौर ऊर्जा से आगे बढ़कर ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के क्षेत्र में भी बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि

प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत नेपाल के साथ बहुआयामी साझेदारी मजबूत करने का इच्छुक है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नेपाल के विदेश मंत्री से बातचीत करेंगे। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। ये चुनाव 7 जून को होने हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर

अभी आप हमारे प्रोग्राम आकाशवाणी दिल्ली से समाप्त कर रहे थे। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। रात के

ग्यारह बजकर 45 मिनट हुए हैं। समीन, आज की नशरियात बर्खास्त करने से पहले आइए आपको कल हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्राम की तफसील बताते हैं।

रात 9:30 पर प्रोग्राम पेश खिदमत होगा पेशरफ्त। मेहमान हैं प्रोफेसर फैयाज अहमद, मौजू है एडमिशन इन कश्मीर यूनिवर्सिटी। मेज़बान हैं डॉक्टर तनवीर ताहिर। कश्मीरी नगमों का फरमाइशी प्रोग्राम तुहंस फरमाइश जो सामीन के खतूत और ईमेल्स पर मबनी होता है, समाप्त कीजिएगा शब 10 बजे। प्रोग्राम पेश करेंगे रशीद निज़ामी। नशरियात के आगाज़ में सुबह 6:35 पर प्रोग्राम सुबहगाही नशर होगा। लाइव मॉर्निंग शो पायाम सुबह पेश खिदमत होगा सुबह 7:10 पर। रशीद निज़ामी और जावेद अंद्राबी के साथ प्रोग्राम सुनिएगा। सेहत से मुतल्लिक स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सेहत बदन आप सुनेंगे सुबह 8:45 पर। मकामी अखबारात से ली गई चंद सुर्खियाँ आप सुनेंगे सुबह 9 बजे। हमारे न्यूज़ रूम का तैयार करदा प्रोग्राम न्यूज़ रील नश्र होगा सुबह 9:30 पर। चंद कश्मीरी गज़लें पेश होंगी सुबह 9:45 पर। सूफी सदा, सूफिया किराम और रेशियों की ज़िंदगी और अफकार पर मबनी यह प्रोग्राम पेश होगा सुबह 10 बजे। चूँकि कल वादी की मारूफ सूफी शायर शमस फ़कीर की बरसी है, इस मौके पर प्रोग्राम में उन्हीं का जिक्र होगा। तहरीर अमीन कामिल। लाइव इंटरएक्टिव शो पेश होगा सुबह 10:30 पर। मेहमान हैं डॉक्टर अब्दुल माजिद, इनसे बात करेंगे रशीद निज़ामी और शाहीना, और मौजू है नशा मुक्त समाज। सूफी शायर शमस फ़कीर की बरसी के मौके पर छकरी और रुफ पेश होगी 11:30 पर और फिर 2:30 पर। फनकार हैं अब्दुल रशीद हाफिज और साथी। फिल्म संगीत हमारे यहाँ से नश्र होगा 12:10 पर, 1:10 पर, फिर 3 बजे फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम में। फिल्मी नगमे आप 2:15 पर और रात 9 बजे भी सुन सकेंगे। ख्वातीन के लिए प्रोग्राम बज़्म निस्वा नश्र होगा हसब मामूल 12:40 पर। इसमें वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे से मुतल्लिक बात होगी। मेहमान हैं रक्षंदा रफीक। पहाड़ी प्रोग्राम सुना जा सकेगा 4 बजे। मेज़बान हैं गज़ाला मुमताज़। प्रोग्राम में शाबान खान की बातचीत भी शामिल है। हफ्तेवार शीना प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा 4:30 पर। मेज़बान हैं शहनवाज सामून। गोजरी प्रोग्राम का वक्त नशरिया है 5 बजे। इसमें तुफैल अहमद कसाना से लिया गया इंट्रो नशर होगा। मौजू है मिशन युवा स्कीम। देहाती भाई अपना प्रोग्राम गर्मी बाई हिंद खतर सुनेंगे शाम 6:05 पर। इसमें डॉक्टर इमरान रजीर के साथ गुफ्तगू होगी। मौजू है तीर नीरस त्रावनस मज एहतियात। हालत हजरा का प्रोग्राम शहरबीन नशर का हसब मामूल शाम 7 बजे। रात 8 बजे प्रोग्राम समाप्त कीजिएगा वादी की आवाज़। रात 8:30 पर जिला नामा पेश होगा। कल का जिला नामा जिला गांधरबल से मुतलिक है। ये हैं हमारे कल नश्र होने वाले चंद प्रोग्राम।

आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है, मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियोज की घड़ी में शब के 11:49 और 47 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की नशरियात आप बर्खास्त होती हैं कल की नशरियात के साथ। सुबह 6:30 पर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़। शब खैर। जय हिंद।

बॉबी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अगला गीत आप जो सुनेंगे वो होगा आरती मुखर्जी की आवाज में और गुलजार का लिखा ये गीत है, आर डी बर्मन का संगीत है और फिल्म का नाम है मासूम। इस गीत के बाद एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार। अर्पणा को दें इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी समुद्री अर्थव्यवस्था के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 330 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कहा है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम में प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री पुरी ने कहा कि ये खोज अंडमान सागर की विशाल ऊर्जा क्षमता दर्शाती है। उन्होंने कहा कि ये खोज इस क्षेत्र में चल रहे अन्वेषण अभियान की सफलता का प्रतीक है। श्री पुरी ने कहा कि प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर पाया गया है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून तक देशभर में 9,42,000 से ज्यादा किसान

वक्त हुआ है 12:10, वक्त हुआ है 12:11 और ठीक 4 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा, मैं हूं राखी आपके साथ।

हम दोनों फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में। मोहब्बत की दास्तान कोई किताब का किस्सा नहीं होती, ये तो दिल की उन धड़कनों में लिखी जाती है जिन्हें शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। कभी एक मुस्कान से शुरुआत होती है, कभी एक नजर से, और फिर धीरे धीरे कोई अनजाना शख्स जिंदगी का सबसे अपना बन जाता है। इस दास्तान में खुशी के रंग भी होते हैं, इंतजार की रातें भी, मिलने की खुशबू भी और बिछड़ने का दर्द भी। कभी दिल उम्मीदों के लिए जलता है तो कभी यादों की चादर ओढ़कर चुपचाप बैठ जाता है। मगर सच्ची मोहब्बत की खूबी यही है कि वो हर हाल में दिल को रोशन रखती है।

ना खुदा फिल्म का गाना आपने सुना, नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। निदा फाजली ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। तुम्हारी पलकों की चिलमन में क्या छुपा है, सितारों जैसा कोई राज है क्या? जब भी नजरें उठती हैं तो लगता है जैसे रात का आसमान झिलमिला उठा हो। उन झुकी हुई पलकों के पीछे शायद कोई अनकहा ख्वाब बसा है, या फिर किसी के लिए संजोया हुआ एक मासूम सा एहसास। जो भी है, इतना जरूर है कि उसकी चमक सितारों से कम नहीं।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं ये चांद है या तुम्हारा कंगन सितारे हैं या तुम्हारा आंचल हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो कहीं नहीं हो मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो यही कहीं

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम

आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: सिलसिला फिल्म का गाना आपने सुना, अमिताभ बच्चन और लता मंगेशकर की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया शिव हरी ने।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

वक्त हुआ है 12:33 और ठीक 12 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूं राखी आपके साथ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

हीरो फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और मनहर की आवाज में। इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर अपनी तकदीर तो जीरो है, मोहब्बत के हर सबक को पढ़ा मगर हासिल कुछ अधूरा है। जिन्हें दिल की किताब का सबसे खूबसूरत अध्याय समझा, वक्त ने बताया कि वो बस एक खूबसूरत फसाना था। फिर भी इस दिल को शिकायत नहीं, क्योंकि प्यार का एहसास ही उसकी सबसे बड़ी दौलत है।

सागर फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। लहरों का शोर, ठंडी हवाएं और दूर तक फैला हुआ नीला पानी भी तुम्हारी कमी को भर नहीं पाता। ऐसा लगता है जैसे इस विशाल दुनिया में तुम्हारे सिवा मेरा कोई अपना नहीं। हर आती जाती लहर तुम्हारी याद लेकर आती है और हर ढलती शाम तुम्हारे इंतजार को और गहरा कर जाती है। तुम्हारे साथ होने का एहसास ही मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है और तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है।

लावा फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में और किशोर कुमार की आवाज में आपने एक गीत सुना। वक्त हुआ है 12:56 और ठीक 47 सेकंड। अब से बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। समाचारों के बाद गीत सुहाने आप सुनेंगे मेरे साथ और फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगा। भारत के मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर सेक्टर को मजबूत करने और सी फूड के निर्यात को बढ़ाने पर केंद्रित 2 दिवसीय सी फूड निर्यात राष्ट्रीय कार्यशाला कल विशाखापत्तनम में हुई। ये कार्यशाला मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग द्वारा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सहयोग और आंध्र प्रदेश सरकार के समर्थन से आयोजित की जा रही है। कार्यशाला का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, राजीव रंजन सिंह, चिराग पासवान और के राम मोहन नायडू के साथ किया। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि जून तक देशभर में 9,42,000 से ज्यादा किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं, जिससे संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा।

वक्त हुआ है 1:10 और 59 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। गीत सुहाने, मैं हूं राखी आपके साथ।

संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। सुहाने पुराने गाने सिर्फ सुरों और शब्दों का मेल नहीं होते, बल्कि यादों का एक खूबसूरत कारवां होते हैं। इनमें बीते हुए लम्हों की खुशबू, मोहब्बत की मासूमियत और जिंदगी की सादगी बसी होती है। जब भी कोई पुराना गाना कानों में पड़ता है, दिल अनायास ही उन दिनों की ओर लौट जाता है, जहां छोटी छोटी खुशियों में भी एक अलग ही सुकून था। इन गीतों की मधुर धुनें समय के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर बार सुनने पर नए एहसास जगा देती हैं।

जो बरसों बाद भी दिल को उसी तरह छू जाता है जैसे पहली बार जब उसे सुना था। कभी वो किसी भूली बिसरी मोहब्बत की याद दिलाते हैं, तो कभी जीवन के उन सुनहरे पलों को जिन्हें हम पीछे छोड़ आए हैं।

अनुपमा फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले की आवाज में। कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया हेमंत कुमार ने। सुहाने पुराने गाने समय की धूल से कभी धुंधले नहीं पड़ते। उनकी धुनों में एक ऐसा जादू होता है

आखिरी खत फिल्म का गाना आपने सुना भूपिंदर की आवाज में, कैफी आजमी ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। छेड़ो कोई दास्तान, कोई ऐसा फसाना सुनाओ जो दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक दे।

कोई ऐसी कहानी जिसमें मोहब्बत की खुशबू हो, इंतजार की कसक हो और मिलन की मीठी सी मुस्कान भी। ऐसी दास्तान जो बीते हुए लम्हों को फिर से जिंदा कर दे और यादों के चिराग एक एक करके रोशन कर दे।

हावड़ा ब्रिज फिल्म का गाना आपने सुना, आशा भोसले और रफी की आवाज में। कमर जलालाबादी ने इसे लिखा और संगीत दिया ओपी नैयर ने। एक पल की उस मासूम सी निगाह ने दिल पर ऐसा असर किया।

मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना आपने सुना। मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में गुलशन बाबरा ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने।

वक्त हुआ है 1:36 और ठीक 30 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूं राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

बावरी नैन फिल्म का गाना आपने सुना राजकुमारी की आवाज में। केदार शर्मा ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। जब शाम ढलती है और हल्की हल्की हवा चलती है, तब कोई पुराना गीत सुनना ऐसा लगता है जैसे यादों की किताब का कोई प्रिय पन्ना फिर से खुल गया हो। उन मधुर स्वरों में बीते दिनों की हंसी, कुछ अधूरे ख्वाब और कुछ अनकहे अफसाने धीरे धीरे दिल में उतरने लगते हैं।

मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया रवि ने। ये पुराने गाने हर दौर में हर पीढ़ी के दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। समय बदल जाता है, लोग बदल जाते हैं, मगर इन गीतों की मिठास और इनका असर हमेशा वैसा का वैसा ही बना रहता है।

होकर फिल्म का गाना आपने सुना तलत की आवाज में। मजाज लखनवी ने इसे लिखा और संगीत दिया सरदार मलिक ने। ए गमे दिल अगर तू ना होता तो शायद मोहब्बत की गहराई का एहसास भी ना होता। दर्द ही तो है जो खुशी की कीमत समझता है, और जुदाई ही तो है जो मिलन की अहमियत बढ़ाती है। इसलिए अब तुझसे लड़ना नहीं, तुझे समझना सीख लिया है, क्योंकि जिंदगी की हर खूबसूरत दास्तान में थोड़ा सा गम भी शामिल होता है।

छाया फिल्म का गाना आपने सुना, तलत और लता की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। वक्त हुआ है 1:55, वक्त हुआ है 1:56 और ठीक 3 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता के लिए गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृह मंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल हाइड्रोजन रेल परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और दिल्ली के शकूर बस्ती डिपो में आधुनिक मेंटेनेंस सुविधाओं का निरीक्षण किया। उत्तर रेलवे के तिलक ब्रिज शकूर बस्ती रेल सेक्शन के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने वरिष्ठ रेल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इलाके में चल रहे विभिन्न विकास परियोजनाओं की स्थिति का जायजा लिया। शकूर बस्ती डिपो में श्री वैष्णव ने अत्याधुनिक रिट्रैक्टेबल ओवरहेड इक्विपमेंट सिस्टम, बोगी पिट और बोगी लिफ्टिंग सुविधाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को ऑपरेशनल क्षमता को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि जून तक देशभर में 9,42,000 से ज्यादा किसान बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं, जिससे संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects,

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 59 सेकेंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई, मैं हूँ राखी आपके साथ।

लहू के दो रंग फिल्म से आपने गाना सुना। किशोर कुमार की आवाज में फारूख कैसर ने इसे लिखा और संगीत दिया बप्पी लाहिड़ी ने। गीतों से भरी ये रात सुरमई है, हवा में जैसे किसी पुराने प्यार की खुशबू घुली हुई है। चांद की चांदनी खामोशी के पन्नों पर उतर आई है और मन के किसी कोने में भोली बिसरी यादों की महफिल सज गई है। ऐसे में हर धुन दिल को छू जाती है, हर गीत कोई अनकही कहानी कह जाता है।

अब्दुल्ला फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। इसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। मैंने पूछा चांद से, देखा है कहीं मेरे यार साहसीन। चांद मुस्कुरा कर बोला, मेरी चांदनी में चमक तो बहुत है, पर तेरे यार जैसी कशिश नहीं। सितारे लाखों हैं इस आसमान में, मगर उसके जैसा नूर किसी में नहीं।

कभी कभी फिल्म से आपने गाना सुना मुकेश की आवाज में, साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसे तुम्हें मेरी जिंदगी की हर अधूरी दुआ का जवाब बनाकर रचा गया हो, जैसे तुम्हारी मुस्कान मेरी सुबहों की रोशनी हो और तुम्हारा साथ मेरी शामों का सुकून। तुम्हें देखकर यूं लगता है कि किस्मत ने बड़ी फुर्सत से तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ लिखा होगा, वरना किसी अजनबी का यूं दिल की धड़कनों में बस जाना इतना आसान कहां होता है।

कुर्बानी फिल्म का गाना आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। इंदिवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

वक्त हुआ है 2:36 और ठीक 8 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर रात सुरमई, मैं हूं राखी आपके साथ। जी हां, रात सुरमई है, चांदनी नरम नरम सी बिखरी हुई है, हवाओं में खामोश एक सुंदर सा संगीत खुला हुआ है और सितारे आसमान पर जैसे कोई प्रेम गीत लिख रहे हों। ऐसे सुहाने पल में दिल बस यही चाहता है कि कोई अपना पास बैठे, कुछ न कहे और फिर भी हर बात समझ में आ जाए।

जाबाज फिल्म का गाना आपने सुना, किशोर कुमार और सपना की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी, आनंद जी ने। कितना प्यारा है ये साथ, जैसे ठहरी हुई शाम को कोई मधुर सहारा मिल गया हो। तेरी बातों में वो सुकून है जो बिखरे हुए ख्यालों को भी सजा देता है। तेरे साथ चलते हुए यूं लगता है मानो हर रास्ता मंजिल बन गया हो, और हर लम्हा एक खूबसूरत याद। दुनिया की भीड़ में भी दिल यही कहता है, तेरा साथ है तो जिंदगी कितनी हसीन है।

हर महात्मा फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और कंचन की आवाज में। इंदीवर ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती जनाब, ये तो वो आईना है जिसमें हर कोई खुद को मुस्कुराते हुए देखना चाहता है। बस शर्त इतनी है कि अल्फाज में सच्चाई हो, वरना बढ़ा चढ़ाकर कई कही गई बातें दिल तक नहीं पहुंचती।

यादों की बारात फिल्म का गाना आपने सुना आशा और रफी की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। वक्त हुआ है 2:52 और ठीक 30 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही भारती शर्मा के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

0: मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंका मुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुसार 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कल देर शाम रिक्टर स्केल पर 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। यह भूकंप लगभग 10:04 पर आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था। आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अभी तक किसी के हताहत होने या संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छात्र अब रविवार आधी रात तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। इससे पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat yesterday, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth of the nation's green energy share. Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबका स्वागत करती हूं और एक प्यार भरा नमस्कार आप सबको। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस प्यारे से गीत के साथ।

सच्चे प्यार की दुआएं अक्सर रात की तन्हाइयों में निकलती है और शायद ऊपर वाला भी उन्हें मुस्कुराकर सुनता है।

जब कोई दिल में उतर जाए, जब कोई दिल में उतर जाए तो फिर हर धड़कन उसी का नाम लेने लगती है, और कब वो दिल में बस जाते हैं पता ही नहीं चलता।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

कभी कभी प्यार शब्दों से नहीं बस एक पुकार से महसूस होता है, जब दिल किसी अपने की आवाज सुन के बेचैन हो जाए तब हर खामोशी भी मोहब्बत का पैगाम बन जाती है।

मोहब्बत, मोहब्बत जब सच्ची हो तो हर सपना हकीकत जैसा लगने लगता है। दिल यही दुआ करता है कि हर प्रेम कहानी को उसका खूबसूरत मुकाम मिले और हर इंतजार खुशियों में बदल जाए।

जब दिल किसी की चाहत में खो जाए, जब दिल किसी की चाहत में खो जाए तो हर रास्ता उसी की ओर जाता है। मोहब्बत का सबसे खूबसूरत एहसास वही है जब किसी की मुस्कान में अपनी सारी खुशियां नजर आने लगे।

आज की सुहानी रात में प्यार की उन मधुर भावनाओं को महसूस कीजिए, जहाँ एक दिल पुकारता है और दूसरा दिल उसकी धड़कनों में जवाब देता है।

और इन्हीं प्यार भरी लाइनों के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। जल्द हाजिर होंगी यानी 4:10 पर फिर से हाजिर होंगी लेकर कार्यक्रम अरुणिमा। तब तक के लिए आपसे मैं ले रही हूँ अनुमति, छोड़े जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, तो जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि देश बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए सुधारों की अपनी गति को बनाए रखेगा। श्री मोदी ने कहा कि नई परियोजनाएं युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई विभिन्न समुद्री परियोजनाओं से एक मजबूत ब्लू इकोनॉमी के लिए भारत का विजन और मजबूत होगा। उन्होंने दमन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और नमो अस्पताल को देश को समर्पित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सूरत में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण

0: संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है, इकोनॉमी भी इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है, इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। उन्होंने कहा कि हम सौर ऊर्जा उत्पादन में 5 प्रमुख देशों में से एक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने हमेशा अराजकता और अस्थिरता की राजनीति को नकार कर विकास को प्राथमिकता दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमा सुरक्षा को अधिक मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना को अंतिम रूप दे रही है। गृहमंत्री ने कल त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश सीमा पर लंकामुरा सीमा चौकी क्षेत्र में प्रहरी सम्मेलन में कहा कि केंद्र सरकार त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार की सीमाओं पर घुसपैठ के कारण जनसंख्या में किसी भी तरह के बदलाव को बर्दाश्त नहीं करेगी। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वित्त वर्ष के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिवसीय भारत दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और सुगियोनो रविवार को नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। मिजोरम में सत्ताधारी जोरम पीपुल्स मूवमेंट के उम्मीदवार के लाल तलुवांग कीमा ने इस महीने की 18 तारीख को होने वाले राज्य सभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। सूत्रों ने बताया कि मिजोरम में मुख्य विपक्षी पार्टी एमएनएफ सोमवार को अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। कांग्रेस और भाजपा राज्य में अपने उम्मीदवार नहीं उतार रही हैं, क्योंकि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए जरूरी 4 विधायकों का न्यूनतम समर्थन नहीं है। मिजोरम के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और राजस्थान इस महीने के 18 तारीख को अपने राज्यसभा सदस्य चुनेंगे। भारत एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया है। जापान के काका मिगाहारा में सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हरा दिया। फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। पहले अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से पराजित हो गई।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has emphasized self-reliance in the energy sector, stating that the world is moving towards a green future and India is actively leading the way by balancing economic growth with ecological preservation. Addressing a large gathering after launching various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat yesterday, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial one-fifth on the nation's green energy share. Speaking on the transformation of Surat, the Prime Minister praised the city's spirit and its transition into a green city.
1: सूरत सिर्फ स्वच्छता और सर्कुलर इकोनॉमी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रीन ग्रोथ के दूसरे माध्यमों का भी अभूतपूर्व गति से विस्तार हो रहा है। सूरत ऐसी व्यवस्था बनाने में जुटा है जहां सड़कों पर चलने वाली सारी बसें इलेक्ट्रिक होगी। साथ ही यहां सूरत मेट्रो का भी विस्तार हो रहा है। ये सारे कदम हरित शहर के रूप में सूरत की पहचान को और सशक्त करेंगे।
2: After reaching Surat, the Prime Minister first visited Hazira and reviewed the ongoing industrial and infrastructure operations. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a 7.6%

एक बार फिर से हाजिर हो लेकर कार्यक्रम अरुणिमा। आप सब सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम अरुणिमा की। इस प्यारे से गीत के साथ गीत है फिल्म रानी रूपमती से लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार भरत व्यास, संगीतकार SN त्रिपाठी।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म नैया से यशुदास की आवाज में। और इस गीत के संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत। फिल्म बेटा से अनुराधा पोटवाल की आवाज में गीतकार समीर, संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रोग्राम है अरुणिमा। अगला गीत सुनते हैं फिल्म सती सावित्री से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज में। गीतकार भरत व्यास, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

अभी आपने गीत सुना फिल्म दीवाना से, अलका याग्निक, कुमार सानू और उनके साथियों की आवाज में, गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म खामोशी से, कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, संगीतकार जतिन ललित।

और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत स्वदेश फिल्म से, उदित नारायण हरिहरन कैलाश खेर की आवाज में। गीतकार जावेद अख्तर, संगीतकार ए आर रहमान।